मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1189 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

0: मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ द टेम्प

इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब पेश है किसान भाइयों के लिए कृषि संकेत। इसमें आज सुनिए मूंग की खेती विषय पर जानकारी।

किसान भाई मध्य प्रदेश में मूंग गर्मी और खरीफ दोनों मौसम में कम समय में पके वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है। मूंग के दाना के उपयोग मुख्य रूप से दाल के रूप में, नमकीन बनावे का, मिठाई बनावे का, पापड़, मुंगौड़ी माने कई उम्र के

0: किए जाते हैं, जेखर 100 ग्राम दाल में लगभग 23 से 24 ग्राम प्रोटीन और 62 से 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 347 से 350 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलवा करती। दलहनी फसल होय के कारण एकर जड़े में गांठ पाई जाती, जो उनकी वायुमंडली नत्रजन का माटी में स्थिरीकरण लगभग 38 से 40 किलोग्राम करवा करती और माटी का उपजाऊ बनावे में सहायक होती। यही से दलहनी फसल में नत्रजन केर आवश्यकता कम पड़वा करती। एक उत्पादन के खातिर भौगोलिक कारक आवश्यक वातावरण, निकाह उत्पादन के खातिर 270 से 350 सेंटीग्रेड के बीच के तापमान अधिक निकाह माना जाता है। अधिक ताप सहिष्णु होय के कारण एका आसानी से उगावा जा सकता है, साथ ही एमा कम पानी की आवश्यकता पड़ती। मूंग के अच्छी पैदावार के खातिर उपजाऊ रेतीली दोमट माटी का अच्छी जल निकास वाली होय के चाहिए। एक ही लाने हल्की अम्ली मृदा अच्छी होती, जौने के पीएच मान 6.3 से 7.2 के बीच उत्तम माना गया है। किसान भाई, फसल प्रणाली गन्ना, सरसों, गेहूं, मूंग, मक्का, आलू, धान आदि किस्म के चयन, मूंग के फसल के लाने किसान का कम अवधि 60 से 65 दिन में पके वाली किस्म के प्रयोग करे के चाहिए। साथ ही मूंग फसल में पीला मोजक वायरस रोग का प्रकोप बहुत होबा करत है, जौने के नियंत्रण केवल पीला मोजक वायरस प्रतिरोधी किस्मन के प्रयोग करके कीन जा सकत है। यही से पीला मोजक प्रतिरोधी किस्मन का प्रयोग में लेके चाहिए। मूंग के बुआई रबी फसल के बुआई के तुरंत बाद कर दे के चाहिए। बीज दर और दूरी 20 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से 30 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मूंग की बुआई कीन जाए चाहिए। अच्छी उपज माटी जनित व बीज जनित बीमारियों से बचावे के लाने बीज का सबसे पहले कवक रोधी जैव कारक, फिर कीटनाशक और राइजोबियम कल्चर और फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया से उपचारित करके बीज का बोवे के चाहिए। बीज उपचार के लाभ, एक ही उपयोग से उपज में वृद्धि होवा करती, मुख्य फसल में नत्रजन प्रदान करे के साथ है 30 से 50 किलोग्राम माटी में स्थिरीकरण करत है, जौने से माटी उपजाऊ होती और अगली फसल का प्राप्त होती, जौने से हमका 5 का ऊपर से नत्रजन कम देख पड़त है और फसल लागत में खर्चो कम आवत है। माटी में स्थिर पड़ी फास्फोरस का उपलब्ध रूप में पौधन में प्राप्त होवा करत है, जौने से कम लागत खाद में आवत ही और पौधन का अच्छी गुणवत्ता में मिलत है। बीजन के उपचार करब बहुत सरल और सस्ता है। अच्छी उपज के खातिर हक्का क्रमशः 20 से 30, 50 से 60, 30 से 40 किलोमीटर प्रति हेक्टर के मात्रा में उचित होवा करत है। बुवाई से पहले नमी की उपस्थिति में डालें कचाही, जो ने अच्छे से माटी में घुल जाए। जब मूंग के फसल में फलिया पक गए, अच्छी तरह से सूख जाए और काली पड़े लगे, तब कटाई करे के चाहिए। कटाई के बाद खलिहान का अच्छी तरह से सुखाए के मड़ाई करे के चाहिए। एक बाद ओसाई करके बीज और ओखर भूसा अलग अलग कर ले के चाहिए। भंडारण करे के खातिर मूंग बीज का भंडारण करे से पहले अच्छी तरह से सुखाए दे के चाहिए। बीज में 8 से 10% से अधिक नमी न रहे के चाहिए। भंडारण में स्टोरेज बीन के प्रयोग करे के चाहिए। सूखी नीम के पत्ती के प्रयोग करे के चाहिए। भंडारण में कीटन से सुरक्षा की जा सके ऐसा हमका उपाय करत रहे के चाहिए।
1: कृषि संकेत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मूंग की खेती विषय पर जानकारी। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस से पाठ।

श्री राम की बारात के स्वागत में तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांच वाद्य यंत्रों से वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि तथा हुल ध्वनि, ये पंच ध्वनि हो रही है और उसके साथ गूंज रहा है मंगल गान। ब्रह्मा समेत श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश धारण कर ये समारोह निहार रहे हैं। समारोह की सुंदरता तथा गरिमा की उपमा के अभाव में कवि इतना ही कह पाते हैं कि इनके समान यही हैं। समधियों के मिलन को देखकर ब्रह्मा का कहना है कि जब से उन्होंने जगत की रचना की, बहुत विवाह देखे और सुने, किंतु सभी प्रकार से समान, साज समाज और समता वाले समधि आज ही देखने को मिले।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, स्वर रविंद्र साठे और साथियों का था। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब पेश है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज सवेरे सुबह 7:30 पर यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा। चौपाल शाम 7:21 पर, शब्द सागर सुबह 9:30 पर यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 10:05 पर, फिल्म संगीत सुबह 7:20 पर, देशभक्ति गानों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम देशकान सुबह 8:30 पर। श्रोताओं, आपको एक बार फिर से बता दें कि चौपाल कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर, सुगम संगीत सुबह 10:05 पर, फिल्म संगीत सुबह 7:20 पर और देशभक्ति गानों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम देशकान सुबह 8:30 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
3: आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स् देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स् देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति, यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतदुपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेश प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायां असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान साहाय्योद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां साहाय्योद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 50 वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मॉक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति, सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण

0: इसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets or public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Even in Information and Broadcasting, ministers announced two major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
3: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend measures to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च कार्यक्रम में आरोग्य सेतु 2.0 सहित कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में शामिल है और इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक एकीकृत, सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
2: Applications launch is going to play a very important role.

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू भी हुआ। इसके तहत आगामी 3 वर्षों में पीएम केयर्स के माध्यम से प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मेमोग्राफी मशीनें तथा 308 एआई सक्षम हैंडहेल्ड एक्सरे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य एवं निदान सेवाओं को उल्लेखनीय मजबूती मिलेगी तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किए गए जलगंगा संवर्धन अभियान का आज समापन हो रहा है। इस अभियान के संचालन में राजगढ़ जिले को भोपाल संभाग में प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के विकासखंड सारंगपुर के अंतर्गत भैंसवा माताजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद रोडमल नागर भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जलगंगा संवर्धन अभियान की इस अल्पावधि में ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना जिले की बमोरी विधानसभा के ग्राम चक विश्वनगर स्थित भौरा में लगभग 278 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 220 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र के लगभग 225 गांवों के 2.5 लाख से अधिक परिवारजनों को सुदृढ़, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सशक्त, समृद्ध एवं विकसित गुना के निर्माण हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्यरत हैं।
3: जिस बमोरी में कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बमोरी में आज 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा हनुमान में स्थापित हो रहा है। 280 करोड़। मैं देश का ऊर्जा मंत्री रहा हूँ। उस बमोरी में 200 केवी का सबस्टेशन कलकत्ता, बंगलुरु, मोदी जी के जमाने में 220 केवी का सबस्टेशन मुंद्रा।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे जिसमें खेती से जुड़े मॉडल और आधुनिक कृषि के तरीकों, मृदा प्रबंधन, फसल सुरक्षा, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहल प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल क्षति, गांवों और बुनियादी ढांचों की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए 12 जून से ये अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके तहत एक ग्राहक या एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नई दिल्ली में नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन मॉड्यूल लॉन्च किया। ये मॉड्यूल योग्य कानूनी पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि विधिक मामलों का विभाग नोटरी अधिनियम 1952 और नोटरी नियम 1956 के अंतर्गत आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा

इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से नीदरलैंड के मुंबई स्थित कौंसुल जनरल नबील ताउवाती ने आज पुलिस मुख्यालय भोपाल में मुलाकात की। इस अवसर पर कौंसुलेट जनरल के साथ मुंबई के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार कौस्तुभ परिहार तथा कृषि सलाहकार प्रसाद पारते भी उपस्थित रहे। भेंट के दौरान पुलिस महानिदेशक ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग तकनीकी नवाचार एवं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार तथा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के मोतीसागर तालाब पर होमगार्ड जवानों का विशेष तैराकी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आगामी 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इंदौर जिले के छोटी बेटमा स्थित विशिष्ट आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर में पीटीआई के रिक्त पदों के लिए 6 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते आज डिंडौरी जिले के प्रवास पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे समनापुर और कुटेला क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 जुलाई कर दिया गया है। झाबुआ में युवा संगम का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में किया जाएगा। बैतूल में हॉकी प्रतिभा खोज चयन ट्रायल में जिले के युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। और कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्वाचन सदन स्थित ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम में शामिल, कहा स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने। जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले में होंगे शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत, आगाज फिल्म बातों बातों में के गीत से। संगीतकार है राजेश रोशन, आवाज लता मंगेशकर, अमित कुमार और पल्ल पदमसी की है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 7:30 होने को हैं। आज सवेरे का अनुप्रसारण अब आकाशवाणी दिल्ली से करते हैं।

0: आपको देता है वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं वीसी प्रमोद। गुड मॉर्निंग प्रमोद।
1: गुड मॉर्निंग सर फिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे व्हेन वी गिव इन द लेटेस्ट इन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज Metro City updates as well as some historical information related to this day, that is the 30th of June.
0: तो सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं वीसी प्रमोद।
1: बिल्कुल।
0: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इसी वजह से 12 जून से अस्थाई प्रतिबंध लगाए गए थे। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ता को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है, इसलिए जनहित में इन अस्थाई प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।

0: The West Bengal government has decided to implement the Uniform Civil Code UCC in the state. Chief Minister Subhendu Adhikari announced in the assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state cabinet meeting on the 2nd of July. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects, including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks.
1: केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा।
0: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will be on a 2-day visit to the Northeast beginning today. Mr. Chauhan will hold a high-level review meeting in Guwahati, Assam. The meeting will review the impact of floods on crops, villages and critical infrastructure in Assam and adjoining areas, assess the progress of ongoing relief operations and discuss the requirements for further assistance and intervention.
1: झारखंड में हर साल 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस आदिवासी क्रांतिकारियों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान की याद में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूंका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हुल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: The Goa government has launched a statewide banyan tree plantation campaign to promote biodiversity and environmental conservation. Chief Minister Pramod Sawant inaugurated the drive by planting a banyan sapling under the Ek Ped Ma Ke Naam initiative and announced that free banyan saplings will be distributed across the state. The government aims to plant at least one banyan tree in every village and will also implement several environmental initiatives over the next 5 years to protect Devar Island's ecological heritage.
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरा और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देश का सहयोग करने की अपील की है।
0: Moving on to sports, in the FIFA World Cup, Brazil defeated Japan 2-1 in the round of 32 at Houston Stadium in Texas. The victory sent 5-time champions Brazil into the next round. In another round of 32 match, Paraguay knocked out Germany after a 1-1 draw. Paraguay won the penalty shootout 4-3 to seal a historic victory.
1: तो ओबीसी हमने श्रोताओं को बता दिया कि देश और दुनिया में क्या हलचल चल रही है, तो अब रुख कर लेते हैं अपने महानगरों की भी ओर।
0: Absolutely, let's start with Chennai first.
1: बिल्कुल।
0: Yeah, Tambaram Corporation has vaccinated 41,449 stray dogs against rabies out of an estimated 46,286 stray dogs in the area. Over the past 6 months, the corporation conducted 10 mass vaccination drives to reduce the spread of rabies amongst dogs and lower the risk to humans. The area was divided into 5 zones and 10 teams vaccinated around 230 stray dogs every day. The Marine Products Export Development Authority will organize the second National Skill

0: Olympiad on Seafood Value Edition in Chennai tomorrow. The competition will be held during Seafood Expo Bharat 2026 from the 1st to the 3rd of July. It aims to encourage innovation, improve quality standards, recognize skilled professionals, and promote value addition in India's seafood processing and export sector.
1: और अब रुख कर लेते हैं दिल्ली की ओर।
0: जी।
1: दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस नीति के तहत सड़क कर में छूट सहित दिल्लीवासियों को करीब 15000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन चार सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: तो प्रमोद उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये नीति है हमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन से बिल्कुल राहत देगी।
0: जी बिल्कुल।
1: और एक और खबर है दिल्ली की ही। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे।
0: Moving on to Bangalore, the Karnataka Energy Minister K.J. George said the state government has no plan to privatize electricity distribution. He clarified that the energy department is capable of providing reliable power supply and said state power companies have opposed Tata Power's application for a distribution license. He assured employees that their interests will be protected. The minister also said that solar parks on 10,000 acres and long-term power purchase agreements have strengthened the state's energy security. Under the Gruha Jyoti scheme, 1.67 crore consumers receive free electricity at a cost of 21,000 crore rupees.
1: और अब रुक कर लेते हैं शहरे मुंबई की ओर। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
0: Moving on to Hyderabad, in a significant move to strengthen bilateral relations, Telangana and South Korea have agreed in principle to organize a grand Telangana-Korea cultural festival in Hyderabad on October 25th this year to strengthen cultural and tourism ties. During a meeting with a South Korean delegation, Tourism and Culture Minister Jupalli Krishna Rao said the festival will showcase the art, music, dance, cuisine and traditions of both regions. He also said the growing popularity of Korean entertainment in India will boost tourism, cultural exchanges and creative partnerships between Telangana and South Korea.
1: श्रोताओं, महानगरों की जानकारी के बाद अब वक्त हो चला है महानगरों के मौसम की जानकारी लेने का। सबसे पहले प्रमोद जहां से प्रोग्राम कर रहे हैं वहीं की जानकारी देते हैं श्रोताओं को। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज यहां तेज हवा चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान के 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
0: एंड आई टेल यू द वेदर फ्रॉम द साउथ।
1: जी,
0: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 28 degrees and a maximum

0: of 38 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 27 degrees to 34 degrees Celsius.
1: और वी सी अब प्रोग्राम का वो पढ़ाव आ चुका है जहां हम किताब हिस्ट्री की जो इतिहास की किताब है उसके पन्नों को पीछे पलटते हैं और जानते हैं कि आज यानी जो पर्टिकुलर दिन है 30 जून का वो क्यों इतिहास में दर्ज हो गया.
0: That's right.
1: तो बहुत कुछ बताएंगे श्रोताओं को आज के दिन के बारे में, लेकिन एक जो डे है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं.
0: Absolutely. Today marks the 11th World Asteroid Day, observed every year on the 30th of June to raise awareness about asteroid threats and the importance of space science. It commemorates the 1908 Tunguska event, when an asteroid or comet exploded in the atmosphere over Siberia, Russia, flattening nearly 2,000 square kilometers of forest and releasing energy comparable to about 185 Hiroshima atomic bombs.
1: और क्योंकि ये घटना दूरस्थ क्षेत्र में हुई थी इसलिए इसका अध्ययन 1927 में वैज्ञानिकों के पहुंचने के बाद ही संभव हो सका. ये दिवस पृथ्वी के निकट आने वाले क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड की पहचान, निगरानी और अध्ययन को बढ़ावा देता है ताकि भविष्य में संभावित खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. और श्रोताओं, आज की और घटनाओं का जिक्र करते हुए आपको सबसे पहले ले चल रहे हैं साल 1894 में, जब लंदन का प्रसिद्ध टावर ब्रिज थेम्स नदी पर आधिकारिक रूप से खोला गया. ये पुल लंदन के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक बन गया और आज भी थेम्स नदी पर एक महत्वपूर्ण मार्ग है.
0: That's right, 1905, 30th of June, German physicist Albert Einstein published his groundbreaking paper on the electrodynamics of moving bodies, officially introducing the historic scientific theory of special relativity to the world.
1: और आज ही के दिन 1936 में अमेरिकी लेखिका मार्गरेट मिशेल का ऐतिहासिक उपन्यास गॉन विद द विंड पहली बार प्रकाशित हुआ, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक बन गया.
0: That's right, 1953, the first Chevrolet Corvette sports car rolled off the assembly line in Flint, Michigan, launching one of America's most iconic automotive legacies.
1: और इसके लगभग 7 साल बाद 1960 में कांगो गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ द कांगो ने दशकों के औपनिवेशिक शासन के बाद बेल्जियम से अपनी आधिकारिक और पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी.
0: 1997, the United Kingdom officially handed over the sovereignty of Hong Kong back to the People's Republic of China, concluding 156 years of British colonial administration.
1: और प्रमोद, अब समय आ चला है कुछ ऐसी हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन या तो इस दुनिया में आई या हमसे जुदा हुई.
0: जी,
1: तो पुण्यतिथियों की बात करते हैं. पुण्यतिथि के क्रम में आज सबसे पहले याद कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी को, जिनको भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है. दादा भाई दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक थे. श्री दादा भाई नौरोजी का शैक्षिक पक्ष अत्यंत उज्ज्वल रहा. 1851 में इन्होंने गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया. 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने बनाई. अन्यत्र लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर भी रहे. 1869 में ये भारत वापस आए. यहाँ पर उनका 30,000 रुपए की थैली और सम्मान पत्र से स्वागत किया गया. 1885 में आपने बंबई विधान परिषद के सदस्यता ली. 1886 में हॉलबान क्षेत्र से पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ा लेकिन असफल रहे. फिर 1886 में ही फिन्सबरी क्षेत्र से

आज हम प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन को भी याद कर रहे हैं। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्रोताओं, आप सभी में से ज्यादातर जानते होंगे कि नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से अपनी रचनाओं का सृजन किया। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में यात्री नाम से लेखन किया है। नागार्जुन की मुख्य रचनाओं में शामिल हैं रतिनाथ की चाची, नई पौध

0: आज हम हिंदी के एक और प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक को भी याद कर रहे हैं प्रमोद
1: जी।
0: बात कर रहे हैं डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो रहे। डॉक्टर रघुवंश दोनों हाथों से अपंग थे, लेकिन फिर भी इस अपंगता को उन्होंने अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया। वो पैरों से लिखते थे, उन्हें कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संस्कृति एवं मानव मूल्य को आधार बनाकर लिखने वाले प्रोफेसर रघुवंश का हिंदी में नई आलोचना के सूत्रपात में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी लिखित कुछ मुख्य रचनाएं इस तरह हैं: तंतुजाल, अर्थहीन, छायालय, हरिघाटी, मानसपुत्र, ईसा आदि। और अब थोड़ा सा रुख जो होगा प्रमोद वो बॉलीवुड की तरफ होने वाला है
1: जी।
0: क्योंकि बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी की, जिनकी आज जयंती है
1: जी।
0: और भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे ये। कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ छंद संगीतबद्ध किए थे।

भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी कल्याण जी को ही जाता है। वर्ष 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था।

इस पुरस्कार के अलावा वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके अलावा 1974 में प्रदर्शित फिल्म कोरा कागज के लिए भी कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। श्रोताओं, कल्याण जी ने अपने सिने करियर में लगभग 250 फिल्मों में संगीत दिया और प्रमोद हम काफी सदाबहार नगमे

0: चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव की जो रसायन वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है, इन्हें CNR राव के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इन्होंने लगभग 1500 शोध पत्र और 45 वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी हैं। 16 नवंबर 2013 को भारत सरकार ने इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर वेंकट रामन और अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये तीसरे वैज्ञानिक हैं। और वीसी प्रमोद, अब घड़ी की सुइयां जो है वो इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं विराम दिया जाए, और श्रोताओं अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सर फिरोजी और वीसी प्रमोद को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: That's right, stay tuned for coming up next, Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar. Namaskar.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान हुरमुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।

0: हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में

0: होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश

0: और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from Moto Spirit and High

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी रीवा से आप सुन रहे हैं देशभक्ति गानों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम देशगान। कर्मा, इस फिल्म का गीत सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में लीजिए सुनिए फिल्म हकीकत का गीत। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति गानों पर आधारित फिल्म संगीत देशगान। अगला नगमा है फिल्म उपकार का, शब्द संयोजन गुलशन बावरा का, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज है महेंद्र कपूर और साथियों की।

मुकेश और साथियों की आवाज में आइए सुनते हैं फिल्म हम हिंदुस्तानी का गीत। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीतकार उषा खन्ना।

आकाशवाणी रीवा से इस समय हम सुन रहे हैं देशगान, देशभक्ति गानों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली पेशकश शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर, कुणाल काजावाला और विजय प्रकाश की आवाज में फिल्म लक्ष्य का। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

रोजा इस फिल्म का गीत सुनते हैं हरिहरन के स्वर में। कलमबद्ध किया है पी के मिश्रा ने और सुरों से सजाया है ए आर रहमान ने।

अब पेश है समीर का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया गीत। उदित नारायण, अलका याज्ञिक, सोनू निगम, सुदेश भोसले और कैलाश खेर के गाए गीत को लिखा है और फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

अगला गीत है फिल्म वीरचारा का। जावेद अख्तर के लिखे गीत को सुरों से सजाया है मदन मोहन ने और आवाज है लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रिथा मजुमदार की।

अब सुनते हैं फिल्म प्रेम पुजारी का गीत, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथियों के स्वर में। गीतकार हैं नीरज और संगीतकार एसडी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम देशगान। ये आकाशवाणी रीवा है। सुबह के 9:30 होने को हैं। शब्द सागर आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

सोच समझ की एक अदालत है मेरी। लोग प्रसन्नता के पुल बांधें या आलोचक बन जाएं, लेकिन सच को सच कहने की सच्ची हिम्मत है मेरी। लोग प्रसन्नता के पुल बांधें या आलोचक बन जाएं, लेकिन सच को सच कहने की सच्ची हिम्मत है मेरी। प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ, प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ, मेरे सारे मित्र समझते कितनी कीमत है मेरी। प्रेम भरे दो शब्दों के सिक्कों में ही बिक जाता हूँ, मेरे सारे मित्र समझते कितनी कीमत है मेरी। और मेरा घर परिवार जहाँ का मैं राजा कहलाता हूँ, मेरा घर परिवार जहाँ का मैं

0: और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखना। ज़िंदगी को और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखना। और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, तुम कभी अपने पसीने को बहा कर रखना। और कुछ स्वादिष्ट होगा रोटियों का स्वाद भी, तुम कभी अपने पसीने को बहा कर देखना। यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, धूप में तुम भी कभी तलवे जला कर देखना। यूँ तुम्हारी ज़िंदगी वातानुकूलित हो भले, धूप में तुम भी कभी तलवे जला कर देखना। जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, जिंदगी में तुम कभी खुद को हरा कर देखना। जीत के कुछ और भी आयाम खुलते जाएंगे, जिंदगी में तुम कभी खुद को हरा कर देखना। और यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दे न दें, यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दे न दें, पर गमों की खिड़कियों से मुस्कुरा कर देखना। यूँ भले खुशियाँ तुम्हारे द्वार दस्तक दे न दें, पर गमों की खिड़कियों से मुस्कुरा कर देखना। और तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, पर कभी गंगा जली सच की उठा कर देखना। तुम बना लेते समुंदर एक चुल्लू झूठ को, पर कभी गंगा जली सच की उठा कर देखना। और ज़िंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी, ज़िंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी, धूल थोड़ी सी हवा में तुम उड़ा कर देखना। ज़िंदगी का हश्र ये मिट्टी तुम्हें समझाएगी, धूल थोड़ी सी हवा में तुम उड़ा कर देखना। ज़िंदगी को और कुछ नज़दीक आकर देखना, तुम किसी के ज़ख्म पर मरहम लगा कर देखना। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे महेश अग्रवाल का काव्य पाठ। लीजिए अब सुनिए व्यंग्य वार्ता, विषय है नींद। वार्ताकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सक्सेना।
2: नींद का आना न आना, कम ज्यादा आना जाना, सब मुसीबत की जड़ है। डॉक्टरों के अनुसार यूं हर मनुष्य के लिए प्रतिदिन 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। लगातार कम नींद से विशेषकर महिलाओं में चेहरे की चमक कम और गुस्सा, पुरुषों में याददाश्त की कमी और चिड़चिड़ापन आदि आदि समस्याएं जन्म ले लेती हैं। गोरी महिलाएं गुस्से से काली पड़ जाती हैं और काले गोरे सभी तरह के आदमी चिड़चिड़ेपने के कारण अपनी खुद की बीवी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे नुमा आदमी और औरत दिन में भी सुनहरे सपने देखते रहते हैं। नींद को केवल रात की रानी कहना उसका अपमान करना होगा। कान में जू डालकर आप सो सकते हैं, चाहे तो कॉकरोच भी दोनों कानों में डालकर मजे से सो सकते हैं। आप नींद में खर्राटे ले सकते हैं, करवट बदल सकते हैं और क्या क्या बदल सकते हैं। आप नींद में कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। जो काम आप जागते हुए मुश्किल से कर पाते हैं, वही काम आप नींद में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नींद में सपने आने पर यूरोप, अमेरिका, टिम्बकटू कहीं भी घूमकर आ सकते हैं। और अगर आपका नरक और स्वर्ग से परिचय है तो यमराज और हूरों से आसानी से मिल सकते हैं। दिल करता है कि नींद तू मस्त मस्त फिल्मी स्टाइल में गाना लिख डालूं। नींद गरीब को आती है और अमीर को भी। साधु संत योगी दार्शनिक कवि और बहुत सारे लोग नींद के संबंध में भ्रामक बातें करते रहते हैं। हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। साधु संतों को नींद आती है परंतु दूसरों को इससे बचने की हिदायत देते रहते हैं। सुबह जल्दी उठने का उपदेश देने में इन्हें बड़ा मजा आता है। कहेंगे सुबह सुबह उठकर ध्यान लगाओ। अरे ध्यान भी तो एक तरह की नींद ही है। हमारे और आपके हिसाब से यह जीवन भी तो एक नींद ही है। शायद इसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज बट ए ड्रीम। ज्यादा जोर की नींद लगी और काम तमाम हो गया।

राम नाम, इसलिए नींद लो पर बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहो कि दुनिया में क्या हो रहा है। दार्शनिक दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या से जीवन को परिभाषित करते रहते हैं। अब इनसे कोई पूछे नींद क्यों आती है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। चिर निद्रा में जो लीन हो गया उसे डॉक्टर, हकीम, वैद्य कोई भी उठा नहीं सकता, उसे केवल चार आदमी ही उठा सकते हैं। कवि अगर प्यार में असफल रहा है तो नींद पर इस तरह के गीत लिखता है कि सुनने वाला सुनकर सो जाता है, और अगर वह प्यार में सफल होता तो कवि के बजाय पति बनता। सभी कवियों से निवेदन है कि वे सोते जागते इस बारे में सोचें और लिखें। सिगमंड फ्रायड और यूंग सपनों और नींद के बारे में बहुत कुछ लिख गए। केवल कुछ लोगों को ही रंगीन टेक्निकलर सपने क्यों आते हैं? मुंगरी लाल को दिन में भी रंगीन कलरफुल सपने आते हैं। सपने सपने हैं। जेम्स जॉइस ने यूलिसिस उपन्यास में 10-20 पेज अपना सपना लिखने में ही रंग डाले। नींद आएगी तो सपने भी अवश्य बिनबुलाए आएंगे। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने नींद में कभी भी सपना ना देखा हो? नींद, बेहोशी और कोमा तीनों एक ही चीज हैं या अलग अलग? तीनों अवस्थाओं में आदमी को सही सही याद नहीं रहता, एक शादीशुदा के समान। नींद एक नियमित प्रक्रिया है, बेहोशी यदा कदा और कोमा केवल किस्मत वालों को ही होता है। कोमा में आदमी सालों साल बेखबर पर लोग परेशान, यहां तक कि डॉक्टर भी परेशान। बेहोशी में आदमी थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर अपने आप में मस्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रायः लेखकों और महान वैज्ञानिकों को देखा जा सकता है। इस तरह का वातावरण निर्माण हेतु कभी कभी तरह की औषधियों का सेवन करना परमावश्यक हो जाता है। कुछ बीमार काया वालों को नींद न आने पर गोली खाना होती है, कड़वी दवा पीना होती है। जिनको ज्यादा नींद आती है उन पर दवा गोली जरूरी हुआ तो अपने ही खर्राटों से आपकी नींद को रोके रखते हैं। ध्यान रहे, नींद का छोटा बच्चा झपकी कहलाता है। कुछ लोग अनजाने में नींद में चलते हैं, वे नींद में ही अपना या आपका मर्डर भी कर सकते हैं। कुछ को नींद में ही भूत, प्रेत, चुड़ैल और न जाने क्या क्या दिखते हैं। ऐसा हमने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, उपन्यास, नाटक और कहानियों में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। यूं बगासी, जुम्हाई, अंगड़ाई नींद आने के पूर्व लक्षण होते हैं। मैं यहां बगासी लूं तो आपको वहां नींद आ जाएगी, और अगर आप वहां जमाई लें तो मुझे यहां नींद आ जाएगी। ड्राइवर चाहे कार का हो, ट्रेन का हो, जहाज का, हवाई जहाज का हो, यूं समझ लीजिए हर तरह के ड्राइवर को अपना काम करते समय सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग नींद में खर्राट लेते हैं तो कुछ खर्राटों के बीच भी बड़े मजे और इत्मीनान से नींद लेते हैं। होशियार लोग भरी ट्रेन या भरी बस में भी खड़े खड़े ही नींद को लपक लेते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ पक्षी, जानवर और आदमी रात के अंधेरे में ही देख पाते हैं। वे रात में नींद ले पाते हैं या नहीं, विश्वासपूर्वक मैं नहीं कह सकता। आप चाहे तो किसी उल्लू या चमगादड़ का साक्षात्कार लेकर यह प्रश्न अपने समाधान एवं संतोष के लिए अवश्य कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में धूम्रपान निषेध के अलावा खर्राटे मना की सूचना पट्टी होना जरूरी है। मेरे मामा जी की बिटिया अपने पिताश्री यानी मेरे मामा जी के साथ फिल्म देखने जाने से कतराती थी। उसकी शिकायत होती थी, पिताजी के खर्राटों के कारण लोग फिल्म देखने के बजाय हमारी ओर देखने लगते हैं। माँ बाप धूरी संजा यानी डस्क के समय बच्चों को सोने से मना करते हैं। मेरी माँ तो इस समय को शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक खींच कर ले जाती थी। नींद और पढ़ाई का गहरा संबंध है। पढ़ाई के नाम पर नींद आना स्वाभाविक है। इधर कुछ लोगों का यह हाल है कि घर में आग लग जाने पर भी वे नींद से नहीं उठेंगे। नींद अमूल्य जो है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय जो लोग घरों में सोते रहे वे बच गए, और जो नींद को दगा देकर खुले में भागे वे बेमौत मर गए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सपनावस्था और शांत निद्रा अवस्था।
आज की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में आदमी जागृत अवस्था में भी दिन रात अपने आप

को सपने देखते हुए पाता है। पुराने विद्वानों के मतानुसार जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं, नींद में आया सपना मर जाता है। नींद के लिए गद्दा, तकिया, लिहाफ, कुर्सी, सोफा

0: चोरों को रात में बिल्कुल नींद नहीं आती, इसी कारण बेचारे चोरी करते हैं। बूढ़े व्यक्तियों को नींद कम आती है, सासों को नींद कम, बहुओं और बच्चों को कुछ ज्यादा ही नींद आती है। अब आपसे बात करते करते मुझे भी आ रही है नींद, इस कारण शुभ रात्रि, गुड नाइट आदि आदि।
1: शब्द सागर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे व्यंग्य वार्ता, विषय था नींद। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पद्मावत फिल्म का गाना है, आवाजें है श्रेया घोषाल, स्वरूप खान और साथियों की। संजय लीला भंसाली का संगीत है और गाने को लिखा है AM तुराज ने।

सिंह इज किंग, इस फिल्म का गाना सुनिए। लव जुनेजा, सर्जी क्यू और साथियों की आवाजें हैं। संगीत प्रीतम का और एक गाने को लिखा है मयूर पुरी ने।

0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म का गाना सुनिए फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल है और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।
1: ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सीनियर

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम में हुए बदलाव का असर बालाघाट जिले में भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के कारण लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन तेज बारिश का अब भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बालाघाट जिले में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जिले में बीते 1 जून से 24 जून तक कुल 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। अब बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय बालाघाट में मुस्कान ओपीडी के अंतर्गत विशेष जागरूकता एवं जांच कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें कुल 1899 लोगों की जांच की गई। इस वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस की थीम जीवन रक्षा के अंतर को समाप्त करना, सिकल सेल देखभाल में समानता सुनिश्चित करना रही। कार्यक्रम के दौरान 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की सिकल सेल की जांच की गई और गर्भवती महिलाओं तथा उनके परिजनों, बच्चों, सिकल सेल पॉजिटिव मरीजों तथा आमजनों को रोग के प्रति जागरूक किया गया। बीते 21 जून को बालाघाट के मुलना स्टेडियम में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सांसद भारती पारधी की अध्यक्षता में सामूहिक योग में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर मृणाल मीना, अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत बालाघाट जिले में प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की खोज, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है। अब बात करते हैं किसानों के कल्याण से जुड़ी खबर की। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,36,130 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जिला स्तरीय रैंकिंग में बालाघाट जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2026 माह में बालाघाट जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगातार 2 माह तक प्रदेश के शीर्ष 3 जिलों में स्थान बनाकर बालाघाट ने किसान कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र की। विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेल

एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने चित्रकला के माध्यम से योग, स्वास्थ्य और ओलंपिक मूल्यों का संदेश दिया। इस अवसर पर 35 खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सतीश शर्मा ने कहा कि कड़े परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही भविष्य के ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होंगे। अब बात करते हैं जिले में प्रशासनिक गतिविधियों की। भोपाल से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बीते दिनों प्रदेश के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में बालाघाट जिले ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां दर्ज कर प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थान बनाया। इसी प्रकार टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण में भी बालाघाट ने 100% उपलब्धि के साथ प्रदेश में पहला स्थान साझा किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में भी बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पंजीयन में बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। बच्चों की अपार आईडी बनाने में भी बालाघाट जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अब बात साइबर जागरूकता की। बालाघाट जिले में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज ललित शाक्यवार, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की उपस्थिति में बीते दिनों साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आयोजित सेफ क्लिक 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ललित शाक्यवार ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। युवाओं को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण को लेकर एक अच्छी खबर है। पुलिस सेवा में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस बैंड भर्ती की घोषणा की गई है। इस क्रम में जिला पुलिस बालाघाट द्वारा अमर शहीद आशीष शर्मा निशुल्क पुलिस बैंड प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 250 से अधिक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रशिक्षण केवल बालाघाट तक सीमित नहीं है, बल्कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के युवा भी यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस बैंड भर्ती एवं रोजगार की दिशा में अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हैं। और अंत में बात दो बूंद जिंदगी की। बालाघाट जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां 3584 टीकाकरण कर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी पूरी तत्परता के साथ सेवाएं दे रहे हैं। बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे बालाघाट जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत, आरंभ भजन से। कलाकार हैं श्री प्रदीप।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक क्लीन भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए

0: करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी रीवा से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। फाल्गुनी पाठक के स्वर में आइए सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी रीवा से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। अब सुनते हैं सूफी गीत, आवाज राहत फतेह अली खान की है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका, आपकी रेडियो मित्र श्वेता के साथ। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक शहर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट था, उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। एक गरीब आदमी उसकी दुकान के सामने सुबह के समय रोज आता। जैसे ही दुकान में आवाजाही बढ़ती, वो भी रेस्टोरेंट में बैठकर भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खाता और चुपचाप भीड़ से निकल जाता। दुकान के नौकर चौकर ने देखा और इसकी शिकायत अपने मालिक से की। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने मुस्कुराकर कहा, इस बात को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि उस गरीब व्यक्ति के भरपेट खाने से मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। तो ये थे एक अच्छे कर्म और साथ ही ईमानदारी भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में जब हम अच्छे काम करते हैं और ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा, इस बात पर हम जानेंगे आपके विचार। इसके लिए हमारे फोन नंबर है 2660902 और जो श्रोता साथी बाहर से हमसे बात करना चाह रहे हैं, भोपाल से बाहर से, वो उनको एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा 0755। तो इंतजार है हमें आपके विचारों का। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते, आकाशवाणी
0: जी, आकाशवाणी भोपाल से हम बोल रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: आप कौन दीदी?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना? पहले आप अपना नाम बताएं।
1: रमेश पेंटर, सतना से।
0: जी तो रमेश जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है जी।
0: जी हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे कि जैसे हमारे जीवन में जब हम कोई काम अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, ईमानदारी से उस काम को करते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, मतलब उसके फायदे क्या होते हैं?
1: देखिए ईमानदारी से तो देखिए हर सभी चीज का फायदा है उसमें।
0: जी
1: ईमानदारी में तो सभी चीज का फायदा है।
0: हाँ जी बताएं, इससे आपके काम कैसे होते हैं, समय पर होते हैं, सफल होते हैं, बताएं।
1: अब हम ही लोग लगे रहते काम में दिन भर।
0: जी जी जी, इसके लिए आप सुबह से उठते होंगे, तैयारी करते होंगे, समय पर पहुँचते होंगे।
1: जी दीदी
0: बताएं किस तरह आप अपने काम को करते हैं?
1: अब हम लोग तो काम में लगे रहते तो लगे ही रहते हैं। हम लोग को तो काम दीवारों में लिखने जाना पड़ता है विज्ञापन।
0: अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो इसके लिए भी आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। सुबह उठते होंगे जल्दी, उठकर जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर जल्दी समय पर पहुंचते होंगे अपने काम पर।
1: घर तो भाई शाम को जब तक दिन निकला रहता है काम करना पड़ता है, दीवारों में लिखना पड़ता है, वॉल पेंटिंग।
0: जी जी वॉल पेंटिंग। हाँ तो मतलब यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम

0: पूरी ईमानदारी से किसी काम को करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है ना। पूरी ईमानदारी से अगर हम किसी काम को करें तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा?
1: उसका फल अच्छा ही मिलता है,
0: जी
1: जब ईमानदारी से करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा।
0: जी यही मैं जानना चाह रही थी। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ
0: जी। आपका नाम बताएं।
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था, बिरसिंहपुर पाली उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी तो कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैडम, कहते हैं ना वाणी से ही बीज झरे, वाणी से ही

0: जलधार और मीठा वाणी बोलिए जीवन का है सार।
1: बहुत अच्छी बात, हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल मैम। हाँ, और आकाशवाणी जो मध्य प्रदेश होता है बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रमों का संचालन करता है, और इसमें जो निकलने वाले कार्यक्रम होते हैं जिसमें गीत सागर, नमस्कार भोपाल और कार्यक्रम बात आपकी गीत, हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, युवाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हमें जो रोजगार के अवसर मिलते हैं ये भी सब कुछ बतलाए जाते हैं मैडम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें ये तो ये जानकर लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना? हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, कि जैसे किसी काम को हम करते हैं जीवन में, तो जी। आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है, आपका दुकान, आपके व्यवसाय, नौकरी, कुछ भी हो सकता, अगर उसको हम ईमानदारी के साथ करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में?
0: जी, काम को यदि शांतिपूर्वक रूप से किया जाए तो काम बिल्कुल बेहतर बन जाता है। काम यदि अच्छे तरीके से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, तो काम बिल्कुल दुगने उत्साह के साथ पूरा हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, जब उसका मूल्य उसे प्राप्त होता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसी प्रकार से यदि हम अपने कामों को आनंद के रूप में यदि लें तो काम बोझिल नहीं नजर आता, बल्कि वह सम्मान भाव से अच्छा ही बनने का प्रयास होता है। तो काम को अच्छी ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए, और जीवन में अच्छा सोच रखेंगे तो सभी काम अच्छे से अच्छे हो पाएंगे।
1: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, है ना? आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी तो स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: बताइए क्या हाल चाल है वहाँ का, मतलब मौसम क्या हाल चाल
1: है? मौसम बारिश का तो अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब पानी रुक रुक कर गिर रहा है।
1: जी जी नहीं, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
0: नहीं हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपके यहाँ अच्छी से बारिश हो ताकि ठंडक पहुंचे, है ना। तो बताएं कि कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में हम आपके हम सब बात साझा करना चाह रहे थे कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं जीवन में, है ना, निश्चित रूप से अपने जीवन से जुड़े कुछ काम, तो वो अगर हम ईमानदारी से करें तो उसका क्या फल मिलता है?
1: फल यही मिलता है, सफलता जरूर मिलती है, भले देर सवेर मिलती है, मतलब सही ढंग से प्रयास जब हम करते हैं, समय जरूर लगता है लेकिन उस चीज की कीमत हमें बिल्कुल मिलती है।
0: वही मैं कह रही हूँ कि
1: मतलब
0: हाँ,
1: कोई दूसरा रास्ता नहीं है ईमानदारी और सच्चाई के अलावा जगह पहुंचने के लिए।
0: बिल्कुल, कुछ लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, झूठ बोलकर काम करते हैं, तो वो सारी चीजें कारगर सिद्ध नहीं होती।
1: जी, और हो भी जाए तो वो एक समय तक रहता है,
0: बस छोटे से समय के लिए।
1: हम मेहनत से और लगातार प्रयास करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है।
0: बिल्कुल, और वही मौलिक रूप में हमारे साथ होती है।
1: जी
0: है ना, आपने फोन किया, बहुत अच्छे विचार हम पे बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: जी, नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, सादर नमस्कार।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं बहुत पुराना श्रोता, 70 के दशक का श्रोता हूँ।
0: जी
1: राजेश नेमा, सिंहपुर बड़ा से।
0: जी तो
1: और आप
0: जी हम जानते हैं, बिल्कुल
1: शामिल नहीं कर रहे आपकी फरमाइश में।
0: अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको। आप हमारे बहुत पुराने श्रोता साथी हैं, है ना?
1: और नियमित पत्र भेज रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: कीजिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे पुराने श्रोता साथियों से हमारी बात होती है, है ना?
1: मैं तो काफी पुराना श्रोता हूँ और उस समय का श्रोता हूँ जब
0: बिल्कुल। तो अब हम आपसे कुछ विचार जानना चाहेंगे, बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में
1: जी।
0: कि अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप अपने जीवन से जो जुड़े रिश्ते हैं, है ना, बहुत सारे रिश्ते हैं, हम माता पिता हैं, भाई बहन हैं।

0: है ना।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: मित्र हैं, तो इसमें अगर हम ईमानदार हैं, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभा रहे हैं, अपने सारे
1: जी
0: काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उसका क्या फल मिलता है हमें,
1: जी
0: बताएं।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। रिश्ते आज के समय में वैसे भी भाग दौड़ बहुत है, तो
0: जी
1: निश्चित रूप से रिश्ते तो निभाना ही चाहिए, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो रिश्ते ही काम आते हैं।
0: जी हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग,
1: जी
0: उन्हें
1: जी
0: हम सम्मान दें, प्यार दें और उनके अनुभव से सीखें, क्या लगता है
1: बिल्कुल,
0: आपको?
1: बहुत आवश्यक है। वो तो बुजुर्ग एक बहुत बड़ी पाठशाला होते हैं,
0: जी
1: उनका सानिध्य नितांत आवश्यक है।
0: और हम बहुत कुछ उनसे सीखते हैं, नहीं
1: बिल्कुल, बहुत,
0: है
1: वो
0: ना।
1: तो
0: आजकल
1: जरूरी
0: ऐसा हो
1: चीज है।
0: गया है
1: जी
0: कि
1: जी
0: बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, मोबाइल के लिए
1: जी
0: इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें समय देते
1: जी
0: हैं, लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी बातों को सुने, उनके अनुभवों को सुने, तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्या लगता है आपको,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, बहुत आवश्यक है आज के समय में, क्योंकि जब इंसान मशीन हो गया है तो रिश्ते कोई भी हो संभाल के रखना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और सबसे जो बुजुर्ग हैं उनसे तो निश्चित रूप से सान्निध्यता होनी ही चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक वो जीवन का पूरा निचोड़ होते हैं और सच्ची सीख भी देते हैं।
0: बिल्कुल। और परिवार के साथ अगर हम एक समय में मिल बैठ कर खाना खाएं, है ना, तो वो भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: अच्छा
1: वो
0: है।
1: जी बिल्कुल, वो एक परिवार के साथ रहना और मिलकर बैठ के बातें करना और सानिध्य बनाए रखना, ये आज के समय की मांग है।
0: और इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सुलझ जाती हैं।
1: हाँ बिल्कुल जी
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: और
1: जीवन का
0: हम
1: निचोड़ मिलता है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए
0: इसका भी समाधान
1: उसकी एक
0: मिलता है।
1: विस्तृत जानकारी भी मिलती है।
0: बिल्कुल, तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके पत्र आप हमें भेजते रहिए, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, मैं तो
0: बिल्कुल
1: बहुत आकाशवाणी भोपाल का तो मैं 70 के दशक का श्रोता हूँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और
0: तो
1: उस समय भी सुनता था और आज भी सुन रहा हूँ,
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम लाजवाब है।
0: जी धन्यवाद। और आज आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में स्वागत करते हैं आपका। नाम बताएं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। हाँ नाम
1: मैं रानी कली छत्रपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ मैं
0: जी।
1: क्या विषय रखा सर मैम आपने आज?
0: अपनी जगह का नाम एक बार हमें फिर से बता दें।
1: रानी कली छतरपुर मध्य प्रदेश।
0: हाँ हाँ आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमने विषय रखा है कि आप कोई भी काम करते हो जीवन में अगर आप उसे ईमानदारी से करते हैं है ना अपने जीवन से जुड़े सारे अच्छे काम अगर हम पढ़ाई करते हैं व्यवसाय है नौकरी है हमारा परिवार इन सभी चीजों में अगर हम ईमानदार हैं तो उससे हमें क्या लाभ है?
1: ईमानदारी से तो अच्छा कोई है नहीं मैम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
0: जी
1: ना, तो उसका तो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा रहेगा। यदि आप अपने कर्तव्यों में अपने व्यवस्थाओं में अगर ईमानदार हैं
0: जी
1: संबंधों में ईमानदार हैं आप
0: जी
1: तो हमेशा आप सक्सेस रहेंगे
0: जी बिल्कुल। हाँ।
1: थोड़ी देर के लिए टाइमिंग दिक्कतें आती हैं जी आ सकती हैं आज के परिवेश के हिसाब से
0: जी
1: लेकिन अंततः विजय आपके ईमान की ही होगी आपकी ईमानदारी की ही होगी
0: जी जी जी बिल्कुल
1: तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए ईमानदार होना तो एक बहुत मतलब अच्छी चीज है
0: ना जी बिल्कुल
1: और बाकी तो इधर मतलब आज के जैसे वातावरण बदल रहा है
0: जी जी
1: उसी हिसाब से लोग इधर उधर सब मतलब होते रहते हैं काम अभी इससे कुछ कह दिएगा अभी उससे कुछ कह दिया लेकिन अंततः जो है वो ईमानदारी ही आपको सक्सेस की राह पे लेके जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो आपके काम हो है ना कोई भी क्षेत्र हो अगर आप उसमें लगन है आप में ईमानदारी है आप में तो आप जरूर सफल होंगे है ना।
1: डेफिनेटली वो है ही है भाई वो सक्सेस का तो एक तो कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई मतलब उसका वो नहीं है उसमें कोई मिलावट करके आप काम करें वो नहीं है ना
0: जी बिल्कुल।
1: ईमानदार का ईमानदारी के संबंध डायरेक्ट आत्मा से है।
0: बिल्कुल बिल्कुल देखिए
1: तो आत्मा में मिलावट नहीं चलती मैम।
0: बिल्कुल
1: दुनियादारी मिलावट चल जाएगी लेकिन आत्मा और परमात्मा मिलावट नहीं चलेगी। आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा तभी आप सक्सेस हो पाएंगे।
0: बिल्कुल तभी आपका जीवन सहज

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: जी तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में। और आज हमने
1: दीदी आपको
0: जी आज हमने विषय रखा है कि जीवन में आप अपने काम के प्रति अगर ईमानदार हैं तो उससे क्या फायदे हैं आपको।
1: दीदी जीवन में अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं
0: जी
1: तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है और असफलता का नाम नहीं रहता है।
0: बिल्कुल। और अगर आप लगन से करते हैं है ना, साथ ही साथ
1: उसमें आपको तरक्की होना ही होना है।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ ये ईमानदारी अगर आप जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ रखते हैं तो उससे फायदा होता है आपको।
1: बिल्कुल दीदी,
0: है ना, परिवार में
1: आपका विश्वास बना रहता है।
0: बिल्कुल। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं, घर पर बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, उनका आप सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं तो इससे आपको फायदा मिलता है।
1: जी जी जी, जो हमारे बड़े हैं तो वो अपना अनुभव हमसे शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और हम अपना ज्ञान बच्चों को शेयर करेंगे उनको भी ज्ञान

0: हो जाएगा।
1: बिल्कुल। और काम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर आपका व्यवसाय है, अगर आप इन कामों में झूठ बोलते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, तो इससे आपको सफलता अगर मिलती है, वो सफलता बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती। क्या सोचते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं जी। देखिए,
1: आप, अगर हम मेहनत
0: मैं
1: हैं?
0: दुकानदार हूँ
1: जी
0: तो मेरा बिजनेस है,
1: जी
0: तो अगर बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा, ग्राहकों के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा, तो
1: बिल्कुल
0: कोई एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते।
1: बिल्कुल, है ना? बहुत अच्छी बात कही आप। ग्राहकों के प्रति अगर ईमानदार हैं, उन्हें अच्छा सामान दे रहे हैं, तो वो आपकी दुकान में आएंगे ही।
0: जी बिल्कुल दीदी,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: आपका कारोबार बढ़ेगा, है ना?
0: जी।
1: जी, आपने फोन किया और बहुत ही अच्छे विचार हम तक बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार दीदी, धन्यवाद आपको भी।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: हाँ कार्यक्रम बात आपके गीत
1: वंदे
0: हमारे।
1: मातरम।
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: किशन घी वाला।
0: जी तो कहाँ से
1: हेलो,
0: बात कर रहे हैं आप, आपकी जगह का नाम बताएं।
1: दमो।
0: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, ये कार्यक्रम में आपका फोन लगा है और हम बात कर रहे हैं आज ईमानदारी के गुण की, कि अगर आप ईमानदार हैं तो उससे आपके
1: जी
0: जीवन में आपको क्या फायदा है।
1: बहुत अच्छा विषय है,
0: जी
1: मेरा ही विषय है ये। जी
0: जी जी जी
1: सुनिए,
0: हाँ
1: मेरा ऑटोमोबाइल का काम है। तो
0: जी जी जी
1: यदि हम दुकान चलाते हुए, अपना व्यापार करते हुए ईमानदारी से, मतलब जिस चीज का जो रेट है वही बताते चले जाते हैं सबको, तो वो फिर हमें याद नहीं करना पड़ता। एक दो बार बस देखा कि इस गेयर की कीमत 920 है, तो सबको 920।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी
1: आप
0: बात।
1: सुन रही
0: हाँ
1: हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो निश्चित रूप
1: जी
0: से आपका कारोबार बढ़ेगा,
1: दूसरी चीज,
0: है ना।
1: अब हमारे यहाँ वर्कशॉप है,
0: जी जी
1: सर्विस सेंटर है मारुति,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसमें जो भी पार्ट लगता है,
0: जी जी
1: जो भी, चाहे वो 2 रुपए का बोल्ट है या स्क्रू है, और चाहे वो 5,000 रुपए का कोई पार्ट है, तो ईमानदारी से उतना ही लिखा जाता है उसमें। हेरा फेरी या आज की भाषा में गट्ट पट कुछ नहीं किया जाता।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और
1: वो फिर हमेशा के लिए, कोई भी हमारा बिल देखता है तो हमारे बिल ऑनलाइन जाते हैं,
0: जी जी
1: जरा भी उसमें संशय नहीं रहता है। कोई
0: बिल्कुल
1: अगर 6 महीने बाद भी बिल देखे कि आपकी मारुति, हमारी मारुति में ये काम हुआ था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: बराबर हुआ था, ये
0: बिल्कुल
1: पार्ट
0: बिल्कुल,
1: लगा।
0: ये बहुत विश्वास की बात है और आपका एक
1: जी
0: भरोसा रहेगा अपने ग्राहकों
1: जी
0: के लिए। तो
1: तो उससे बहुत फायदा होता है,
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: लाभ होता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए
1: ईमानदारी।
0: हाँ फोन किया
1: ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।
0: बिल्कुल, बहुत
1: अब
0: अच्छा
1: आप
0: अनुभव,
1: बताइए, कुछ
0: बहुत
1: आप
0: अच्छा
1: भी
0: अनुभव।
1: बताइए।
0: हाँ तो बस हम इस कार्यक्रम में तो आपके विचार जानना चाह रहे हैं, आपके अनमोल विचार जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपने
1: कुछ
0: फोन
1: हमें
0: किया।
1: भी आपसे सीखने को मिल जाता ना,
0: जी जी
1: कुछ
0: जी
1: आप भी बता दीजिए, आप कौन
0: नहीं
1: बोल
0: नहीं
1: रही हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ और आपसे जो विचार हमने सुनने को मिले वो बहुत अच्छे लगे, है ना। इसके लिए आपका
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हम कह सकते हैं।
1: आपको भी
0: नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: जी नमस्ते।
2: जी नमस्कार बहन जी,
1: आपका नाम बताएं।
2: सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजना, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका फोन लगा है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में, है ना?
2: जी,
1: और
2: क्या है
1: आज हम बात कर रहे हैं ईमानदारी के गुण की, कि हम अपने जीवन में अगर किसी भी काम से जुड़े हुए हों, अपने जीवन से जुड़े अच्छे काम, आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, पढ़ाई, तो इन सब चीजों में ईमानदारी के क्या मायने हैं?
2: ईमानदारी के मायने है कि जैसे अगर अपन ईमानदारी से काम करते हैं तो अपन को मतलब पीछे नहीं हटना पड़ेगा, सफलता ही सफलता मिलती जाएगी आगे के लिए।
1: जी बिल्कुल,
2: और ईमानदारी से भी काम करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और कोई काम है तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेफजूल का पैसा ही लेना चाहिए किसी का, जो काम करे वो ईमानदारी से करे।
1: बिल्कुल, अगर ईमानदार हैं हम तो निश्चित रूप से मतलब एक भरोसा कायम होगा हमारा।
2: जी, जी,
1: लोगों के प्रति, है ना, और लोग हम पे विश्वास करेंगे, है ना?
2: जी बिल्कुल,
1: और हम निश्चित रूप से सफल होंगे।
2: जी
1: तो
2: जी, आज आप शायद मुश्किल लगता है।
1: नहीं, मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
2: अच्छा, आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: जी जी जी, और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

कथा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। इस कार्यक्रम में आज मैं थी आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध और अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पंचायतों, शासकीय विभागों

0: निजी संस्थाओं, विभिन्न संगठनों और समूहों सहित जागरूक नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,62,000 से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भोपाल के गांधी भवन में आज शाम 6 बजे भारत में भाषाओं की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

ये फरमाइश कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आ गले लग जा स्कंद का गाना, आवाज है किशोर कुमार सुषमा श्रेष्ठा की। साहिल लुधियानवी के बोल है और संगीत है आर डी बर्मन का, और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ ने इस गाने को पसंद किया है। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का फिल्म आ गले लग जा का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये पत्र हम तक आया है राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन का, और साथ ही साथ उपाध्याय नगर से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, और साथ ही साथ नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत, आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म लोफर का गाना लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी की बोल है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब सुनिए फिल्म राम लखन का गाना, मनहर अनुराधा और साथियों की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है बड़वाहा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली, और ये फरमाइश है पटेल नगर पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू ने इस गीत को पसंद किया है।

सौतन फिल्म का गाना सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। गाने को लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है उषा खन्ना का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, साथ ही अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, राव और शाहिद ने इस गाने को पसंद किया है। और अकोला से रमेश और वैशाली ने इस गीत को पसंद किया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं तुम बिन। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साथियों की। फैज अनवर ने गाने को लिखा है और संगीत है निखिल विनय का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं दत्तरंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और सिंगारपुर से सालिक पुजारी। साथ ही साथ इंदौर से ये फरमाइश हम तक आई है लाल फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया की।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आकाशवाणी के

0: कहाँ है?
1: ये है सम्राट।
0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।
1: सम्राट,
0: इस प्रासाद में रहने वाले सभी दास दासियां देख लो, अपनी साम्राज्ञी की काली करतूतों। इसने अपनी बहन को बुलाया था भुवन मोहिनी की हत्या के लिए। ये कृतज्ञ स्त्री भुवन मोहिनी के त्याग और बलिदान के बदले उसे विष दिला रही थी। महाराज आदित्य सेन की पुत्री का वास्तविक स्वरूप देख लिया? देख लो अच्छी तरह से, देख लो सब और जान लो इसके चरित्र को अच्छी तरह से। भुवन मोहिनी ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया इसके लिए। प्रतिकार में ये क्या दे रही थी भुवन मोहिनी को? ये विष की शीशी, जिसके स्पर्श मात्र से किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। इन हत्यारियों के सुंदर चेहरों के धोखे में आकर तुम लोग भी इनके कहने पर आ गए। ये विमला नाम की स्त्री कोई चिकित्सिका नहीं, ये डायन है, डायन। सैनिक स्त्रियों, ले जाओ इन दोनों को, इसी महल में अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, किसी ने भी लालच में आकर इन दोनों में से किसी की भी कोई सहायता की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों को कोई वस्तु ना दी जाए। मेरी आज्ञा के बिना इन दोनों से किसी को बात ना करने दिया जाए, भले ही वो राज परिवार का ही क्यों ना हो। यदि मुझे इसकी जानकारी मिली कि किसी भी प्रकार की शिथिलता की गई तो उसे मैं राजद्रोह मानूंगा, राजद्रोह। यह आदेश राज परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी है।

0: राजमाता राजमाता,
1: क्या हुआ संरक्षिका, क्या हुआ? तुम सब लोग इतनी डरी हुई क्यों हो?
0: राजमाता, आज हम सब ने सम्राट का वो रूप देखा जो भगवान न करे कभी किसी को दोबारा देखना पड़े।
1: क्या हुआ?
0: सम्राट साम्राज्ञी और उनकी अतिथि बहन विमला को अंतर कक्ष से मारते पीटते बाहर ले आए और बंदी गृह में बंद करा दिया।
1: क्या कहा? किस अपराध में?
0: भुवन मोहिनी की हत्या के प्रयास के अपराध में।
1: क्या?
0: हाँ,
1: साम्राज्ञी ऐसा नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ।
0: परंतु?
1: क्या परंतु, मैं स्वयं देखती हूँ, तू घबरा मत। संरक्षिका, गांधारी स्त्रियों से कहो बंदी गृह का द्वार खोले।
0: क्षमा राजमाता, क्षमा। सम्राट का आदेश है, इन अपराधिनियों से कोई नहीं मिल सकता, चाहे वो राज परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो।
1: क्या?
0: हाँ।

0: सावधान, भारत सम्राट विजय शर्मा अंतापुर में आ रहे हैं।
1: अरण्यक, सबको कहो कि बंदी गृह के सामने मेरे आदेश को सुनने के लिए उपस्थित हूं।
2: जो आज्ञा।
0: अंतापुर के सभी राज कर्मचारी

0: सम्राट का आदेश सुनने के लिए बंदी गृह के समक्ष उपस्थित हो। शीघ्रता करो।
1: सम्राट, सम्राट हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट हमें, सम्राट क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट, सम्राट, सम्राट।
2: कितनी बार चंद्रहास ने, कितनी बार क्षमा करो। यदि भुवन मोहिनी की हत्या तुम कर चुकी होती तब भी क्या तुम क्षमा मांगती?
3: प्रणाम सम्राट,
4: प्रणाम सम्राट,
3: प्रणाम सम्राट।
2: इनमें से महिला मजदूर कौन है?
3: हम लोग हैं सम्राट,
4: हम लोग हैं।
1: अंतिम बार, अंतिम बार सम्राट, आपको अपने बच्चे की सौगंध, हमें क्षमा कर दीजिए सम्राट, हमें क्षमा कर दीजिए।
2: मैं विवश हूँ चंद्रहास तुम्हारे छल कपट से, इसलिए अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। सुन लो सब लोग, एक बार पुनः मैं इन दोनों के अपराधों को दोहराता हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ममेरी बहन विमला को बुलाकर भुवन मोहिनी के प्राण लेने की चेष्टा की थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी अस्वस्थता के समय स्वयं उसके जीवन की रक्षा कर रहा था। कई बार क्षमादान दे चुकने के बाद भी साम्राज्ञी ने मेरे और मेरे आदेशों की हर संभव उपेक्षा की। महिला श्रमिकों को मेरा आदेश है कि प्राण हत्या के प्रयास के आरोप में चंद्रहासिनी और उसकी बहन विमला की कोठरियों को बंद कर दिया जाए। वो दोनों बहनें दीवारों के भीतर चुनवा दी जाएं आज ही।
1: नहीं।

0: चाहक किया तुमने, चंद्रहासिनी को मृत्यु दंड का परिणाम अनिष्टकारी होगा पुत्र, अनिष्टकारी। संभवतः महाराज आदित्य सेन अपनी एकमात्र संतान के जीवन विनाश की कहानी धैर्य पूर्वक न सुन सके और चंद्रहासिनी और विमला का निधन किसी सर्वनाश को न आमंत्रित कर बैठे पुत्र।
1: राजकीय आदेशों के प्रति किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए मां। गंभीरतम अपराधों का दंड भी गंभीर और भयानक होता है। चंद्रहासिनी राजकुमारी बनकर भी अपने जीवन में महानता को स्थान न दे सकी। भारत राष्ट्र की साम्राज्ञी ऐसे नीच षड्यंत्रों का आश्रय ले, इसका प्रभाव सारी जनता पर कितना भयानक पड़ता, कभी सोचा है आपने? मुझे दुनिया क्या कहती यदि मैंने चंद्रहासिनी को क्षमा कर दिया होता, तो संभवतः कल वो मुझसे ही प्रतिकार लेने को तत्पर हो जाती। निरंतर मेरी उपेक्षा करके बारंबार क्षमा और अभयदान का अनुचित लाभ उठाया है उसने। ऐसी अनैतिक घटनाओं का जनजीवन पर सर्वदा भयानक प्रभाव पड़ता, इसलिए जैसा अपराध साम्राज्ञी ने किया वैसा ही दंड उसे भोगना भी पड़ेगा।
0: मैं क्या करूं जिससे मेरी पुत्र वधु का जीवन बच जाए? चाहती तो ये हूं कि बंदी गृह का द्वार तोड़वा दूं, परंतु सम्राट ने वहां सैनिक पहरा बिठा दिया है। क्या होगा मेरे 5 वर्ष के पौत्र का, जो मात्र विहीन होकर अति दीन मलिन सा दीख पड़ने लगा है। अब मुझे ही उसे अपने संरक्षण में रखना होगा।

मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि अपने वृद्ध पति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं।

0: अब मैं जीना नहीं चाहती। ये सारा कलंक मुझ पर ही आरोपित किया जाएगा ना। दुनिया तो यही कहेगी कि सम्राट ने एक नर्तकी का पक्ष लेकर स्वयं अपनी साम्राज्य को मृत्यु दंड प्रदान किया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी। ये कलंक ढोने से उचित तो ये है कि अब मैं रुग्ण शैया से उठूं ही ना।
1: नहीं देवी भुवन मोहिनी, ऐसा मत सोचिए, अन्यथा सम्राट तो और भी दुखी हो जाएंगे। वो अपने निर्णय से अभी ही बहुत दुखी हैं। एक मास हो गए वो संपूर्ण कार्यों से जैसे संन्यास ले चुके हों, एकांतवास में ही हैं।
0: जिस राजकुमारी के सुख के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, अंत में उसी का अस्तित्व ना पाऊं तो मेरा समर्पण तो व्यर्थ ही हो गया।

0: अब सम्राट का क्या होगा? अरण्यक, जी चाहता है कि एक बार सम्राट को जाकर मैं स्वयं समझाने का प्रयत्न करूं।
1: कोई लाभ नहीं होगा देवी, सम्राट किसी से भी नहीं मिलना चाहते। इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं आपकी मनोभावनाओं को उन तक अवश्य पहुंचाऊंगा।
2: असक्त रणभिष्वंग पुत्र दार गृह दिशु, मैं स्त्री पुत्र और गृहादिक के निर्मम सामीप्य से अपनी अंतरात्मा को मुक्त कर चुका हूं। बस अरण्यक, भुवन मोहिनी की धुंधली स्मृति मात्र से मुक्त नहीं हो पाया। कैसी है वो?
1: पूरे प्रकरण से वो बहुत ही आहत है मित्र, वो आपसे मिलना चाहती है।
2: नहीं अरण्यक, जब मैंने निर्मम न्याय के चरणों में साम्राज्ञी का बलिदान कर दिया, तब भुवन मोहिनी के प्रति आसक्ति को भी छोड़ना होगा, क्योंकि भुवन मोहिनी के स्त्री सौंदर्य के उपभोग करने की लिप्सा ने ही तो इस बलिदान की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जिस पर चढ़कर चंद्रहासिनी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यदि विवाहिता पत्नी को पति के संपूर्ण प्रेम की आकांक्षा थी तो वो पाप नहीं था, मैं जानता हूं, किंतु संपूर्ण स्नेह दान न मिलने पर उसके हृदय में द्वेष और प्रतिहिंसा की भावना जागृत हुई और निरपराध भुवन मोहिनी का सर्वनाश करने के कुचक्र ने उसे मृत्युदंड दिलाया। इसमें मेरा क्या दोष? चंद्रहासिनी ने तो स्वयं ही मेरी पत्नी बनने का आग्रह किया था, ये जानते हुए कि मैं भुवन मोहिनी के प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर चुका था। भुवन मोहिनी उदारता पूर्वक उसका स्वागत करती रही और उसके मांगने पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके बाद भी चंद्रहासिनी को कृतज्ञ बनकर भुवन मोहिनी को विषपान कराने के षड्यंत्र में नहीं तल्लीन होना चाहिए था। इस निर्णय का मुझे कोई पश्चाताप नहीं, चंद्रहासिनी ने जैसा किया वैसा ही परिणाम पाया। अरण्यक, मैं भुवन मोहिनी से मिलना चाहता हूं, उसे बुला लाओ आज ही।
1: जो आज्ञा।

0: ये मैं क्या देख रही हूँ? प्रस्तर हृदय वाला भारत का सम्राट अपनी करुणा से स्वयं विगलित है। आपके नेत्रों में करुणा की ये अश्रुधारा क्यों?
1: मैं सम्राट होकर भी आज दीनहीन बन गया हूं भुवन। अब इस अभिशापित जीवन का अंत हो, बस यही कामना है। मैंने अपना सर्वनाश कर डाला। मैं यदि सम्राट न होता तो शायद इतनी क्रूरता मेरे जीवन में ना आती। आज मैंने अपने इकलौते पुत्र को मातृत्व के सुख से वंचित कर दिया, माता पिता को अपनी सेवकनी पुत्र वधु से वंचित कर दिया। मुझे क्या मिला? हत्या का पाप? आज चंद्रहासिनी मेरी अंतर्दृष्टि के अत से इति तक समाई हुई है। मानो नेत्रों में आंसू भरे दया की भीख मांग रही हो।

0: और मेरे सामने भीषण रक्त सागर उत्वेलित होता दिखाई पड़ता है।
1: रक्त सागर
0: महाराज आदित्य सेन की प्रतिच्छाया मानो भीषण प्रतिकार के लिए उद्विग्न है। वो अपने प्राणों से प्रिय एकमात्र संतान के सर्वनाश का प्रतिकार लेना चाहते। बड़े बड़े सामंतों की नंगी तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं और वो चंद्रहासनी के मृत्यु का पाप प्रक्षालन करने के लिए चंडी की जिह्वा बनकर मेरी सेना और स्वयं मेरे शरीर का रक्त दान मांग रही है। मेरी न्याय प्रियता का भयानक परिणाम प्रतिशोध की रक्त वैतरणी है भुवन मोहिनी, जिसमें मेरे सहित साम्राज्य की सेना को भी निमग्न होना होगा।
1: देव, क्या महाराज आदित्य सेन भारत सम्राट से युद्ध चाहते हैं?
0: हां भुवन मोहिनी, मुझे सूचना प्राप्त हो चुकी है कि वो बड़ी तत्परता के साथ भयानक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उनकी सेना की जितनी चिंता नहीं है, उससे अधिक भय है कि बारंबार

0: और पराजित हूण जाति हमारे आपसी वैमनस्य का लाभ उठाकर भारत भूमि पर अधिकार करने का प्रयास करेगी, जिसका संभव परिणाम राष्ट्र की स्वतंत्रता का अपहरण होगा और भारतीय राष्ट्र शताब्दियों सहस्त्राब्दियों तक पराजय और दासत्व के कलंक का टीका लगाकर विदेशी आक्रामक शक्तियों के चंगुल में फंस जाएगा।
1: सम्राट, क्या राजकुमारी को दंड देने के पूर्व इन संभव परिणामों की ओर आपने विचार नहीं किया था?
0: सब कुछ किया था, किंतु मैं नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्र की साम्राज्ञी इतना निंद और गर्हित कर्म करे, और विशेषकर उसके साथ जिसकी रक्षा का अभेद्य कवच बनकर मैं स्वयं खड़ा था।
1: पूज्य सम्राट, क्या ये युद्ध टाला नहीं जा सकता?
0: टाला जा सकता है।
1: कैसे?
0: भुवन मोहिनी के कटे हुए शीश को भेजकर।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 12वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर अमर वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने एक पोस्ट में कहा है कि महान सेनानियों ने आदिवासी समाज के शोषण के विरुद्ध अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्वभर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के भैरवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न स्तरों पर लगभग 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, महफिल में आ जाती है जान आपके आ जाने से। स्वागत बंदन अभिनंदन प्यारी सखियों का कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी सखी शालिनी सोनी, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसी है प्यारी सखियों? माना कि व्यस्त होंगी, पर आइए बैठ जाइए कुछ सुकून के पलों के साथ और भूल जाइए सारी मुश्किलें परेशानियां तकलीफें। आज की महिला सभा में हम खुलकर बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाएंगे। चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सेवा के शानदार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश ने अभूतपूर्व प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और कई योजनाओं की ऐतिहासिक पहल ने करोड़ों नागरिकों का जीवन बदल दिया है। सखियो, मोदी जी के मजबूत इरादों ने हर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। आज का आत्मनिर्भर भारत उनके अद्वितीय समर्पण और निर्णायक नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है। और सखियो, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ये दिन लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सरकारों को जवाबदेह बनाने में संसदों की भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2018 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत की गई थी। 30 जून की ये तारीख अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की स्थापना का भी प्रतीक है। सखियो, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की संसदों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी और आधुनिक चुनौतियों जैसे प्रौद्योगिकी और लैंगिक समानता के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सखियो हमें भी लोकतंत्र को समझना होगा, लोकतंत्र की जानकारी रखनी होगी। संसद क्या है, विधानसभा क्या है, सांसद या विधायक का क्या काम होता है, कानून कैसे बनते हैं, ये जानना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। साथ ही साथ सवाल पूछें, जवाबदेही तय करें, कानून का पालन करें। संसद कानून बनाती है, पालन करना हमारा धर्म होता है। बहस में हिस्सा तो लें मगर मर्यादा बनाए रखें। राजनीति से दूर नहीं रहें बल्कि जिम्मेदारी से भागीदारी करें। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। सखियो, जानो, वोट करो, सवाल पूछो, कानून मानो, भागीदारी करो, यही 5 शब्द नागरिकता का धर्म भी है। संसद मंदिर है लोकतंत्र का। सखियो, उसकी मर्यादा, उसकी ताकत बनाए रखना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इतनी सारी जानकारी के बाद सखियो, अब बारी है मनोरंजन की। लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है एक प्यारा सा गीत।

एक बार पुनः स्वागत है प्यारी सखियों का कार्यक्रम में। सखियों, मोदी जी ने कहा है ना, नारी शक्ति ही देश की शक्ति है और इसी सोच को बढ़ावा दे रही है पीएम मुद्रा योजना। जी हाँ, पीएम मुद्रा योजना। आज हम बात कर रहे हैं पीएम मुद्रा योजना की और इस योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मतलब छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने वाली योजना। आपके मन में क्या है सखियों? सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, या अचार पापड़ का बिजनेस करना चाहती हैं? टिफिन सर्विसेज, डेयरी, बकरी पालन या ऑनलाइन रिसेलिंग, जो भी सपना आपका हो सखियों, वो पूरा करेगी मुद्रा योजना। और सबसे बड़ी बात तो ये है बहनों, वो भी बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी के। सिर्फ आपका जज्बा और एक छोटा सा बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास। लोन भी आपकी जरूरत के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा गया है सखियों। शिशु लोन यानी कि आप 50,000 तक का लोन ले सकती हैं जब आप बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, जैसे सिलाई मशीन खरीदनी है। किशोर लोन जिसमें आप 50,000 से लेके 5,000 तक का लोन ले सकती हैं, जैसे आपको अपनी मशीनों को बढ़ाना है, 2 से 3 नई मशीनें लाना है। तरुण लोन में आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं जब आप अपना कोई नया शोरूम खोलना चाहती हैं। ब्याज भी बहुत कम है सखियों और चुकाने के लिए 5 साल तक का समय मिल जाता है। घर बैठे पैसे तो नहीं आएंगे बहनों, सरकार आपका हाथ जरूर पकड़ेगी। चूल्हा चौका संभालने वाली नारी जब कलम पकड़ लेती है और हिसाब संभालने लगती है ना सखियो, तो घर भी चलता है और देश भी बनता है। तो सखी, देर किस बात की, अपने नजदीकी बैंक, जनधन केंद्र या CSC सेंटर जाइए। आधार कार्ड, फोटोकॉपी और बिजनेस का आइडिया लेकर जाइए, फॉर्म भरिए और करा लीजिए अपना लोन। याद रखिए सखियो, सपना आपका, हौसला आपका और साथ सरकार का। तो फिर देर किस बात की, उठो बढ़ो और बन जाओ आत्मनिर्भर भारत की असली शिल्पकार। और सचमुच सखियो, जब सबका साथ मिलता है ना, निश्चित ही कुछ नया करने का जज्बा आ ही जाता है। आज के क्रम मेरी उड़ान में हमारे साथ हैं सखी तृप्ति कुमायू, जो कि हैं इंटीरियर डिजाइनर। तो आइए इनसे बात करते हैं क्रम मेरी उड़ान में।

0: तृप्ति जी, आपको हमारा नमस्कार, और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बारे में।
1: जी नमस्कार मैम। बेसिकली मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं इस इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोफेशन को पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के घरों का इंटीरियर किया है, डेकोरेशन

0: वह हेल्प की है, और उनके हमने जो घर के जो हमारे फर्नीचर होते हैं उनको बनाने में हमने हेल्प की है। तो ये काम मैं पिछले 8 से 10 सालों से कर रही हूँ, और हमारा एक है इंस्टीट्यूट, वो मैं रन कर रही हूँ जो कि डिजाइन सॉल्यूशन के नाम से है, जहाँ पर हम बच्चों को इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेस सिखाते हैं, ताकि बच्चे अपने हुनर को देखें और उसको लेके वो अपने करियर में आगे बढ़े। मैं अभी इस प्रोफेशन में काम कर रही हूँ।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चे इस और आगे बढ़े। अभी हम देख ही रहे हैं कि त्योहार का समय चल रहा है और सभी अपने घर को रिन्यू कराने में, रिनोवेशन में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत व्यस्त होंगी। और मैं बस ये जानना चाहूंगी और इसके बाद कि आपने अपने जो इस काम की शुरुआत है वो कैसे की, आपको कैसे रुझान आया इस दिशा की ओर?
0: देखिए मैम, पहले तो मेरा जो सब्जेक्ट था, मतलब स्कूल टाइम में मेरा था PCM, साइंस बैकग्राउंड से थी मैं, मेरा इंटीरियर से कोई रिलेशन नहीं था। मतलब धीरे धीरे मैंने स्टडी करना स्टार्ट करा तो मेरा इंटरेस्ट बहुत आया, कुछ अच्छा लगने लगा कि नहीं यार इंटीरियर में भी ये चीजें होती हैं, इसको इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। मतलब मेरे घर में भी जैसे हम लोग फेस्टिव में जब घर रिनोवेट करते थे तो मैं मेरे फादर की और मदर की बहुत हेल्प करती थी, तो पूरा रिनोवेशन मतलब 50% घर का काम मैं करती थी वहां पर, इंटीरियर ही करना है। फिर मैंने सोचा कि हम इंटीरियर में कोर्स करें, मैं मार्केट गई, मुझे पता लगा कि इंटीरियर में कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत पड़ती है अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं आगे। तो मैंने फिर इसमें जो स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है डिप्लोमा, वो मैंने 3 साल का जो कोर्स होता है वो मैंने लिया, और मैंने उसमें बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं ये इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ। तो मैंने इसीलिए ये सब्जेक्ट चूज करा कि लाइक मुझे आगे इसमें काम भी करना था, और मैं चाह रही हूँ कि काफी सारे मतलब पूरे इंडिया में या हमारा जो MP इंदौर के जो बच्चे वो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े और हम उनको अच्छे डिजाइनर बनाए, इंडस्ट्री में जाके अच्छे से क्लाइंट्स का काम करे, और वो अपने एक स्किल उनके पास रहेगी तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में। तो हमारा मेन मोटो यही है, और इसीलिए मैंने इंटीरियर किया है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था।
1: तो बहुत मेहनत का काम है, और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी जो पढ़ाई है, जो आपकी लाइन है, उससे हटके आपने अपने रुचि के हिसाब से अपना करियर चुना। और वाकई जहां हमारे इंटरेस्ट होते हैं, हमारी रुचि होती है, वो काम बहुत ही बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। जी, और एक बात और जानना चाहूंगी कि कितना लगभग समय दे पाती हैं आप घर और काम के बीच में, कैसे सामंजस्य कर पाती हैं?
0: मतलब पहले मुझे शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था काम अपना इंटीरियर का, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि जैसे घर भी मैनेज करना होता है, देन मेरी साथ में पढ़ाई भी चल रही थी, मेरा PhD चल रहा था और मैंने साथ में इंटीरियर करा, कॉलेज भी जाती थी, फिर मैं इंटीरियर की क्लासेस भी लेती थी, फिर मेरा प्रैक्टिस सेशन होता था, मतलब हमारी 5 घंटे की क्लास होती थी इंटीरियर की, वो भी हम करते थे, फिर उसके बाद 3 घंटे घर पे प्रैक्टिस करते थे, फिर घर में और भी काम रहते हैं वो हम करते थे। तो मतलब कि बहुत हेक्टिक हो जाता था, रात को 3 बजे 4 बजे हम सोते थे, लाइक कभी कभी तो पूरी पूरी रात हम नहीं सो पाते थे, लाइक पूरी रात आपके काम करा है हमने
1: जी।
0: तो बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे चीजें जब ऐसा स्टेबल हुई तो अब मैनेज हो जाता है।
1: तो हम अपनी सखियों से ये कह सकते हैं कि इसके लिए आपको बहुत अलग से कोई समय ऐसा नहीं है कि आपको ये देना पड़ेगा, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर गृहस्थी के साथ भी इस करियर ऑप्शन को चुन सकती हैं।
0: हाँ, और मैंने बताया ना जैसे आजकल काफी सारी महिलाएं ऐसी रहती हैं कि जो ज्यादा एजुकेट नहीं हो पाती किसी रीजन से, नई स्टडी नहीं कर पा रहे, तो जैसे आपका अगर 10वीं पास है तो भी ये प्रोफेशन में आप एंटर हो सकते हैं, और 2 से 3 साल का जो कोर्स होता है वो आप करके आप मतलब अपने आप को एज अ डिजाइनर आप रिप्रेजेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छा,
0: और आगे मैम इसमें स्कोप भी बहुत अच्छा है।
1: आप हमें, हमारी सखियों को कुछ ऐसे कोर्स बताएं जो वो कर सकती हूँ।
0: मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे के इस माध्यम से जुड़ने को मिला, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य मैम यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे प्रेरित करें कि वो कुछ आगे अपना स्किल इम्प्रूव करके आगे काम करे, वो अपने पैरों पे खड़े हो, राइट। तो हमारा उद्देश्य यही है, और मैं सखियों से यही कहना चाहूंगी कि देखिए इसके लिए आपको कोई ज्यादा एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, आपने अगर 10वीं किया है तो भी आप इंटीरियर में या फैशन में आ सकते हैं। इसके कोर्सेज वैसे तो एक साल के भी होते हैं, दो साल के भी होते हैं,

0: 3 साल के भी होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अब जैसे कोई महिला है जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हैं और जो टाइम नहीं दे पाती ज्यादा, तो वो 1 साल का भी कोर्स कर सकती है।
1: जी।
0: और सबसे अच्छी बात मैम ये मतलब इसमें आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे की क्लासेस देना है, मतलब जैसे आप अपना घर भी मैनेज कर सकते हैं और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने भी जॉब के साथ में ही किया है तो अच्छे से मैनेज हो जाता है।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारी सखियां घर बैठे ही इस करियर विकल्प को चुन सकती हैं और एक छोटी सी शुरुआत घर से ही कर सकती हैं। तृप्ति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी, वाकई प्रेरणा मिली होगी इस बातचीत सुन के। तृप्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया।

सकियो, अभी हम सुन रहे थे क्रम मेरी उड़ान तृप्ति कुमायूं के साथ, और अब बात कुछ सजने सवरने की हो जाए सकियो। देखिए ना सकियो, बारिश में अक्सर हमारा मेकअप जल्दी ही चिपचिपा और बेकार दिखने लगता है, तो इससे कैसे बचा जाए आइए जानते हैं आज के क्रम रूपलावण्य में। आज हम बात करेंगे कि बारिश में या मानसून में भी हम अपने मेकअप को कैसे एकदम फ्रेश रख सकते हैं। सकियो, मेकअप से पहले चेहरे पर बर्फ लगाएं, जिससे फेस पर मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहेगा। अब बारी है प्राइमर की, तो आप मॉइस्चराइज प्राइमर चुने और इससे मेकअप उमस में भी फ्रेश लगेगा। लाइट वेट फाउंडेशन चुने, चिपचिपे और हैवी फाउंडेशन पूरी तरह से अवॉइड करें। अब बेस सेट करने के लिए आप उसके ऊपर पाउडर चुन सकते हैं, लेकिन याद रखें सखियो कि ये भी ह्यूमिडिटी प्रूफ होना चाहिए। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप में इस मौसम में बार बार पसीना भी आता है, इसलिए वाटर प्रूफ आई मेकअप चुने। ब्राइट कलर्स के लिपस्टिक प्रयोग करें जो लॉन्ग लास्टिंग और स्मच प्रूफ हो। साथ ही साथ मानसून में चिक टिंट का उपयोग करें, ये लाइट वेट ब्राइट होनी चाहिए जो लंबे समय तक टिके रहें। आखिर में मेकअप के ऊपर फिक्सर जरूर स्प्रे करें, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं करना है। बस इतने छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे सखियो, तो आपका मेकअप लंबे समय तक फ्रेश लगेगा और आप दिखेंगे खूबसूरत।

बारिश का दौर चालू है सखियो और हम सभी तरह तरह के मौसमी जायकों का मजा ले रहे हैं। और हाँ, एक काम हम महिलाएं इस मौसम में जरूर करने लगती हैं, वो होता है अचार बनाने का। जी हाँ, अचार बनाने का। इसलिए आज के फूड जोन में हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट अचार मसाले की रेसिपी की, जिसे आप घर पर ही तैयार कर सकती हैं। आज हम आपको लगभग 200 ग्राम मसाला बनाने की विधि बताने वाले हैं। तो नोट करिए, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए सरसों 4 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, सौंफ 3 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 4 से 5 बड़े चम्मच, स्वाद अनुसार काला नमक और 1 बड़ा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच आप इसमें हींग ले सकते हैं। सबसे पहले सखियों, सरसों, मेथी, जीरा, सौंफ और अजवाइन को हल्का सा भून लें। मसाले जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसके बाद मसालों को दरदरा पीस लें, बहुत बारीक पाउडर भी ना बनाएं। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक और हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लें। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाला। अब इस मसाले को एयरटाइट जार में भरकर आप 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं सखियो। आप जब भी चाहें आम, नींबू, गाजर, मिर्च, किसी का भी झटपट से अचार बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस इन्हें बारीक काट लीजिए और मिला दीजिए इस मसाले में, और ऊपर से डाल दीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म सरसों का तेल। लीजिए, तैयार हो गया आपका इंस्टेंट अचार मसाले के साथ झटपट अचार भी। चटपटे अचार के बाद अब बारी है बहनों एक प्यारे से गीत की।

और सखियों, अब बात हो जाए कुछ काम की। जी हाँ, काम की बातों में आज बात करेंगे हम बचत की। सखियों, बचत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ पैसे की तस्वीर आ जाती है, पर सच बात ये नहीं है बचत सिर्फ पैसे की ही हो। बचत एक ऐसी सोच है, एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। सखियों, बचत कई तरह की हो सकती है और हर तरह की बचत हमें किसी न

किसी रूप में अमीर बनाती ही है। जैसे पैसों की बात करें तो कहते हैं ना सिक्कों की बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम रोज 20 से 50 रुपए जैसी छोटी छोटी बचत भी करते हैं ना सिक्कों, तो ये हमारी इमरजेंसी में काम आती है। पहले बचत फिर खर्च, ये मंत्र अगर हम अपना लेते हैं ना सिक्कों, तो बचत तो होना तय है। इसके लिए सखियों आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या SIP में पैसे रख सकती हैं। अब बात जरूरी बचत यानी समय की बचत की। समय की बचत कहते हैं ना जीवन की बचत। दुनिया का सबसे कीमती धन पैसा नहीं बल्कि समय है। जो गया वो वापस नहीं आता। घंटों फोन स्क्रॉल करना, बेकार की गपशप, बिना प्लान के काम करना, ये सारा समय की बर्बादी है। इसके लिए एक डायरी बनाए, फिक्स टाइम टेबल बनाए, पहले काम फिर आराम, इस मंत्र को अपनाएं, फिर देखिए सारे काम आपके खुद ब खुद समय पर हो जाएंगे। इसी तरह संसाधन की बचत। जी हाँ, धरती पर पानी, बिजली, पेड़, ये सब मुफ्त में नहीं है। नल खुला छोड़ देना, लाइट जली छोड़ देना, कागज बर्बाद करना, ये आदतें हमें नहीं बल्कि पूरे देश को गरीब बनाती हैं। इसलिए कोशिश करें और छोटी छोटी बचत करें जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह अगर गुस्से में हम कभी कभी किसी को दो शब्द ज्यादा बोल देते हैं ना, तो बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें, इससे क्या होगा, हमारे रिश्तों की बचत। जी हाँ, किसी से अगर हम माफी मांग लेते हैं या किसी को हम माफ कर देते हैं, तो इससे हमारे रिश्ते बच जाते हैं। एक और बचत है जो है असली दौलत, वो है सेहत की बचत। आज अगर हम 30 मिनट वॉक कर लेते हैं तो कल डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा तला भुना कम खा लेते हैं ना सखियों, तो कल दवाइयों के खर्च से बच जाएंगे। इसलिए सेहत बची तो सब बचा। याद रखिए सखियों, पैसा बचे तो सुख बचे, समय बचे तो तरक्की बचे, रिश्ते बचे तो चैन बचे, सेहत बचे तो सब बचे। तो शुरुआत आज से ही होगी ना सखियों, लेकिन समय तो नहीं बच रहा है अब आपसे बात करने के लिए। तो सखियों, अब चलने का समय हो रहा है। आपको बता दें, आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनते हैं पूर्णिमा नतानी द्वारा गाए गीत और भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा नातानी द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। चलिए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज में फिल्म दम लगा के हईशा से।

अनु मलिक का संगीत वरुण ग्रोवर के लिखे बोल, कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दम लगा के हर्षा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मनमर्जियां से, आवाज़ है हर्षदीप कौर और जाजम शर्मा की।

अमित त्रिवेदी का संगीत शैली के लिखे बोल हर्षदीप कौर और जाज़िम शर्मा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मरमर्जिया से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद कल वे अनंतपुरम जाएंगी, जहां आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री गौतम टिटवाल और सांसद रोड बलनागर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री दूध तलैया में गंगा पूजन, गौ पूजन और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का आज समापन हो रहा है, जिसमें अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोहों में सांसद गण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डेलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीडी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार 1,000 रूपये से लेकर 25,000 रूपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब शिष्यवृत्ति की दरें हर साल मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होंगी और जुलाई में छात्रावास आश्रम शुरू होने से पहले लागू होंगी। नई दरों के अनुसार छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बालक विद्यार्थियों को 1,720 रूपये प्रतिमाह और बालिका विद्यार्थियों को 1,710 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाएगी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में रोजगार मेले का आयोजन 1 जुलाई को शासकीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में होगा। कटनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल ईवीएम वेयरहाउस स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सेफ क्लिक अभियान के तहत आगरमालवा जिले के कल 6वें दिन जिला पुलिस द्वारा बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटर्स में व्यापक साइबर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। शिवपुरी जिले में सहकारिता और जागरूकता तथा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कल जिला सहकारी संघ कार्यालय में आयोजित हुआ और खंडवा वन मंडल की गुंडी रेंज के ग्राम आमा कुचरी में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 105 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं और कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में

0: जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हुल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
5: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हुल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर, और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का, जिसमें आपके भेजे हुए पत्रों को हम शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं।

हैं आपकी पसंद के मीठे मीठे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये है फिल्म नागिन से। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है नेपाल पैलेस सागर से, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

हेमंत कुमार का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नागिन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है विजय पथ और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से हमें लिखा है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

विजयपथ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुन रहे थे आप, जिसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने और जिसके बोल लिखे थे जमीर कासमी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रजनीगंधा से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं MM राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका पूरा परिवार। और इसके अलावा एक और पत्र हमारे पास आया है जिला नांदेड़ से, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंतले और आरती जोंतले का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

सलिल चौधरी का संगीत, योगेश के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रजनीगंधा से। और ये है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। अगला गीत आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म परिचय से, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसके अलावा पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री ने भी हमें फरमाइशी पत्र लिखकर इस गीत की फरमाइश की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप श्रोताओं के लिए यह अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परिचय से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में फिल्म निगाहें से, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है बजरंगी रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास जिला सागर से। लक्ष्मण रखवार, विनीता रखवार, वैशाली, वैष्णवी, अनरत रखवार, हल्ले, लल्लू और साथी ऋषि रखवार और बंडा की ओर से। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है, वो है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की ओर से। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता की ओर से। तो लीजिए अगला गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निगाहें से। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इसी तरह अपने पत्रों का सिलसिला जारी रखिए और हमें भेजते रहें अपने पत्र अपनी फरमाइशों के साथ। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज विजयनगरम पहुंचकर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित भैंसवा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिले के 352 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल बंगूभाई पटेल ने की। श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बीड़ी और खदान श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 में छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है और प्रदेश में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के 6वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी आज शाम 5:33 पर। शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आनंदीलाल भवेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जहां हम आपको सुनवाएंगे पूर्णिमा नापानी द्वारा गाए भजन।

हम अपने श्रोताओं को बता दें कि गठिया रोग और अर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को एक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस के अवसर पर विदेशी शासन के अन्याय के विरूद्व दृढ़ता से संघर्ष करने वाले सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थलसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में आयोजित जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। और 2026 फीफा विश्व कप के पहले दौर के 32 मैचों के बाद तीन और टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। मोरक्को ब्राजील और पैराग्वे ने क्रमशः नीदरलैंड, जापान, जर्मनी पर जीत हासिल करके राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 6 बजने वाले हैं। आप सुनिए कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर

0: निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया। ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं। नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विवेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,

0: झोंको सेलो
1: कोमल भाव बहाना,
0: कोमल भाव बहाना
1: दूध तथा पानी से सीखो,
0: दूध तथा पानी से सीखो
1: मिलना और मिलाना,
0: मिलना और मिलाना
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो
1: जगना और जगाना,
0: जगना और जगाना
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: लता और पेड़ों से सीखो
1: सबको गले लगाना,
0: सबको गले लगाना
1: दीपक से सीखो जितना,
0: दीपक से सीखो जितना
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: हो सके अंधेरा हरना
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की
1: सच्ची सेवा करना,
0: सच्ची सेवा करना
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे
1: जलधारा से सीखो आगे
0: जलधारा से सीखो आगे
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: जीवन पथ में बढ़ना
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: और धुएं से सीखो हरदम
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना।
2: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई, खोदेंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
6: क्या
7: क्या
6: क्या?
3: पूजा सब तक कोयल गाए, सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
0: यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।

0: Aisha! Psh!
1: Dam laga ke ku!
0: Aisha! Psh! Psh!
2: Go! Go! Go! Shabash! Shabash! सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम। चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। अरे पपी है, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काँ, काँ, काँ।
0: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
2: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
0: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
2: का का का।
3: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: हना पिए तुझा पानी।
1: काँ, काँ, काँ, अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: गाँ, गाँ, गाँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँ, गाँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: आ, आ, आ, इसकी, आ, यही। इसकी।

0: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी। जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काम काम, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काम
2: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
3: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
3: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौए, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
3: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: मर गया?
1: क्या पता?
0: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।

0: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
0: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम की 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच लंदन में खेले जाने वाले महिला टी20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री of the first semi-final T20 cricket match to be played between Australia and West Indies of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.
4: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. I'm Sakshi Mandwal, and what may we say? The last 28 days have finally brought us to the first semi-final game that is all set to happen between West Indies and Australia of the ongoing ICC Women's T20 World Cup, all set to be held at the Oval today. In the next 1 minute, we shall be also witnessing the toss, which is all set to happen. But over here, I'm joined by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit. नमस्कार।
5: गुड इवनिंग साक्षी। और यहाँ पर पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हैं आशा रावत, नमस्कार, फॉर्मर इंडिया बैटर।
6: नमस्कार।
5: राकेश राव हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। गुड इवनिंग राकेश।
7: वेरी गुड इवनिंग।
5: और साथ ही बीसीसीआई कोच हमारे साथ हैं रविंदर सिंह जी। नमस्ते। आशा, टॉस होने वाला है 30 सेकंड में, क्या लगता है हेली मैथ्यूज और सोफी मेलोनियो जब टॉस अगर कोई जीतता है तो क्या चॉइस करेंगी?
6: वो बैटिंग के लिए पहले जाएंगे, क्योंकि ये जो पिच है ना, और एक जो प्रेशर होता है, वो भी सेमीफाइनल का प्रेशर, तो कोई भी वो प्रेशर को, वो नेचुरल होता ही है, सबको आता है, तो जो भी जाएगा पहले बैटिंग के लिए ही जाएगा।
5: राकेश,
7: कम्प्लीटली सेम चीज़ है, क्योंकि थोड़ा बहुत हरा जरूर है लेकिन इट्स फुल ऑफ रन्स।
5: रविंदर जी,
8: आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं क्योंकि जो सेकंड बैटिंग में 10 बार जो लिया उन्होंने, मुझे भी लगता है शायद दूसरा चेज करेंगे।
5: चलिए सीधा केनिंगटन ओवल के मैदान पे चलते हैं लंदन, जहां पर टॉस हो रहा है और दोनों कप्तान ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू और वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज बिल्कुल तैयार है।
9: Finals here at the Oval, and we have two of the most skillful and entertaining teams in this ICC Women's T20 World Cup. It's the West Indies up against Australia. I've got the captains next to me. G.S. Lakshmi is match referee overseeing the coin toss. Sophie Molyneux has the coin. Hayley Matthews will call.
10: Tails.
11: Tails is the call. It's heads.
9: Fall on the way of Australia. So, first of all, congratulations on your 50th T20 International. You've won the coin toss. What are you going to do and why?
10: We're going to have a bowl. Looks like a good pitch to come out here and hopefully put a bit of pressure on early.
9: Did you sort of toss and turn a little bit on the bowling? Is it about 7 to 8 mils out there? Is that what sort of attracted you to it?
10: Yeah, I think so. It does look a little bit bit furrier than yesterday. It's just grown overnight. But yeah, I think so. And just be able to get out here and have a run around first.
9: Big win against India. Any changes to the team at all?
10: No, I've got the same team.
9: Same blueprint then? You come into a big game like that, last of the round games. Do you sort of go, right, same approach, or do you say clean sheet up against the West Indies?
10: I feel like West Indies are, you know, an incredible team, and we have to bring our best. And a part of that is being able to play our style of play, no matter who we are coming up against. Yep.
9: You know this one quite well. Captains and players at the Melbourne Renegades, does that make it easier?
10: Probably not. We were actually just talking about the Renegades before, but you know, she's always good to play against.
9: There we go. We'll find out in a second. Here we go. Thank you. All the best today.
10: Thanks, Jonesy.
9: Hayley, come on in. Batting first. You happy with that?
12: Yeah, I think it's a pretty good wicket here at the Oval. Not going to change too much. We probably would have had a ball first, but at the same time, we feel like we certainly got nothing to lose and can go out there and play a really fearless brand of cricket.
9: It's been a rollercoaster ride for you guys. You had the first couple of wins and then a little bit shaky at the end. what do you bring to this team to say, okay, these are the things that we really need to, you know, knuckle down to, on, double down on today?
12: Yeah, I think we need to keep believing, one, but at the same time, we just need some of our big players to step up. Myself included, I feel like that's probably what we've missed this tournament, but it still brings out a lot of positives, the fact that we have gotten to this stage without a lot of our big players really making big performances.
9: Looks like a kind of ground, too, that you need a big total on.
12: Yeah, 100%. Definitely a higher par score here, and probably, if not the best, one of the best wickets in England. So we're definitely going to have to get the score up in this first innings. Yep.
9: Big West Indian support here today as well, so you'll have them on your side. All the best today.
12: Thank you.
9: Australia have won the toss today, and they'll be bowling first.
4: So the news from Oval coming right there. Sophie Molyneux, the captain of Australian team, winning the toss and choosing to bowl first, as predicted also by prediction king Ravinder Singh ji. Ravi, aapke paas aati hu. आंकड़े में दिखा रहे थे कि चेस फ्रेंडली विकेट है, और आपको लगता है हाई प्रेशर गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये सही निर्णय लिया है आज बॉलिंग करने के लिए?
8: देखिए, मेरे हिसाब से तो फील्डिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पिछला मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेलते हुए, उन्होंने बहुत बड़ा चेस किया उन्होंने, और अच्छा, बहुत बढ़िया मैच, और वही मुझे लगता है मोमेंटम बना के चलना चाहते हैं। देखिए, ये 20 ओवर्स का जो मैच होता है ना, ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। अब अगर इसमें वेस्ट इंडीज पर प्रेशर रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कितना टारगेट चाहिए, कितना टारगेट सेट करें, और ऑस्ट्रेलिया को पता है ऑस्ट्रेलिया 6 बार का चैंपियन है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको कम से कम 180-190 रन का टारगेट सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है। और यही प्रेशर में होता क्या है कि जब आप ज्यादा प्रेशर तेज खेलने के चक्कर में आप विकेट्स गवाते हैं, तो ये मेन गेम यही है। अगर वो वेस्ट इंडीज जीतते, मुझे लगता है शायद वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि पहले कितना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो यही मुझे लग रहा था प्रेशर गेम है, तो जो भी होगा पहले चेस करना चाहेगा, देखते हैं कि पहले उसमें वो कितना रन बना सकते हैं।
5: जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, और अगर अंतिम 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है, वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी। बेथ मूनी विकेटकीपर, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिसी पेरी, जिन्होंने 5 मुकाबले में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 183 रन बनाए हैं, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेरहम, अनबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू कप्तान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन। आशा, कैसे देखती है ऑस्ट्रेलियन साइड को?
6: ऑस्ट्रेलियन साइड अगर हम देखें तो बहुत बैलेंस्ड टीम है, चाहे उसमें बैटिंग की साइड देख लीजिए, चाहे आप बॉलिंग देख लीजिए, चाहे स्पिनर देख लीजिए, चाहे मीडियम पेसर देख लीजिए। पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूं तो उसमें आप केवल एक दो प्लेयरों में ही टीम निर्भर करेगी। अगर जो कैप्टन है हैरी मैथ्यूज़, उसके ऊपर, डी डॉटिन के ऊपर, तो कुछ 2-3 प्लेयर हैं कि उनको आज करना ही पड़ेगा, और जो कैप्टन है उनको तो बहुत, मतलब पूरी आज उनमें ही पूरा दामोदर है, अगर वो कुछ टीम को अगर सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाना चाहती हैं तो।
4: राइट, वेलकम टू राकेश। सिंस आशा जस्ट नाउ मेंशन दैट वेस्ट इंडीज इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन 3 ऑफ द मेन प्लेयर्स, 1 कैप्टन हेली मैथ्यूज, 2nd वी हैव डियांड्रा डॉटन, एंड 3rd ऑफ कोर्स वी हैव स्टेफनी टेलर। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट इवन बीन एबल टू परफॉर्म थ्रू आउट द सीजन प्रीटी वेल, बट दे आर स्टिल द बिग नेम्स। हाउ मच ऑफ द लोड विल बी रेस्टिंग ऑन देयर शोल्डर्स टुडे टू शाइन एंड प्रूव नाइन prove something for the team, definitely.
7: So it becomes tough when you are out there for a knockout game and you don't have runs behind you, number one. So, and they have only 2 individuals who have crossed 100.

0: So there are only two guys who have scored over you know, like 100 runs. One of them happens to cross 150 as well. Now, when you go in for a knockout game and out there you have to go and put the runs on the board, and form is not in your favor. So this is a worrying factor for the West Indians. They have a reasonably good attack, but that doesn't mean that they can take the Australians lightly, because Australians in an ICC event, they are ruthless. They come very hard at you. Very difficult to beat them here. The only time you can beat them is probably in a league game and they have an off day. And history has shown that Australians don't take an off day when it comes to knockout games. And that's why they have such a fantastic record. Six times they have already had two hat-tricks of wins in the same tournament, I mean in the same event. So I still see that this is Australia's game all the way. And as it has already been said here, that one of the factors that probably influenced the Aussie skipper was the fact that the way they beat India. They chased down a pretty challenging score and they did that. So it seems to be quite... they've been influenced by that decision.
1: जी बिल्कुल. और यदि आप ही फर्स्ट बॉल 20 इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञों से, तो आप हमें फोन कीजिए. 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, नंबर है 2342108 5. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने पांचों मुकाबले जीते हैं, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस. वहीं वेस्ट इंडीज ने आशा पहले तीन मुकाबले तो जीते थे न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के विरुद्ध, लेकिन अंतिम दो मुकाबले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वो हारे हैं. तो दो लॉसेस के बाद यहाँ आ रहे हैं, कैसे हेली मैथ्यूज अपनी टीम को मोटिवेट करेंगी?
2: मुझे जहाँ तक लगता है उनको, अगर मैं वैसे बोलूँ तो अपनी, उनको खोने के लिए उनको कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया टीम है 6 बार की चैम्पियन टीम है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने एक बार इसको ले रखा है चैम्पियनशिप को. तो उनके लिए बस ये है कि ये अगर मैं वही मैंने जो पहले बोला है कि मैथ्यूज जो कैप्टन है उसके हाथ में बहुत कुछ है. अगर वो आज टीम को लेके चली गए, मतलब उन्होंने अच्छा खेला बैटिंग बॉलिंग दोनों में, तो थ्रू आउट वो आगे फाइनल में पहुंच जाएंगे.
3: ओके. Yes, Amit, I think we have a caller with us on the line. Namaskar, good evening. Kya naam hai aapka? Swagat hai aapka hamare karyakram mein. Bataye kya puchna chahte hai?
4: Namaskar.
3: Hamare sare panelists aapko namaskar kar rahe hain. Bataye kya puchna chahte hain aaj aap call karne ke liye?
1: जी शुक्रिया. कितना स्कोर बन सकता है रविंदर जी यहाँ पर?
4: देखिए, स्कोर की आजकल कोई लिमिट नहीं है. जिस हिसाब से क्रिकेट का जिस हिसाब से उसका नया फॉर्मेट बना है, 20 ओवर में आपको पता कुछ भी. लेकिन ये जो अब वेस्टइंडीज के लिए टारगेट है, वेस्टइंडीज को कम से कम नहीं तो 180 रन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनको कुछ प्रेशर में डालना है. तो 150-170 रन पे आपने देख अभी इंडिया के अगेंस्ट देखा उन्होंने कैसे खेला, तो 180 रन का टारगेट होगा. लेकिन देखिए, सेमीफाइनल ही होते हैं, आप पहले सारे मैच जीतते चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये प्रेशर गेम है, आपको पता एक गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर.
1: राकेश जी, दोनों ही सेमीफाइनल कैनिंगटन ओवल में होने हैं और फिर फाइनल जो है 5 तारीख को लॉर्ड्स लंदन में.
4: एक सेकंड में आप एक ऐड कर रहा था कि ये दो लास्ट के जो दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया हारी है.
1: जी.
4: और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक सिर्फ वेस्ट इंडीज ही है जिन्होंने फाइनल में हराया था, तो ये बात भी उनका कहीं ना कहीं माइंड में होगी, दोनों सेमीफाइनल्स वो हारे.
1: लेकिन आज जो आपको पिच दिख रही है यहाँ पर, कितना एक स्कोर बन सकता है वेस्ट इंडीज का?
0: देखिए, मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियन अटैक है, मैं इसको वेस्ट इंडीज की जो क्षमता है वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अटैक के अगेंस्ट क्या क्षमता है. ऑन पेपर आप देखेंगे तो वो टीम रन बना सकती है, लेकिन आज का दिन ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस का अटैक कितना, अगर वो लोग निशाने पर हैं तो मैं ये 150-160 के ऊपर नहीं देखता हूँ. स्कोर होना चाहिए 180. अगर आप एक वेस्ट इंडियन फैन हैं तो आप 180 मिनिमम चाहेंगे. लेकिन विमेंस क्रिकेट इज़ अनप्रडिक्टेबल, इसलिए मैं IPL के यार्ड स्टिक से या मेंस क्रिकेट के यार्ड स्टिक से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ. विमेंस क्रिकेट आई हैव सीन लॉन्ग इनफ, इसमें कुछ भी हो सकता है, 100 के अंदर टीम ऑल आउट हो जाती है.
1: okay.
0: तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ. लेकिन हाँ, लेट्स बी फेयर, प्रैग्मैटिक होके अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 150-160.
3: राइट. और एक श्रोता हमारे साथ हमें थे.
1: हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए. जी, क्या पूछना चाहेंगे? आज ऑस्ट्रेलिया कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही हैं. फिर जीतेगा कौन? आपको वेस्ट इंडीज टीम अच्छी नहीं लगती?

0: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए।
1: जी काफी अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई और देखने में ये भी सुनने में अच्छा लगा कि हमारे श्रोता को भी इतनी जानकारी थी आज की मैच और टूर्नामेंट के बारे में।
0: तो आशा आपको लगता है वुमेन्स क्रिकेट धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है अब?
2: हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब हम खेलते थे तो कुछ किसी को पता भी नहीं था कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है या एशिया कप हो रहा है, कुछ भी वर्ल्ड कप हो रहा है। बट अब जो भी कोई भी सीरीज हो रही है वो भी सब देख रहे हैं, इवन सबको नाम सबका पता है, वो बहुत अच्छा लगता है।
0: मैं बता दूं 2008 में एशिया कप भारत जीते थे और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच 97 रन आशा रावत।
2: थैंक यू
1: वाओ नॉट बैड। आपके पास आती हूँ रवि क्विकली, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन वेस्ट इंडीज की अगर बात करें और सीजन में देखें टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स को काफी मदद मिली है इन सारे विकेट्स के ऊपर, और खासतौर से अगर आज बात करें तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की बोलिंग की स्ट्रेंथ रही वो उनकी स्पिन है, 71.4 ओवर्स उन्होंने सिर्फ स्पिन के पड़वाए हैं, इकलौती ऐसी टीम, और सबसे ज्यादा विकेट्स भी जो वेस्ट इंडीज ने ली है सीजन के अंदर वो स्पिनर्स की उन्होंने लिए 22 विकेट्स। क्या आपको लगता है आज वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ कमाल कर पाएंगे?
3: देखिए पॉजिटिव रहना चाहिए और खासकर 20 ओवर्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने अभी देखा आयरलैंड इंडिया को कैसे हरा रहा है, 20 ओवर्स में दो प्लेयर सही होते हैं, दो प्लेयर अगर 50-60 रन बना देते हैं तो मैच वो 150 रन तक टारगेट अपने आप पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक डे की बात होती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, फौची फॉर्म में चल रही है, नो डाउट फेवरेट्स हैं, उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मिराकल्स होते भी आए हैं।
0: जी थोड़ा बोलिंग बताइए ऑस्ट्रेलिया की, हमें सोफी मोलिनी तो पता है उन्होंने 8 विकेट चटकाई हैं, पर जैसे किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, निकोला कैरी, किस तरह की वैरायटी है इनके पास?
4: बहुत वैरायटी है। देखिए अगर आपको पेस चाहिए, स्विंग बोलिंग है आपके पास, स्पिन ऑप्शन है आपके पास। देखिए वुमेन्स क्रिकेट में आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, अगर जिस दिन एक बॉलर चल गया, बैटिंग में हम कहते हैं दो बोलर आपको एक बहुत है,
0: पर अलाना किंग को अंतिम 11 में ना रखना, टाइलर मैग्रा
4: लॉन्गर, बिकॉज आपके पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, आप उसको छेड़ेंगे नहीं। जिस टीम ने इंडिया को हराया और आप सडनली आप किसी को विदाउट रीजन अगर आप किसी को ड्रॉप करते तो सोचिए मैं यहीं पे हम दोनों अभी कुछ और बात कर रहे होते कि क्या जरूरत थी। देखिए आप रिपेयर तब करते हैं जब डैमेज हुआ हो, जब डैमेज नहीं हुआ हो तो आप अपने घर को रिपेयर करने नहीं जाते। तो ये उनका घर अच्छा है, सेट है सब कुछ, तो आप उसमें क्यों चेंजेस लाएंगे? पॉपुलर डिमांड पे तो आप यू नो चेंजेस नहीं करते।
1: पॉइंट वेल मेड। आशा मैं आपके पास आती हूँ, आपसे पूछूंगी कि ऑस्ट्रेलिया आज ऑलरेडी हैवी फेवरेट्स के तौर पर उतर रही है फर्स्ट सेमीफाइनल के अंदर, अगर वेस्ट इंडीज उनको हराना चाहता है आज तो किस तरह की टैक्टिकल स्ट्रैटेजी आज वेस्ट इंडीज को अपनानी चाहिए, ना सिर्फ अपनी बैटिंग में बल्कि बाद में जब वो अपने स्कोर को डिफेंड करने के लिए उतरेंगे भी?
2: सबसे पहले तो उनको मतलब ऑब्वियसली उनको कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मतलब अगर सेमीफाइनल का प्रेशर लेंगे तो मे बी नहीं होगा, बट वो जैसे मैच खेलते आ रहे हैं, और मैं एक बात बता दूं, वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है जो जादू कर सकती है वो, जैसे अगर सब कह रहे हैं कि स्टैट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जा रहा है पल्ला, उनकी तरफ भारी है, बट अगर उन्होंने कुछ वो कर भी सकती हैं, वो अभी सब ऑस्ट्रेलिया कर रही है, मैच ऐसे पड़ाव में आ जाएगा कि लगेगा ये वेस्ट इंडीज
1: की तरफ जा रहा है, हिटिंग की ओर हिंट कर रही है।
2: हाँ, राइट, वही मैं वही कहना चाह रही हूँ कि वो मैं वही कह रही हूँ, मेन जो दो तीन प्लेयर हैं उनकी टीम में जो शेमन कैपेबल है, डी डॉटिन है और मेन जो कैप्टन है, तो इनमें बहुत दामोदार आज मतलब इनको करना पड़ेगा, अगर ये करेंगी तो आप देखिए मैच में कुछ भी हो सकता है।
0: तो अगर राकेश हम इस वेन्यू की बात करें, थोड़ा आकाशवाणी के श्रोताओं को बताइए कैनिंगटन ओवल के बारे में, और यहाँ जो दर्शक आ जाएंगे वहां पर मैच देखने, वो इंग्लैंड तो सेकंड सेमीफाइनल में है, आज किसको सपोर्ट कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं करेंगे,
5: ऑस्ट्रेलिया को नहीं। सीधी सी बात है, देखिए आप अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी होम टीम खेल रही है, होम टीम का फाइनल मुकाबला स्ट्रॉन्गर टीम से क्यों? Weaker of the two teams,
0: so they would support West Indies. So advantage है फिर ये West Indies के पास.
5: West Indies के पास crowd support चाहे जो भी हो, उनको एक चीज करनी है, अगर आज वो really जीतना है तो मेरे ख्याल से उनका जो mindset होगा, उनका mindset ये हो सकता है कि आपको Australia के against बहुत attackingly खेलना पड़ेगा, आप defensive mode पे नहीं जा सकते हैं, उन्होंने इंडिया का मैच देखा है।
0: Okay.
5: इंडिया का defensive mindset ने उस दिन इंडिया को मैच हरवा दिया।
0: आपको लगता है ऋचा घोष को पहले खेलने के लिए चाहिए था इंडिया मैच में?
5: अब वो तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है, ऋचा घोष ने जब वो ऊपर आके खेली हैं पहले दूसरे मैच में, अगर आपको याद है, शी चेंज्ड द थिंग, आई मीन पाकिस्तान
1: अगेंस्ट पाकिस्तान
5: जो वो खेली हैं, कमाल खेली हैं, लेकिन उसके बाद हमने वो रूप उनका देखा नहीं, तो वो तो एक दिन की बात है कि वो होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ

0: वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, उनको पहली बॉल से एक तो अटैक करना है, कैचेस पकड़ने, विमेंस क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो जो प्रैक्टिस में जितना पकड़ते हैं उतना वो फील्ड में नहीं पकड़ता।
1: ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया में खिलाफ कैचेस बहुत छोड़े हैं।
0: वही मैं कह रहा हूँ, मैं विमेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो पकड़ लिया, जैसे उस दिन पाकिस्तान की अगर आप फील्डिंग देखते, कैचिंग सुपर्ब थी उनकी, कुछ नहीं छोड़ा उस दिन उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया। सो विमेंस क्रिकेट इज वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया करेगी, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री से हम अभी भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और जो प्रेजेंट 11 लोग जो खेल रहे हैं वो एक उस मेंटल स्पेस में हैं कि वो तैयार हैं, इंडिया को हरा के आ रहे हैं और एक उस टीम से खेल रहे हैं जो अपने पिछले दो मैच हारी हुई है।
2: राइट, एंड उस इंडिया को, जहां पर हम बता दें आपने श्रोताओं को भी कि उस मुकाबले के अंदर ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन बोलर्स आउट देयर हु वर एबल टू एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट द ऑस्ट्रेलियंस टू नॉट वेरी फैमिलियर स्पेस ऑफ गोइंग ऑल आउट इन द पावर प्ले। इस हेड स्पेस की जब हम बात करते हैं, हमें बताया जा रहा हमारे साथ एक श्रोता जुड़े, मैं सवाल को अभी आगे ले जाऊंगी, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते। नमस्कार, गुड इवनिंग। हरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। हमारी पूरी आकाशवाणी की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप हमारे इतने लॉयल श्रोता हैं और आप हमारी उस बात के लिए सराहना कर रहे हैं, शुक्रिया। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जी, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है। Well, the West Indian team needs to be mindful and careful of the Australian team. Ravi, आपके पास आती हूँ। राकेश उस समय एक पॉइंट रख रहे थे, which was a good point, कि West Indies को अगर आज जीतना है तो अटैक मोड पे खेलना पड़ेगा। जब हम अटैक मोड की यहाँ पर बात करते हैं, well, 20 ओवर गेम है, मैं आपका नजरिया या पर्सपेक्टिव चाहूंगी, क्योंकि अटैक मोड पे खेलने में कई बार होता है कि विकेट्स गिरते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आप पार्टनरशिप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो ऑल आउट, मारते रहना है, मारते मारते भलाई आपके विकेट गिर जाए। कौन सी रणनीति को आप सपोर्ट करते हैं जब हम बात करते हैं अटैकिंग क्रिकेट के एंगल से?
3: देखिए, ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप पहली बॉल से मारने चलते जाएं, 20 ओवर तक मारते चले जाएं, ये क्रिकेट कभी नहीं होती। बट पावर प्ले इंडिया का अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद आप ये देखिए, जब 170 रन बनाए, आज हमें लग रहा है कि वो रन कम रहे, आपको लेकिन बता कि 9 ओवर में 100 रन बनाए हम दोनों जो ऑस्ट्रेलियंस ने जो मैच जितवाया है, 9 ओवर में 100 रन, ये हर रोज नहीं बनते। 10 रन की एवरेज से ऊपर चेस कर रहे थे वो लोग, 10 रन की एवरेज तो कहीं पे भी चेस करना मुश्किल होता है, और खासकर वुमेन्स क्रिकेट में। डिपेंड करता है आपकी बॉलिंग कैसी है, आप में जो वीकनेस थी आपकी बॉलिंग में थी, आपके बॉलर सेट नहीं थे। अगर बॉलिंग ठीक ठाक करेंगे तो 170 रन कम नहीं होते हैं चेस करने के लिए। पहले उनके 4-5 विकेट कैसे गिरे थे, और खासकर दोनों जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, इस वजह से मैच जीत गए। बाकी ये है कि आपको 6 ओवर तक आपको डेफिनेट होता है कि आप 40-50 रन का टारगेट रखिए, विकेट्स लूज नहीं करिए, उसके बाद अगले 6-7 ओवर में फिर आप 60 रन का टारगेट, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर आप पहली बॉल 2-3 विकेट निकल गई तो आपको जो 180 रन का टारगेट वो 100 रन का टारगेट।
1: और राकेश, जैसे हमने देखा इंडिया मैच में जिमीमा खेल रही थी लेकिन वो रिटायर्ड आउट हुई ताकि रिचा आए, क्या आपको लगता है आज वेस्ट इंडीज, जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव खेलने से नहीं चलेगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट है, क्या हम देख सकते हैं कि भले एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है अगर मान लीजिए वो थोड़ा भी धीमा खेल रहा है तो कप्तान कहेगा कि आप आ जाइए और दूसरे व्यक्ति को भेज दे?
0: देखिए, वो डिपेंड करता है उस वक्त टीम के जो थिंक टैंक है वो क्या सोच रही है। ये आपके पास एक ऑप्शन है, अब आप उसको एक्सरसाइज करें ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूँ अटैकिंग दिस थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके बल्ला घुमाना है।
1: ओके,
0: मेरा मतलब यह है कि आपको सिंक, आपको डॉट बॉल्स नहीं छोड़नी है, डॉट बॉल तो क्राइम है। आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, एक ही बल्लेबाज को अटैक करने का मौका ना दें आप, उसको बॉलर को प्लान करने ना दें आप चेंज करते रहिए। वो होता है कि आप उनको सेटल नहीं होने दे रहे। ऑस्ट्रेलिया को अनसेटल्ड रखेंगे आप शुरू से, यू हैव टू कीप देम यू नो इन अ सॉर्ट ऑफ यू लाइक नॉट्स में आपको बांध के रखना पड़ेगा उनको कि ये हो क्या रहा है।
1: आशा, कैसे क्रिकेट बदला है? अब राकेश आपको एक डॉट बॉल खेलने से भी मना कर रहे हैं।
0: एक नहीं, मैंने कहा डॉट बॉल्स कम से कम।
4: ये T20 आ गया ना, तब से तो डॉट बॉल मतलब जिसने डॉट बॉल खेली वो क्राइम है।
1: नहीं, पर करेक्ट, पेड़
2: स्ट्राइक
1: तो
2: रेट, डॉट बॉल बहुत हैवी फोकस में आ जाते हैं, स्ट्राइक रेट भी खास तौर से। ट्रू, इट कम्स इनटू प्ले,
1: बट सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अच्छा है, एक डॉट बॉल पे पेड़ लगता है।
2: गुड पॉइंट अमित, वेल मेड। ओके, इस बात को जारी रखते हैं आगे आशा, बिकॉज अच्छी बात होती है। डॉट बॉल्स की बात हो रही है, जिस तरह के एरा में हम T20 देखते हैं वहां पे एक तरफ राकेश का पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट बॉल से हिट करते हैं, वी हैव प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट बॉल से हिटिंग की स्ट्रैटेजी रखते हैं। मैं मेल क्रिकेट की बात कर रही हूँ, फीमेल में भी अगर बात करें तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं। दूसरी तरफ, हाँ दूसरी तरफ रवि कहते हैं कि फर्स्ट बॉल की हिटिंग अटैक विकेट अटैक मोड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं।

0: आप किस तरह की रणनीति को कहती हैं ज्यादा सस्टेनेबल एंड ऑफकोर्स ज्यादा सुलझी हुई रणनीति है कि आप इस तरह के अप्रोच से T20 को अप्रोच करें?
1: सबसे पहले तो सिचुएशन डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं, क्या डिफेंड कर रहे हैं, जो भी वो डिपेंड तो

0: ये हमारे साथ हमारी सीनियर प्लेयर रही है, रेलवे से खेली जब मैं, तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे की प्लेयर है।
1: थोड़ा उनके बारे में बताइए।
0: ये लक्ष्मी, ये बहुत अच्छी स्विंगर बॉल थी, बहुत अच्छा बॉल करते थे। मतलब इनके साथ मैंने ज्यादा नहीं खेला है, पर जब मैंने रेलवे ज्वाइन करा था तब उनके साथ मैंने एक इंटर रेलवे खेला है अपने नॉर्दर्न से और ये साउथ सेंट्रल रेलवे में से।
1: और राकेश, पूरा एक इकोसिस्टम ग्रो करता है जब वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ता है, खिलाड़ी के साथ साथ चाहे मैच ऑफिशियल्स हों, सारे अवसर मिलते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए अभी मुझे वही याद आ रहा था जब हमने होस्ट किया था वर्ल्ड कप वुमेन्स का, लेट 1997 में जिस हफ्ता टूर्नामेंट शुरू होना था उस टाइम होता था वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन WCA, उनके पास होटल बुक करने को या उनको एडवांस देने के पैसे नहीं थे। सो दे वेंट टू हीरो एंड उन्होंने कहा कि अंकल हमको कुछ तो पैसे दे दीजिए। तो पवन मुंजाल उनके जो डैड हुआ करते थे, उन्होंने कहा बेटा इनको कुछ पैसे दे दो। तो जो सेक्रेटरी और वो थे उनको पता नहीं लगा क्या दिया जाए। एक 50 लाख का चेक दे दिया गया था, अकाउंट नहीं किया गया था, उनका बेटा पहले आप होटल बुक करो। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, WPL आ गया, वुमेन्स क्रिकेट के वुमेन क्रिकेटर्स को लोग पहचान रहे हैं, और ये जो चेंजेस मैंने देखे हैं, मैंने एक ज़माने से मैंने देखा है, शांता रंगास्वामी के टाइम पे जो हम सुना करते थे डायना एडिल जी, उसके बाद एक न्यू जनरेशन के आए, 90s में अगर आप देखें, late 1990s में विनोदी देसाई कैप्टन, इंडियन टीम वॉज डूइंग वेल, एयर इंडिया की टीम अच्छी हुआ करती थी, ये सब। अब आप देखिए, आप लोकल टीम्स या स्टेट टीम भूल गए, अब आप WPL की टीम्स को याद रखें।
1: सो
2: पूरा जैसे आपने कहा इकोसिस्टम चेंज हुआ है, वो तब से हुआ है जब से BCCI आई, और जब से जैसा आया उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इक्वल पे, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज मूव। तो उससे जो इंडियन क्रिकेटर्स को जो फायदा हुआ है उसका फायदा हमें अब मिल रहा है।
3: राइट, एंड जस्ट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड, वी टॉकिंग ऑफ इकोसिस्टम ओवर हियर, द होल स्पिरिट ऑफ द गेम, दैट द विजुअल्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेडियम राइट नाउ, वेल सरप्राइजिंगली एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज, हमारे सारे लिसनर्स के लिए हम आपको बताएं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट नहीं आया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट इंडियन सपोर्ट भी आज देखने को मिल रहा है। और रवि, क्विकली आपसे पूछूंगी, एक बहुत खूबसूरत टीम है जब आपके सामने एक ऐसी दिग्गज टीम हो जो हैवी फेवरेट्स हो, लेकिन सपोर्ट के नाम पे आज इतना ज्यादा वेस्ट इंडियन सपोर्ट और क्राउड टर्न आउट हुआ है टू सपोर्ट देयर फेवरेट्स आल्सो।
4: डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना भी चाहिए, अपनी टीम को सब सपोर्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें फेवरेट से खेल रहे हैं, कोई भी खेल रहे हैं। आयरलैंड की टीम ने आपने देखा कैसे सब उनका आए और कैसे इंडियंस को कैसे हरा के गए हैं। होम टीम है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और अब बाकी आप थोड़े दिन में देखते हैं कि मैच का क्या रिजल्ट
1: आता है। जी आशा, जब ये फ्लैग्स ले आउट करते हैं गूज़बम्स आते हैं जब राष्ट्रगान होता है तो?
0: बहुत ज्यादा आते हैं।
1: क्या फीलिंग्स?
0: बहुत ज्यादा, मतलब ये बोल नहीं सकते, बयान नहीं होती ये चीजें, ये बस आपका जिस जज्बे से आप खेलते हैं ना इंडिया के लिए, बस वही जज्बा रहता है।
1: आशा को जब इंडिया कैप मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ, तब क्या यादें हैं?
0: वो यादें क्या है ना कि उस समय मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा ऐसा चाव नहीं था कि मतलब क्या होता है, मतलब खेला, रिप्रेजेंट करा, उसके बाद धीरे धीरे लगा कि यार किस मुकाम में है, हमने इंडिया खेला है। उस समय ऐसा लगता था अच्छा खेला, ठीक है, गुड
1: जी
0: बस।
1: चलिए अंतिम सवाल आप सबसे, राकेश, आज कितने रन बन सकते हैं वेस्ट इंडीज के और कौन जीत रहा है आज, क्या कुछ हो सकता है?
2: मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि 150-160 मैक्सिमम, 8 रन एज एन एवरेज में लेके चल रहा हूं, एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन।
1: ऑस्ट्रेलिया विल विन। रवि जी,
4: लगता तो ऐसी है कि 140-150 बनाएंगे, अगर 180 तक बनाते हैं तो एक मैच अच्छा हो सकता है।
1: आशा जी?
0: मेरा भी यही है, 160-165 तो बननी चाहिए, अगर अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा हमें।
1: और बीच वाला जो मैच है राकेश, उसे हम कहते हैं फ्री हिट 20। आपको लगता है नो बॉल होंगे, कुछ फ्री हिट्स भी मिलेंगे?
2: बिल्कुल मिलेंगे।
1: जब फ्री हिट होती है तो बल्लेबाज क्या सोचता है, क्योंकि आप तो राइट हैंडेड टॉप बैटर है,
0: तो वो जो सब सोचते हैं, ऑडियंस सोचती है ना, वही बैट्समैन भी सोचते हैं।
1: लेकिन उसमें स्टंप हो सकते हैं क्या फ्री हिट पे?
0: उसमें रन आउट होता है केवल,
1: स्टंप नहीं हो सकता, सिर्फ रन आउट हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। पर आप क्या सोचते हैं कि छक्का ही मारें कोई भी बॉल आए?
0: हाँ, मतलब उस बॉल में तो सब सिक्स मारने का ही सोचते हैं ना।
1: चलिए जब फ्री हिट 20 आएगा तो उसमें देखेंगे कितनी नो बॉल हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव आपका और रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।
5: फर्स्ट बॉल 20।
1: For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action.
6: Good evening, and we have reached the business end of this World Cup, the semi-finals. The much-awaited action begins at the Oval. The former champions, Australia and West Indies, who had the 2016 win defeating Australia, but it's been Australia who'd been champions for a very

0: matches and given away 40 runs. So for her, it's going to be a moment of judgment here, because she has to make sure, she has to create an impression on the West Indies batting side. We've got Campbell, Taylor, Dottin, Henry, Claxton, Glasgow to follow, and then Aline Fletcher. A very good batting side on the papers, let's say, but it's who blinks first. Here's Hamilton bowling wide outside the off stump, and a good carry to the keeper. Nice to see that the ball, after pitching upright on the seam, carries on to the keeper, and that's a good sign. This pitch, though, might just get a bit variable, but from a far distance, if I look at the pitch, it has a greenish tinge, though it's not a green top, but then the greenish tinge would have prompted any captain to first come and bowl here. As Campbell rushes in, has got a very long run up, left arm over the wicket, bowls, and that ball was trifle short, letting the batter, the left-hander, play, waiting for that one in the crease, onto the onside to square leg, and picks up a single. That score takes the score up to 6 for the loss of no wicket. Good sedate start, but if I had mentioned the name of the players, once again, it's going to be Wall, Mooney, Lynchfield, Perry, Gardner, Wareham, Sutherland, Milner, Carey, Garth and Hamilton, the unchanged side for the Australian side, whereas West Indies has made one change to bring the off-spinner. As here is Hamilton over the wicket bowling, slightly short and off the back foot, going back into the crease, just about taps it down into square leg, mid-wicket rather, and before the fielder comes and picks it up, the batters have crossed over for a single, moving the score up to 7. It's important that you make use of the first 6 overs when there are two fielders outside the 30-yard circle, and that's where you can get the score to be propelled. At least get about 45 to 50 odd runs, then you're better off. You get a very good platform, and the bowlers must make sure they don't pitch in the slot, otherwise you got people like Matthews who can hammer. And this is the outside the leg stump delivery, should be a wide. Definitely Mooney had to really go to her right and pick up the ball. She's a good keeper behind the stumps, very very flexible and very agile, and she saves the blushes, because that is wide outside the leg stump, and the score remains with 1 more to 8 for the loss of no wicket. So one extra delivery, one extra wide. Here is Hamilton bowling this one, which is just about on the off stump. The loosely held bat played onto the offside to the backward of point, and the score is 8 for the loss of 1 wicket after 1 over.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Over to Sanjay. Sanjay, wonderful first over.
5: बिल्कुल, अगर आप West Indies के लिहाज से देखें तो एक अच्छा over. और जहां तक शुरुआत का सवाल, तो कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं मिली गेंदों को. On the stumps फेंका, किसी तरह का बहुत ज्यादा movement देखने को नहीं मिला शुरुआती over में. हालांकि हवा तेज है वहां पर, किम गार्थ इस समय गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है, दूसरा over है. और मैथ्यूज, जो कि सबसे सॉलिड बैटर हैं टीम की, ऑफ स्टंप से टप्पा खाकर थोड़ा सा बाहर की ओर निकली थी. पॉइंट की दिशा में उस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, कोई रन नहीं. अच्छी बात यह कि कोई बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे वेस्ट इंडीज के ये दोनों बैटर्स. उन्हें पता है कि उन पर कितना दारोमदार है टीम का, और अगर आप इन दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 115 और 116 है. वृंदा राठी भारत की हैं और इस मुकाबले में अंपायरिंग कर रही हैं सेमीफाइनल में, और किम कॉटन है उनके साथ, जो कि न्यूजीलैंड की 8 रन बिना किसी नुकसान के. और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा टप्पा खा करके बाहर निकल रही थी. मैथ्यूज ने बल्ला चलाया जरूर था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, किस्मत अच्छी. और एक परेशानी का दृश्य देखने को मिला कुछ समय पहले, जब डियंड्रा डॉटन को तकरीबन 2-3 लोग उठा करके लेकर के जा रहे थे. समझ से परे है कि डॉटन को हुआ क्या, लेकिन एक बहुत अच्छी बैटर है टीम की, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो वापस लौटेंगी. शॉर्ट थर्ड स्लिप, डीप बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार दोनों स्लिप्स के बीच में से गेंद निकलती हुई चली गई 4 रनों के लिए. थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर.
6: ये लगा आभा का चौका.
0: Well, that was a freaky shot on the offside, not intended, but squeezes through.

0: through the third man region, through the slip cordon, and that was a lucky boundary for the side, almost to the outstretched hands of the fielder Sanjay. That was close.
1: बिल्कुल नजदीक मामला हो सकता था और काफी तेज छलांग भी लगाई थी उस गेंद को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, लेकिन संभव नहीं. लेकिन पावर प्ले है और पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं. लगातार गेंदों को आप स्टंप पर टप्पा डाल रही हैं और थोड़ा सा बाहर की ओर निकालने की कोशिश. एक हल्का जो स्विंग का मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है गार्थ की गेंदों पर. एक स्लिप बिल्कुल विकेट से सटे हुए और आप इसे शॉर्ट थर्ड मैन कहें, थोड़ा सा काफी पीछे स्लिप के और वहीं से उन दोनों के बीच से वो कैच निकलता हुआ. गार्थ ने अब तक 5 रन दिए हैं. वेस्ट इंडीज ने 13 रन बना लिया. अच्छी शुरुआत. वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और खासतौर पर मैथ्यूज जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमती हैं तो फिर किसी के लिए भी मुश्किल है.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 352 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और उज्जैन में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न। 63 विद्यार्थियों को मिले पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के अवसर पर सिधो, कान्हू, चंद, भैरव और फुलोझानो सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और बलिदान का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष देशवासियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 जुलाई को भारत आ रही है। ताकाइची 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को समावेशी समाज निर्माण का साधन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि शिक्षित युवाओं को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण पर भी बल दिया।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजगढ़ में जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में 352 करोड़ की लागत के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने भैंसवा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि 19 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में प्रदेश में 3.5 लाख से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार किया गया है।
2: जलगंगा अभियान 10 संभाग में 55 जिलों में सभी विधानसभा, सभी तहसील, सभी पंचायत में एक साथ हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इस प्रकार की योजनाओं से जुड़े हैं, जिसके माध्यम से ये हमारा पूरा कार्यक्रम आज समापन पे इस अभियान का एक चरण हो रहा है। अगला चरण भी हम चालू करेंगे।
0: इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
2: सिंहस्थ में जब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं।

0: और 40 करोड़ लोगों के लिए हम अगर प्रबंधन कर रहे हैं और वो प्रबंधन भी मास्टर प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, मास्टर प्लान भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय जो बनाया गया है उनका प्रबंधन भी वैसे करने वाले हैं। विश्व के लिए सबसे बड़ा मेला अगर कोई है, ये देश का और देश से बढ़कर विदेश से लेकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है।
1: जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल पूरा होने पर एक आधिकारिक समारोह में उन्होंने सेना की कमान जनरल सेठ को सौंपी। जनरल सेठ इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और 28 साल बाद आर्म्ड कोर से सेना प्रमुख बने हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित समत्व भवन में लोकमाता अहिल्याबाई राष्ट्रपुनरुत्थान की संकल्पना पुस्तक का विमोचन किया। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित इस शोध संकलन में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, प्रशासनिक दक्षता और समाजोत्थान से जुड़े 19 अध्याय शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। समारोह में विश्वविद्यालय के 63 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पदक प्रदान किए गए। साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को विश्वविद्यालय की मानद डीलिट उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बावड़िया कला से आशिमा मॉल तक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्री ने पिपलानी खजूरी रोड में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्रदेश ने एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों के लिए GI टैग हासिल किया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में GI टैग मिले हैं, जिसमें गुना का धनिया, बैतूल का गजरिया आम, खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर का मटर और सिंघाड़ा, बुरहानपुर का केला और छतरपुर का पान शामिल है। इसके अलावा 7 और फसलों के लिए GI टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल में नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला में DPR तैयार करते समय प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि PM सूर्यघर योजना के तहत अब तक 1,43,150 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनके बैंक खातों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी जमा कराई गई है। श्री तोमर ने बताया कि 1 किलोवाट संयंत्र पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ट्वीशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास गिरबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। CBI ने अदालत से जब्त लैपटॉप का पासवर्ड दिलाने और दोनों आरोपितों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगी है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं गिरबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशा विरोधी अभियान के तहत गोविंदपुरा क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलनी को टीम में शामिल किया गया है, जबकि प्रीमा राउत को बाहर रखा गया है। आपको समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर के मूसाखेड़े स्थित कबीर मंदिर में श्री सतगुरु कबीर साहब का 629वां प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम में चौका आरती और भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक महेंद्र हड्डिया सहित बड़ी संख्या में कोली कोरी समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन लालचंद सोमेश ने

किया। खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह आज किशोर कुमार सभागार में आयोजित किया गया। वहीं शिवपुर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आज ग्राम पंचायत मठेपुरा स्थित बावड़ी पर आयोजित हुआ। झाबुआ में ग्राम पंचायत जुलवानिया बड़ा जनपद थांदला में 14वें वित्त आयोग के 2 निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। देवास में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला स्तरीय मास्टर वॉलेंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदसौर में जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर ने 83 आवेदकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। वहीं नीमच कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में बीते 4 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

चौपाल के सबे सुनैया भैया बहनीन का उर्मिला बहनी के राम राम। भैया बहनी ये समय दाऊ बाबा बदरियात है और देखी का है कि बदरियात तही पर गर्मी बहुत पड़ा थी, उमस वाली गर्मी आ लागा था कि कितना पानी बरसी, कूलर पंखा एसी सब काम नहीं कराता ही। भैया बहनी गर्मी के आगे भैया बहनी हरे हमारे जौन सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हो थे, सब ग्रहण के मुख्य काम यह आए उन सूर्य के परिक्रमा करा थी और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अंतरिक्ष के संतुलन का बनाए रखा थी। सब ग्रह के आपन अलग अलग विशेषता और भूमिका होती हैं। जैसे देखी बुध सूर्य के सबसे पास होते हैं, सबसे पास होने के कारण सूर्य के परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी करा थी। दूसरा शुक्र यह सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह आए और रात के समय आकाश में सबसे चमकदार दिखात है। तीसर पृथ्वी ये एक ठे मात्र ऐसन ग्रह आए जहाँ केवल जीवन मौजूद है, मैं एकर काम जल जीवन और वायुमंडल का बनाए राखा थे। चौथ मंगल एकर लाल ग्रह खलाए कहा थे, एकर काम अंतरिक्ष के वैज्ञानिकन का भूवैज्ञानिक विकास और जीवन के संभावना का समझे में मदद करत है और रोजगार मुखी पहल मदद करत है। भैया बहनी देखी का है कि जो उन ई ग्रह हैं, अब बृहस्पति है यह पांचवा ग्रह आए, सौर मंडल के सबसे बड़ा और भारी ग्रह आए। एकर मुख्य काम अपनी विशाल गुरुत्वाकर्षण के आकर्षित करब, जो गुरुत्वाकर्षण होते ओखा आकर्षित करब आए। भैया बहनी जौन उल्का पिंड का अपने कैद खींचत है, जौने पृथ्वी जैसन घेर ग्रहण में मात्रा काम होत है। शनि या गैस के एक ठे बड़ा का गोला है, एका चारों कैत बर्फ और

चट्टान से छला छल्ला बने रहा थी। यह अंतरिक्ष में संतुलन बनाने के काम करत है। यूरेनस एका अरुण कहा थी, यह बहुत ज़्यादा ठंड ग्रह आए और बर्फ के तूफान और वायुमंडली गैस के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। नेपच्यून यह सूर्य यह ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है हवे। एकर काम सौर मंडल के बाहरी किनारन के वातावरण और तापमान का नियंत्रित करब है। पर कुछ क्षुद्र ग्रह होते जिनका शुद्ध ग्रह घलाय कहा थे, शुद्ध ग्रह घलाय कहा थे। ई हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रहण के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरा में पाए जाते। ई सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए चट्टानी और धातुवन के अवशेष होते जौन सूर्य के परिक्रमा करा थे। एके अलावा कुछ और क्षुद्र ग्रह सौर मंडल में अन्य स्थानन में घलाए विचारण करा थे। भैया बहनी यहीं से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घलाए मनावा हर वर्ष 30 जून का मनावा जात है। एक हर मनामे के मुख्य उद्देश्य यह आए कि क्षुद्र ग्रहण के प्रभाव से होने वाले खतरन से पृथ्वी के सुरक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ा हुआ है। 30 जून 1908 का रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का की विनाशकारी घटना के याद दिलावा थी जौन साइबेरिया में एक क्षुद्र ग्रह विस्फोट के कारण भय रही थी। एके कारण 883 वर्ग मीटर क्षेत्र में 80 मिलियन वृक्ष नष्ट हो गए रही हैं। दूरस्थल स्थान होने के कारण विस्फोट में न्यूनतम जान हानि भय पर एक लहर सैकड़न मील दूर तक महसूस कीन गए रही। भैया बहनी यहीं से क्षुद्र ग्रह के विनाशकारी प्रभाव से बचने के खातिर सबका जागरूक करब बहुत जरूरी है भाई। आ यहीं से हर वर्ष 30 जून का ये क्षुद्र ग्रह दिवस मनावा जात है। भैया बहनी कौनो दिवस जयंती मनाए जाते तो ओखा मनाए भर से नहीं हो जौन ने कारण से वो मनाए जाते ओका अपने जीवन में हमें बच्चे का उतारे का चाहिए और इनसे आपन बचाव करे का चाहिए। जब इनसे बचाव करब तब ही घर परिवार में खुशहाली आई।

0: अबे राजकुमार तिवारी और साथिन से यह गाई अंजुरी सुनें।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ाएं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ 8700001424। वो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क

0: रहो भविष्य के लिए तैयार एमपीएस संजय के साथ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: भैया बहिनी, जैसन हमारे पंचे के जीवन में दुर्घटनन के कारण शरीर के अंगन की हड्डी टूट जाती हैं, वैसे समस्या जानवरों में आ जाती हैं। इनके बचाव कैसन इनसे कीन जाए और यह बाबत जनबही दे के खातिर आज हमारे कार्यक्रम में विपिन भाई अपने साथ डॉक्टर अनुराधा नेमा जी का लेके आए गई। तो हमारे डॉक्टर बहनी अपना पंचे का जनबही दे हैं कि जानवरन के अगर हड्डी टूट जाती हैं तो उनखर कौन मेर से ये समस्या से उन्हें दूर कीन जाए, तले इनसे या जनबही।
4: किसान जनवायु राम राम। आपके पशुओं के साथ यदि थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाए या कुछ उनका नुकसान हो जाए तो उनके साथ साथ हमारे दूध उत्पादन में, साथ में हमारे जो काम के लिए हमने उनको रखा हुआ है उसमें भी नुकसान हमें सहना पड़ता है। इसलिए आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा लेके आए हुए हैं, पशुओं में हड्डी टूटने की समस्या। और इस महत्वपूर्ण विषय पे आज हम जानकारी लेने वाले हैं डॉक्टर अनुराधा नेमा जी से, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा से। अनुराधा जी, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद विपिन जी।
4: अनुराधा जी, हड्डी टूटना जो है ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है, कई बार ऐसा होता है, कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, तो पशुओं में हड्डी टूटने के कारण क्या क्या हो सकते हैं?
5: पशुओं में जो हड्डी टूटने के कारण है यदि हम देखें तो उनका अधिकतर पशुओं के गिरने के कारण या उन्हें कभी चोट लगे या दुर्घटना होने से हड्डी उनकी टूट सकती है। अधिकतर यह देखा गया है कि पशुशाला की जो फर्श है

0: उसमें फिसलन, साफ सफाई ना होने के कारण फिसलन होने के कारण जो है पशु गिरते हैं और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा यदि हम और कारणों पर जाएं तो पशुओं में कुछ हड्डियां जो होती हैं अपने ऊपरी स्थिति और बनावट के कारण अति संवेदी होती हैं, जैसे कि टीबिया हिमरस यानी पांव की नीचे वाली हड्डियां जो होती हैं। इसके अतिरिक्त उम्र दराज के जो पशु हैं वो भी फ्रैक्चर के लिए संवेदी होते हैं। इसके अलावा जो हड्डी से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कि आमतौर पर जिन्हें हम रिकेट्स या ऑस्टो मलेशिया बोलते हैं, उसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। तो वो उससे कैल्शियम की कमी के कारण भी जो फ्रैक्चर है उसके लिए पशु अति संवेदी होते हैं। इसके अलावा जो सड़क दुर्घटना है, पशु जो है यदि सड़क पर आवारा ऐसे घूमते हैं तो उनमें भी आए दिन जो हम देखते हैं सड़क दुर्घटना और पशुओं की आपस में लड़ाई से भी लगी चोट से हड्डी टूटती है।
1: जी जी, अभी आपने बताया कि कई बार फ्रैक्चर्स उसमें हो जाते हैं जिसको कि अस्थि भंजन कहते हैं, तो इनको हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं, इनका वर्गीकरण कैसा हो सकता है?
0: फ्रैक्चर को हम मुख्यतः तीन भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है बंद या साधारण फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हड्डी टूटती है लेकिन जो उसके ऊपर की जो चमड़ी है उस पर कोई भी घाव नहीं होता, तो इस वजह से जो टूटी हड्डी है वो बाहर के वातावरण के संपर्क में नहीं आती है। दूसरा यदि हम देखें खुला फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी भी टूटी है और उसके ऊपर की जो चमड़ी है उस पर भी क्षति पहुंची है, तो उसकी वजह से जो टूटी हड्डी है वो बाह्य वातावरण के संपर्क में आ जाती है और उसमें संक्रमण के भी काफी चांसेस बन जाते हैं। और तीसरा यदि हम देखें जटिल फ्रैक्चर, तो इसमें भी हड्डी टूटने के साथ साथ आसपास की जो प्रमुख खून की नलियां हैं, नसें हैं या जोड़ हैं या अंदर के हमारे अंग हैं, जैसे कि यहाँ पेट है या फिर यकृत है, तो इन सब में भी यदि नुकसान होता है तो वो बहुत ही उसके गंभीर परिणाम होते हैं।
1: अनुराधा जी, सामान्यतः एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हड्डी टूटने के लक्षण समझ में नहीं आते हैं, आते हैं तो बड़े देर बाद आते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हड्डी चटक गई है यदि तो उसके लक्षण क्या होंगे?
0: सबसे पहले जो भी हड्डी चटकी है वो वाला जो हिस्सा है वो हम देखेंगे कि जो सामान्य से अलग है, यानी कि उसको हम कहें तो विकृत हो जाता है, वो
1: असामान्य
0: हो जाता है और पशु जो है उस पांव से या उससे उसकी जो गति होती है वो असामान्य हो जाती है और वो हिस्सा जो है कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। फ्रैक्चर के पश्चात जो प्रभावित हिस्सा है उसमें हम देखेंगे सूजन हमें दिखाई देगी और उस जगह यदि हम पशु को हाथ लगाएं तो वो दर्द के लक्षण हमें दर्शाता है। और इसके साथ ही प्रभावित भाग का यदि हम हाथ से ऐसे परीक्षण करें तो टूटी हड्डी, दो टूटी हड्डी के जब किनारे आपस में रगड़ करते हैं तो उसकी वजह से एक आवाज हमें सुनाई देती है और जो हाथ से परीक्षण कर रहे हैं उसको एक महसूस भी होती है उस आवाज को, जिसे विज्ञान की भाषा में हम क्रिपिटेशन कहते हैं।
1: जी जी, ये तो चटकने की बात हुई, क्रैक जैसे आया हुआ है। अब हड्डी टूटने की बात है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे?
0: ये जो अभी लक्षण सब बताएं इनका यदि हम सब उसका अध्ययन करें तो उसे हम कहें कि हड्डी टूट गई है। और यदि हमें देखना है कि फ्रैक्चर किस तरह का है और यदि हमें पूरा सटीक उसकी जानकारी चाहिए तो हम उसके लिए एक्सरे करवाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। उपचार कैसा हो?
0: यदि फ्रैक्चर जो है उसका सही समय पर उसका प्राथमिक उपचार नहीं किया गया तो उसके बाद में हमें घातक परिणाम जो है उठाने पड़ सकते हैं। और इसका जो यदि उपचार की बात करें तो उसका जो फ्रैक्चर का किस प्रकार का है, जैसे हमने शुरुआत में वर्गीकरण किया था, और पशु का आकार क्या है, कम वजन है या अधिक है, और कौन सा पशु है, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि उसका हमने ध्यान नहीं रखा तो जो बंद फ्रैक्चर हमने पहले बात की थी वो खुले फ्रैक्चर में या जटिल फ्रैक्चर में बदल सकता है। अतः जब कभी फ्रैक्चर हो तो पशु का प्रभावित हिस्सा पूर्णतः गतिहीन होना आवश्यक है। इस हेतु पशु को पूर्णतः आराम देना चाहिए और प्रभावित हिस्से पर हो सके बंद फ्रैक्चर में तो बर्फ से उसकी सिकाई करनी चाहिए, जिससे कि पशु को दर्द और सूजन कम हो सके और उसको कुछ आराम लगे। इसके पश्चात टूटी हड्डी को उसकी सामान्य स्थिति में लाना आवश्यक है, जैसा कि वो टूटने से पहले थी। तो इस हेतु खिंचाव विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि टूटी हड्डी के दोनों हिस्सों पर रस्सी बांधकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचा जाता है और फिर हाथों की सहायता से हड्डी को उसकी सामान्य स्थिति में बैठाया जाता है। फिर हड्डी को जब हमने सामान्य स्थिति में बिठा लिया, उसके पश्चात अति जो महत्वपूर्ण है, हड्डी को उसके पूर्णतया ठीक होने में जिसे लगभग 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है, उसको उसी स्थिति में बनाए भी रखना है। क्योंकि जैसे ही यदि हमने नहीं बनाया, पशु ने चलना शुरू किया तो वो हड्डी अपने सामान्य स्थिति से अलग हो सकती। टूटी हड्डी को सही दिशा में स्थिर न होने से जो उसको टेढ़ी मेढ़ी हड्डी जुड़ेगी और उसको जुड़ने में समय भी अधिक लगेगा और उसका पांव विकृत भी हो सकता है। तो हड्डी को स्थिर रखने के कई साधन हैं, जिसका चयन हड्डी एवं फ्रैक्चर के प्रकार, हमारे पास क्या संसाधन उपलब्ध है और पशु मालिक है उसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर भी किया जाता है।
1: ये जो संसाधन आपने बताए हैं इसके बारे में विस्तार से बताएं।
0: जी, खपचिया और जो प्लास्टर है सबसे लोकप्रिय साधन है। जो खपचिया है वो आसानी से उपलब्ध भी होती है और उसे थोड़ा लगाने में बनस्पत और यदि हम साधन देखें उसके लगाने में खर्च भी अधिक नहीं होता है। तो खपचिया हम लकड़ी या बांस की भी बना सकते हैं या हो सके तो मेटल की, यदि हमें और मजबूती चाहिए तो मेटल की भी हो सकती है। खपचिया लगाने से पहले जो पांव है प्रभावित हिस्सा उसको कोई क्षति ना हो, इसलिए हम वहां पर रुई और पट्टी से उसको ढक दिया जाता है और उसके बाद जो है खपचिया लगाई जाती है।

0: और खपच्चियां लगाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि प्रभावित हड्डी जो है उससे ऊपर और नीचे के जोड़ जो है वो भी उसमें सम्मिलित हो, ताकि उसमें कोई गति ना हो और हड्डी अपनी सामान्य स्थिति में बनी रहे। इस तरह जो खपच्चियां हम देखते हैं कि जो घुटने से नीचे की जो हड्डियों का फ्रैक्चर है उसके लिए अधिक उपयुक्त है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि उसी में ही हम उन दो जोड़ को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है उससे थोड़ा सा खर्चीला है खपच्चियों से, वो है प्लास्टर। प्लास्टर करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस युक्त पट्टियां हैं वो मिलती हैं, उसको हम ले सकते हैं। और इसको लगाते वक्त भी वही हम खपच्चियां लगाते वक्त जो सावधानी थी कि ऊपर और नीचे का जोड़ भी सम्मिलित करना है वो भी इसमें हम करते हैं। खपच्चियां प्लास्टर जो है वो बंद फ्रैक्चर के लिए अधिक उपयुक्त है। यदि हमें खुले फ्रैक्चर में और कोई साधन नहीं और यही लगाना पड़े तो हम जिस जगह वो खुला फ्रैक्चर का घाव है उस जगह में खिड़की बना देते हैं, जिससे कि घाव की नियमित सफाई हो सके और संक्रमण ना। खपच्चियां प्लास्टर लगाने के बाद पशु मालिक को एक अति महत्वपूर्ण यह सलाह भी दी जाती है कि प्लास्टर को हमेशा सूखा रखें। यदि गीला रहा तो अंदर ही अंदर जो है पांव गलना शुरू कर देगा। साथ ही साथ जब प्लास्टर या खपच्चियां लगी है तो अगले 24 घंटे पशु को पूरा निरीक्षण में रखें। यदि इस दौरान उसको लगता है कि ज्यादा कस्सा है और उसकी वजह से सूजन और लालिमा दिखाई दे रही है तो तुरंत उसको हटवा दें, नहीं तो घातक परिणाम हो सकते हैं। खपच्चियां और प्लास्टर के अतिरिक्त यदि हम देखें तो छोटे पशुओं में बैशाखी भी बनाई जाती है, उससे भी हड्डियों को अपनी सामान्य स्थिति में स्थिर रखा जाता है। श्वानों में यदि देखें जो बैशाखी है वो एल्युमिनियम रॉड से बनाई जा सकती है, और बछड़ों में और कम वजन वाले छोटे मवेशियों में लोहे के सरियों को वेल्ड करवाकर वो बनाई जाती है। इन सभी के अतिरिक्त जिनमें ये सभी साधन सफल नहीं हो पाते हैं उनमें हम शल्य क्रिया द्वारा उनको ठीक करते हैं, जैसे कि पांव में रॉड लगाना, प्लेट्स, स्क्रू और तार इत्यादि लगाई जाती है। थोड़ा सा ये खर्चीला होता है। फ्रैक्चर का इलाज जो है हम देखें तो श्वानों में, बिल्ली में और कम वजन वाले मवेशियों में अधिक सफल है। बड़े जानवरों में क्योंकि अधिक वजन है, घाव में देरी से भरता है और उनका पूरी तरह संक्रमण रहित नाम रह पाने के कारण इन सभी विधियों के ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। अतः बड़े जानवरों में प्रभावित पांव को हटाना ही, जैसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं एम्प्यूटेशन, वो किया जाता है।
1: अच्छा।
0: तो धीरे धीरे जो है वो पशु तीन पैरों पर अपने वजन लेना और चलना भी सीख जाता है। और यदि घोड़ों की बात करें तो बिना पांव का कोई घोड़ा काम नहीं है, तो जब उसका पांव में कभी ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है तो घोड़ों में जो अधिक अच्छी सलाह दी जाती है वो दया मृत्यु की है।
1: हमारे मुसलमान भाई अक्सर ये चाहते हैं कि उनको एक घरेलू उपचार या प्राकृतिक उपचार के बारे में ही मालूम पड़े ताकि प्राथमिक रूप से वो उसको अपना सके।
0: हम देखें हमारे आसपास की प्रकृति में भी कई ऐसे औषधीय पौधे हैं जिन्हें कि हम फ्रैक्चर के लिए, घाव भरने में अत्यंत जो है हम उसको काम में ले सकते हैं। जैसे कि जो हमने खपच्चियां प्लास्टर लगाया है उसके साथ साथ हम इन प्राकृतिक उपचार को भी अपनाएंगे तो हड्डी जल्दी जो है जुड़ती है। जैसे कि सभी किसान भाइयों ने सुना होगा हड़जोड़ है, तो उसकी हड़जोड़ की जो टहनी और जो जड़ है उसका पेस्ट हम बनाकर प्रभावित हड्डी पर उसको लगाने से जल्दी जुड़ जाती है और उसको खिलाया भी जा सकता है। इसी तरह से अर्जुन की छाल है तो जो उसकी अर्जुन की छाल है उसका भी पाउडर बनाकर उसको पिलाया जाता है। इसी तरह से एक बांस है तो बांस हर जगह मिलता है, तने और उसकी जो पत्तियां हैं उसका भी पेस्ट बनाकर प्रभावित हड्डी पर हम उसको लगाते हैं और उसको पशु को खिलाया भी जा सकता है। अन्य यदि पौधे देखें तो उसमें बबूल, हल्दी, पिपली, रतन ज्योत, इसका भी इस्तेमाल जो है हड्डी को जोड़ने पर इसके विभिन्न भागों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि हड्डी टूटना जो है वो बहुत ही पशु और पशु मालिक के लिए बहुत दुखदायी है, लेकिन यदि हड्डी टूटने पर उसका सही समय पर और उचित इलाज यदि हम कराएं, उसकी देखरेख सही रखें पशु की, तो हड्डी जुड़ने में हम अधिक कारगर हो सकते हैं और पशु का जीवन हम बचा सकते हैं।
1: तो अनुराग जी आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी है, हमें आशा है कि हमारे जो पशुपालक बहन भाई हैं इससे वो लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनी अभी हम यह भेंट वार्ता सुनत रहन जो उन्हीं के विषय रहा पशुओं में हड्डी टूटने की समस्या। भैया बहनी जन बही देत रही डॉक्टर अनुराधा नेमा जी और बतकहाँ करत रहे श्री विपिन यादव जी। डॉक्टर साहब हमी बच्चे का बहुत अच्छी जन बही दीन काहे कि देखी माल मवेशी हमार पंचे के बहुमूल अंग आही और उनके ऊपर अगर कौनो समस्या हो गई तो हमार पंचे के दायित्व तो बनत है कि उनके स्वास्थ्य के रक्षा हम पंचे करी। देखी भैया बहनी अपन हमारा जो नहीं भारत देश है बहुत बड़ा देश है, भारत में संसदीय दिवस आम तौर में 26 नवंबर का मनावा जाता है, जौनी का आधिकारिक तौर में संविधान दिवस कहा जाता है। यह दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अपनाए जाए के ऐतिहासिक स्मृति में आयोजित की जात है। एक ही अलावा हर वर्ष 30 जून का विश्व

स्तर में अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस घलाय मनावा जात हवे। यह दिन के उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्था के उपलब्धि के जैसन मनाऊब और नागरिकन के कल्याण में संसद के भूमिका का उजागर करब हवे। भैया बहनी अपने देश में मेर मेर के योजना चलाई गई हैं, देशवासी के खातिर, उनके विकास के खातिर। उन्हीं योजना में एक ठे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ही। भैया बहनी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय कैसे छब्बीस सितंबर 2014 का शुरू की गए रही है। एक ठे प्रमुख कौशल योजना और रोजगार मुखी पहलाए। एकर मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवन का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दे के उनका आत्मनिर्भर बनाओ और उनका नियमित रोजगार देवाए। जौन आत्मनिर्भर हो के अपन जीवन जी सकें। एक उम्र निर्धारित, देखिए यह जौन योजना बनाई गई, जौन योजना बनाई जाती हैं ओके खातिर हर चीज़ के एक निर्धारण कीन जात है। ये माँ उम्र के निर्धारण कीन गए कि कौने उम्र के व्यक्तियन का यह योजना में लाभ मिली। भैया बहनी, 15 से 35 वर्ष यह योजना के पात्र हुई ही, जे 15 से 35 वर्ष हुई ही उन्हीं का यह योजना में शामिल की जाई। और दूसर चीज, जिनखर BPL कार्ड बना रही। और तीसर, जे मनरेगा में 35 दिन काम कर चुके हैं श्रमिक या चिन्हित गरीब परिवार बालिन का। भैया बहनी, एमा हमारे बहनी हरेन के खातिर 33% के छूट दी जाती। SC/ST के खातिर 50%, और जो अल्पसंख्यक भैया बहनी है रहे हैं उनके खातिर 15%, और दिव्यांगन के खातिर 3% सीट आरक्षित थी। भैया बहनी, यह योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण दी जाते है जेखर जौन रुचि हो। काहे कि प्रशिक्षण बहुत मेर के दी जाते है। और भैया बहनी, देखी पहले का रहा है कि आप जीविका जिए के खातिर हर व्यक्ति का पैसा की जरूरत होती। अब पैसा कमाए खातिर हमारे गांव में रहने वाले भैया बहनी हरे शहर खातिर जात रहे, दौड़त रहे। पर अब जौन गांव में रहने वाले भैया बहनी हैं उनके खातिर यह योजना उन्हें खातिर चलाई गई। जे जौने लायक है, जे हमारे भैया बहनी हरे पढ़े हैं तो कंप्यूटरन के शिक्षा दी जाती, टेलीविजनन के शिक्षा दी जाती, और जे निम्न वर्ग के हैं उन्हें टोपरी बनाओ, बांस के टोपरी बनाई जाती है, सुपाड़िन के खिलौना बनाए जाते हैं। बहनी हरेन खीतिर सिलाई बिनाई कढ़ाई और पापड़ अचार मुरब्बा अगरबत्ती मेर मेर के छोट छोट उद्यम रोजगारन खीतिर चलाए गए हैं और उन्हीं में इनका काम दीन जाता। भैया बहनी, देखिए जीवन जिए के खातिर हमें बच्चे का प्रयास तक कीन जात है। जौन यह दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना चलाई गई एमा और बहुत सारी चीजन के शिक्षा दीन जाती हैं, जैसा ITI बिजली के काम सिखावा जात है, मोटर बाइंडिंग के काम, जैसे गाड़ी मोटरन के बांधे के काम, जौन उनखर पुर्जा होते उनखर कैसे मरम्मत की जाती इनखर काम सिखावा जाता है। जिसे कंप्यूटरन से अब आजकल अपना पंचे देखी थो कि अपन देश डिजिटल इंडिया भारत हो गया है, हर काम हमारे पंचे के ऑनलाइन हो गया है। चाहे स्कूल के फीस हो, चाहे बिजली के बिल हो, यहाँ तक कि जगह जमीन के रजिस्ट्री पट्टा, अब हर काम ऑनलाइन हो गया है। अब हम पंचे बिना कंप्यूटर के माध्यम से हर काम करी थी, अगर कंप्यूटर नहीं है तो मान ली कि हमारे पंचे के काम अधूरा है। तो हर काम जब ऑनलाइन हो गया है, वह काम करें के खातिर पहले हमें बच्चे का सीखें का पड़ी। यही से मेर मेर के प्रशिक्षण जो उन्हीं कंप्यूटरन के लड़का बच्चन का स्कूल से। अब तो देखिए स्कूलों में एक ठे विषय लगा दिन गए कि कुछ लड़कन के खेल कूद में रुचि होती तो खेल कूद वाला विषय लें, कुछ लड़कन के जैसे NCC है ना, वो माँ NCC के

विषय ले सकत हे। कुछ लड़कन का कंप्यूटर के शिक्षा दी जाती, कुछ लड़कन का संगीत से रुचि होती तो गाना बजाना वाद्य यंत्र जो उन्हें ऊ सिखवाए जाती। हर विषय के शिक्षक अब स्कूल में उपलब्ध रहा थी।

के हम बच्चे का जन्मही होई ओखर लाभ लेब तबहिन हम बच्चे निकही तरक्की कैसा कब और अपने लड़का बच्चन का आगे पढ़ाए लिखाए के उनखर भविष्य उज्जवल कैसा कब। तो भैया बहनी जौन दीनदयाल उपाध्याय के कौशल विकास योजना ही एकर सबको जानी और एकर लाभ ली जौने अपने घर परिवार और देश में निकही खुशहाली आवे।

0: नचनहाई सुनत रहन और भैया बहनी देखी चले कि जुना होती तो लिखी पता। चौपाल की चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी सिविल लाइन रीवा मध्य प्रदेश पिन कोड 48601। भैया बहनी यह पता में रही पाती के परिखाव अब ले थे आज्ञा। चौपाल के सबे सुनैया भैया बहनी का उर्मिला बहनी के राम राम, जय जवान जय किसान।
1: The third umpire there, Pereira, she is going to look into it. The only question here is, was the bat involved? Because the ball wasn't going very far away. It was almost like kissing the bat, but only the ultra edge might tell us what really happened, because that's the technology coming into play. The umpire had declared not out, so there should be a compelling reason for the batters to get out if the ball is hitting onto the stumps. We'll have to wait and watch. Where was the ball pitching and where was the ball going? Sanjay, you were probably looking at that option. Was it coming out of the stumps? But here it looks quite close. The ball was below the knee roll and it appears that she's safe, because there is a spike when the ball crosses the bat, and that's the reason the umpire did not give it as out there. And Kim Cotton was absolutely on the target, absolutely spot on. That's experience saying. So Australia has lost one of the reviews. They just got one more review. That was close, Sanjay, but except for the edge, she was absolutely beaten.
2: बिल्कुल बल्ले पर हल्का सा एक स्पर्श हुआ था और जिसका एहसास निश्चित तौर पर फील्डिंग कप्तान को नहीं था।
1: Next delivery outside the off stump. A bit of width offered and the batter moves away, plays it down into backward point. That runs taken. Very good over from Gardner. Just three singles given away. 66 for 4 after 13 overs, West Indies.
3: रिपोर्ट लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: तो वेस्ट इंडीज की निगाहें अब कितने स्कोर पर होंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस गति से वो रन बना रहे हैं और जिस गति से उनके विकेट गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान करने वाला होगा इस टीम के लिए। ओवल में सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का 103 रन का था 8 विकेट के नुकसान पर, यहां 66 पर 4। और 14वें ओवर की शुरुआत हो गई है। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छा कट, हालांकि प्रयास था लेकिन 4।
6: ये लगा आभा का चौका।
1: And this one was played late because there was a width offered outside the off stump, but that was very close to the outstretched hand of the fielder there at backward point. And on a given day, that could have easily a large jaunty Rhodes kind of an approach to take, pick up that one in the air. Very fortunate for Henry.
2: Sutherland ke is over ki akli gend aur isko halke se keval place kiya tha iklaute run ke liye. Runon ki raftaar अभी भी तकरीबन धीमी सी बनी हुई, 6 के नीचे। स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा 125। और अगर आप वेस्ट इंडीज के लो टोटल्स का जिक्र करें तो कई बार उन्होंने गोते लगाए हैं। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 43, 26 में श्रीलंका के खिलाफ 49, और इस बार इंतजार किया, पहले से कमिट हुए, गेंद के टप्पे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद टप्पा ऊपर आएगा और उसे वो उलट करके थर्ड मैन की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में निकालेंगी, लेकिन जो अंदाज था उतनी गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुआ नहीं, और इसी वजह से चलिए सुरक्षित अपनी जगह पर। डॉट बॉल, डॉट बॉल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 10 ओवर्स में 33 डॉट बॉल थी, 33 डॉट बॉल्स, यानी कि 5.5 ओवर डॉट बॉल से ही खत्म हुए थे, और वो आपके स्कोर में बिल्कुल साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। 71 पर 4, रन रेट 5.26। ऐसा लगता है कि रन रेट की जो सुई है वो अटक सी गई है, उसमें किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं दे रही है। कैंबल, जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी, आते ही साथ 2 चौके लगाए थे, अब 18 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बना सकी हैं। और इस बार मोड़ने का प्रयास बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कनेक्शन सही मिला नहीं, बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, इकलौता रन सिर्फ मिल गया। तो इस ओवर में अब तक 6 रन बने हैं सदरलैंड के। उस लिहाज से वेस्ट इंडीज के हिसाब से अगर आप

0: कहें तो ये एक बेहतर ओवर आप कह सकते हैं सदरलैंड का। जहां तक सवाल, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, मैथ्यूज इकलौती बैटर जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती थी हेनरी, लेकिन टाइमिंग गड़बड़, गेंद का टप्पा पहले खाया और बल्ला बाद में चला। लेकिन चलिए अपनी जगह पर सुरक्षित, और ये 72 पर 4 14वें ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है सदरलैंड। बड़ा अटपटा सा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेलना चाहती थी, आड़ा बल्ला लगा, एक रन दौड़ करके पूरा किया, 14 के बाद 73 पर 4।
1: So well now, what we've seen is 14 overs, 73 for 4, time for drinks in the center. And I'm sure this would certainly give time for the West Indies side to take some change of course. But Sanjay, isn't it, quite surprising that the power play saw 35 runs for no loss in just 4 boundaries odd. But now, in the next 7 to 14 overs, just 38 runs scored. And Shamas Saini says that last 5 overs 18 for 3, 18 runs and 3 wickets. What kind of a pressure was it? Now it looks as if the power play was a much better option.
0: बिल्कुल, लेकिन प्रेम अगर आप देखें तो असली जो प्रेशर है उन्होंने पावर प्ले में ही ले लिया था। अगर आप पावर प्ले में 34-35 रन बनाते हैं, भले ही विकेट ना गिरे, तो ये बताता है कि आपके बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने में। और जोसेफ ने खास तौर पर शुरुआत जिस तरह से की, उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे, कनेक्शन मिला नहीं, तो वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता लगातार दिखाई दे रहा है। और कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो विकेट पर टिक करके एक बड़ी पारी खेल सके।
1: And another thing which I've observed, maybe you have also observed, that the bounce is a bit variable, and that's been keeping the batters completely on a tension mode. And once those first 2 wickets fell, the others looked like as if they were completely strokeless wonders.
0: जी बिल्कुल ठीक बात है प्रेम, और मुझे ये भी लगता है कि क्रिकेट का खेल हो या दुनिया में कोई भी खेल, मैदान पर तो खेला ही जाता है, दिमाग पर ज्यादा खेला जाता है। जब आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, तो वही जो बाउंस था, जो अब वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वो पहले ठीक दिखाई दे रहा था, मैथ्यूज के स्ट्रोक बड़े शानदार थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रेशर ले लिया। अगर आप दब करके खेलेंगे, बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाएंगे या स्ट्रोक्स नहीं लगाएंगे, तो फील्डर्स को आप न्योता देंगे कि आप उन पर दबाव बनाएं।
1: बट लुक एट द अदर थिंग, look at the bowlers, they also bowled well. You saw Ashley Gardner coming with some very good bowling. Of course Garth and Hamilton started off seamers, but the spinners were more effective because they're bowling stump to stump, bowling the wrong ones and letting the ball come on to the stump line, and the batters, they make a mistake, and more often than not you've seen most of the wickets fall when they're trying to play the ball across the line.
0: Bilkul, aur मुझे तो लगता है कि क्रिकेट में, खासतौर पर shorter format के क्रिकेट में, अगर आप बिल्कुल stump to stump bowling करते हैं, तो आप बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टंप पर बॉल होती है, आप खींच करके फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते हैं और जरा सी गेंद को मिस करते हैं तो आपका विकेट चला जाता है। तो लगातार अगर आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे, विड्थ नहीं मिलेगी ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर वो स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस बैटर के अंदर नहीं आएगा, और वही कहानी हुई है वेस्ट इंडीज की। और वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि अगर उसका दिन हो तो वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा दे, और नहीं तो दुनिया की किसी भी हल्की से हल्की टीम से भी हार जाए। हमने देखा है 2 मैचेस हारे हैं वो इस वर्ल्ड कप के बीच में, किस्मत अच्छी थी जो सेमीफाइनल में पहुंच गए।
1: एशली गार्डनर रियली बोल्ड वेल, आउट ऑफ द 3 ओवर्स शी हैज गॉट 12 डॉट्स इन दैट, टेकन 2 विकेट्स ऑफ 6 रन्स। शी इज द वन हु लिटरली मेड दैट मूव टू पुट देम अंडर ट्रबल। हियर इज अ फर्स्ट ओवर आफ्टर ड्रिंक्स एंड दिस इज अप इन द एयर, goes high in the air, the fielder comes under and grabs this one, and that's Annabel Sutherland, and another wicket falls, just the first delivery after the drinks break, and the fifth wicket goes.
0: आसान मौका, गेंद के ठीक पीछे थी, स्ट्रेट खेला था, एकदम लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक, वहां से सदरलैंड ने गेंद को फील किया, बढ़िया मौका, और उस मौके को तब्दील किया, कोई हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं, और वेस्ट इंडीज की पारी अब लगभग धराशायी होती हुई। हेनरी भी 11 गेंदों में 10 रन बनाकर बाहर जा रही हैं। मुश्किल का समय है, क्या वेस्ट इंडीज 125 भी पहुंच पाएगा, 125 का स्कोर भी दे पाएगा? ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बैटिंग है,

0: में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दिया और अब डॉटेन आ रही है। डॉटेन आमतौर पर या तो मध्य क्रम में या पारी की शुरुआत करती है, एक अच्छी बैटर है टीम की। डिएंड्रा डॉटेन कुल मिलाकर 153 मैचों में 3000 से ज्यादा रन है उनके, 14 अर्धशतक, 2 सेंचुरीज लगा चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में, तो ये बताता है डॉटेन का कद क्या है। लेकिन आज मुकाबले से पहले थोड़ी सी चोटिल दिखाई दी, अब लगता है कि रिकवर करके वापस आई है।
1: संजय अब शायद कहना पड़ेगा कि आप पछताए कहाँ हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
0: बिल्कुल, चिड़िया तो चुग गई है लेकिन यह अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है।
1: एब्सोल्युटली,
0: और आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते।
1: वेल, Dotton comes, he's in a bit of a bother as Wareham's first delivery plays on the offside and no runs taken. We earlier saw how Dotton was carried from the middle of the ground where she was practicing. This was not in the game. So here is the next delivery, which is outside the off stump, and once again just about on the fourth stump, which the batter wanted to convert into a stroke on the offside, moving away from the line of the ball, and no runs taken. We have 6 fielders on the offside, 3 on the on, 4 on the fence, 2 in the V, 1 on the mid-wicket region, 1 on the back of the square on the offside. Here's the next delivery played on the offside, and that ball goes straight into the hands of Molyneux, and a very good chance of a run out goes out of hand for Australia, but I don't think they will mind ever. 16 overs gone, West Indies now 84 for 6.
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो डॉटेन अब क्रीज पर आ चुकी है, लेकिन उनके आने से क्या वेस्ट इंडीज की उम्मीदें वापस जोर मारेंगी, क्या वेस्ट इंडीज इन आखिर के कुछ ओवर्स में, 4 ओवर्स यानी कि 24 गेंदे बाकी हैं, 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन्स बना पाएंगे, क्योंकि अब उनकी पास बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। ग्लासगो हैं, फ्लेचर, मुनीसर, तो जो नीचे के बल्लेबाज हैं वही अब इसके बाद दिखाई देंगे। गार्डनर कमाल की गेंदबाजी की, उन्होंने आज ये 17वां ओवर डाल रही है डॉटिंग के लिए। डॉटिंग ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को ड्राइव किया इकलौते रन के लिए। गेंद बल्ले से लगी और डॉटिंग ने अपने सफर की शुरुआत की। बहुत ही सॉलिड बैटर और लंबे समय से खेल रही है वेस्ट इंडीज के लिए। 2016 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल के फाइनल में हराया था और उस टीम की 5 लड़कियां इस टीम में भी शामिल हैं। जो तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन उसका आज प्रतिफल दिखा नहीं। इस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया। तो गार्डनर की 2 गेंदों पर 2 रन, वेस्ट इंडीज 86/6, 5.27 का औसत, रनों का औसत 5.25 के आसपास, पूरी तरह से अटका हुआ है, न बढ़ता है न घटता है। और इस बार फिर निकाला मिड विकेट की दिशा में 1 रन, ये दूसरे रन के लिए जा रही है। थोड़ा सा जोखिम हो सकता है लेकिन आपको अब इन आखिर के ओवर्स में जोखिम लेना ही होगा। गार्डनर ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी आज की है, अच्छा प्रदर्शन गार्डनर का। अगर आप देखें कुल मिलाकर 4th ओवर उनका चल रहा है, उनकी इकोनॉमी है 2.86, T20 इंटरनेशनल में 2.86 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट लिए हैं गार्डनर ने। तुरुप का पत्ता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। और 17वां ओवर चलता हुआ ओवल में क्या वेस्ट इंडीज अपने बचाव के लिए आखिर के 3 ओवर्स में आतिशबाजी कर पाएगा, क्या डॉटन का बल्ला चलेगा। और इस बार गेंद पैड्स पर डालने की कोशिश की थी लेकिन अपने शरीर से दूर धकेला, इकलौता रन। और इस 1 रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर बढ़ता हुआ अब 90 रन 6 विकेट पर। डॉटन ने अब तक 5 रन बनाए 6 गेंदों से, ग्लासगो ने 4 रन बनाए हैं 4 गेंदों से, और गार्डनर के कोटे की आखिरी गेंद रक्षात्मक तरीके से रोका, 1 रन दौड़ करके पूरा किया 17 के बाद 91/6।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए माँ, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहे

0: quite optimistic. Now five fielders on the off, four on the on. Here she bowling in right outside the leg stump, wrapped in the pads, no question about leg before. The ball goes into the point region, picked up there, a single taken in the process. And that ends the 18th over. West Indies 104 for 6, dot in 11, Glasgow 10.
1: मुझे लगता है कि अब तक का सबसे खर्चीला ओवर, कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर में आए हैं कार्थ के. और ऐसा होता है जब आप रन्स बनने लगते हैं तो आमतौर पर जो लंबाई है गेम की, दिशा, उससे भी भटकाव आता है. 13 रन इससे पहले बने हैं, ओ माफ कीजिएगा, 13 रन इस ओवर में बने हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं. मॉलिन्यू और सदरलैंड ने इससे पहले तीसरे और आठवें ओवर में 10-10 रन खर्च किए थे. तो ये तीन ओवर्स ऐसे हैं जो वेस्ट इंडीज़ के लिए लाभप्रद रहे हैं. लेकिन कहानी ये है कि वेस्ट इंडीज़ क्या अपने इस टारगेट को डिफेंड कर पाएगा. सामने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उनके जो बैटर्स हैं वो जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं वो सचमुच परेशान करने वाला है, चौंकाने वाला है. भारत की मजबूत टीम को जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी थी, और जितने संतुलित तरीके से खेलते हैं, जिस रणनीति के साथ खेलते हैं, अगर गेंदबाजी करेंगे तो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे. विकेट पर गेंद थी, इस बार गेंद को अपने से दूर धकेला एक रन के लिए. इसे एक रन के साथ, बल्कि दूसरा रन भी पूरा कर दिया तेजी के साथ दौड़ते हुए. रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर करने की जरूरत है इस समय. ये आखिर के एक दो ओवर्स ऐसे होते हैं जब आपको अपना सब कुछ झोंक देना होता है. और आज ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में जो दबाव बनाया है वो डॉट बॉल्स के जरिए बनाया है. पहले से कमिट हो गई थी स्ट्रोक के लिए, और ये देखते हुए मॉलिन्यू ने जहां पर खड़ी थी लेग स्टंप के बाहर तकरीबन उस गेंद को रखने की कोशिश की थी, एक रन दौड़ करके पूरा किया. स्कोर प्रेडिक्टर 120 से 25 की कहानी बता रहा है, और रनों का जो औसत है वो अभी 5.84 है. मॉलिन्यू का ये आखिरी ओवर है, चार गेंदें बाकी हैं उनके इस कोटे की, दो विकेट उन्हें भी मिले हैं, और इकोनॉमी 6.6 के आसपास. वो इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और उठा दिया है गेंद को टप्पे के साथ, चार के लिए भी नहीं जा पाई, ऊंची गई लेकिन टप्पा खाने के बाद ठहर सी गई. और इसीलिए जो शायद उम्मीद थी एक बड़ा सा स्ट्रोक दिखाई दे रहा था वो नहीं बन पाया, दो रन दौड़ करके पूरे किए. डॉट इन का बाद में आना क्या ये परेशानी का सबब था वेस्ट इंडीज के लिए. मॉलिन्यू की ये गेंद और इस बार करारा स्ट्रोक.
0: And this one, the ball goes into the offside to the wide-ish long off region, and one more run taken, and the score moves up to 110 for the loss of 6 wickets. Dot in, not in control of the shot, the ball just rolls over on the bat, and the pace of the ball is taken away because the ball rolling over the bat. Lucky there was not a catch in there. Here's Molyneux for the fourth time, in the fifth time this over, and Glasgow steps out in confidence, didn't once again get hold of the ball. The ball goes into the wide-ish long off region. Sutherland picks up, disallowing the second run. The score now moves up to 111 for the loss of 6 wickets. And West Indies in real trouble there. Now, how much can you score in the last? I mean, you just left with 7 more deliveries to go.
1: Akhri game ka samna karengi Dotton. Aur is baar Dotton ne nikal diya on side par. Ek aur char.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: Once again, confidence oozing out of Dutton, and who steps out daringly and plays the ball to the offside, to the whitish, almost an extra cover region, let's put it that way, and a good boundary to end up that over. So it looks as if the West Indies team now looks better confident compared to what it was earlier, and the Australian bowlers have really bowled wonderful. They've kept the ball on the stump line. Of course, occasional boundaries are bowled, but rather scored. But then the bowlers have done well. The highest score that the West Indies team in this World Cup, it was 163 for 3 versus New Zealand. Then was 153 for 6 versus Scotland. The lowest score was 99 for 5. That was against Sri Lanka. As Sutherland bowls the first delivery, and that ball once again played nicely onto the backward square on the inside. A bit of a risk involved, and the ball rushing to the fence for 4 runs on that occasion.

0: वैसे कम है, 125 जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बैलेंस टीम है तो उनके लिए ये जो टारगेट है मुश्किल नहीं होगा, उनके लिए बहुत इजी होगा। अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात करूं तो अगर देखिए तो सारे जो बैटर थे ना वो केवल क्रॉस बैट चला रहे थे, मतलब बॉल की लाइन में नहीं खेल रहे थे। अगर वो उस बॉल की लाइन में खेलते तो मुझे लगता बेटर स्कोर होता।
1: राइट, राकेश, आई विल कम टू यू। समवेयर डू यू फील दैट द वेस्ट इंडियन बैटिंग जस्ट कुडंट पिक अप देमसेल्व्स टुडे, दे वर एवरीवेयर व्हाइल पुटिंग ऑन अ स्कोर टुडे?
2: Yeah, you're right, because what I thought was that, you know, even after that 47 run start, somehow they couldn't get going. It was, you know, that they could never accelerate. They were just about, you know, that run rate of between 5 and 6. They stayed there and they ended up with just over 6 and over. And that is thanks to that 42 run stand for the, you know, that last wicket, which we saw, the 7th wicket. Otherwise, I think between that 47 run stand at the top and 42 run stand in the middle, in between they had very little to show, and thanks to that, you know, that late kind of a charge which we saw, desperate charge, and that too, and it came from the bat of Inek Datin, which we all thought that she was not able, she, you know, like there was this thing whether she'll be able to come and bat or not. She gave that impetus. I don't think it's enough, but then women's cricket, as I said, 120 125, at the face of it, yes, Australia should just, for them it looks like just like a walk in a park, but let's see. I mean, because I'm also getting the impression that ball is probably stopping at times, but then, you know, when these guys, I mean, you know, when Australian girls come and bat, their skill sets are very different than what we have seen from the West Indian unit batters. So the timing and all, we are likely to see a very different approach.
3: Right. लेकिन अगर हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर कप्तान सोफी मोलिनी ने 6 गेंदबाजों को लगाया, कप्तान ने खुद 2 विकेट लिए। एशले गार्डन की तारीफ करनी होगी रविंदर जी, 4 ओवर में मात्र 13 रन और 2 विकेट।
4: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग का प्रदर्शन किया सबने लोगों ने, और मुझे लगा है कि इतना एक्सपोजर शायद अब वेस्ट इंडीज में इतना लोकल वुमेंस को शायद नहीं मिलता होगा जितने जितने मैचेस नहीं खेल पाते होंगे, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीमें खेल पाती हैं। ये इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा, सिर्फ मैथ्यूज ने शुरू में अच्छी बैटिंग करके दिखाया, बाद में डॉटिंग में थोड़े से अपने हाथ चलाए तो वो बड़े, और बाकी जो लग रहा था ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई फॉर्म में है, और पूरा टूर्नामेंट में जैसे पता चला 2 मैच हारने के बाद भी ये लोग पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक वॉक ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया।
3: लेकिन आशा जी, अगर हम गेंदबाजी में देखें, 6 एक्स्ट्रा थे, 2 लेग बाय, 4 वाइड, नो बॉल तो हुई नहीं, प्रोग्राम फ्री है, 20 है।
0: वो ऑस्ट्रेलिया ने मुझे लगता है सुन लिया, इसलिए उन्होंने कोई नो बॉल नहीं दी।
1: लेकिन अगर आज हम आशा यहाँ पर बात करें, जिस तरह की आज गेंदबाजी रही ऑस्ट्रेलियन टीम की, 47 में पहला विकेट गया, लेकिन असली कमर जो कहते हैं ना कहीं पर वेस्ट इंडीज की, तब टूटी जब अगली 4 गेंदों में उन्होंने 3 और विकेट्स अपने गवा दिए। एंड टू टॉप इट ऑल, उसके साथ अगर देखें तो आज जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का हम राउंडअप देखते हैं उसमें कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियन की गेंदबाजी ने आज 54 डॉट बॉले डाली है, T20 के मुकाबले में जहां 120 गेंदें होती है उसमें 54 डॉट्स।
3: राकेश कह रहे थे एक भी नहीं होनी चाहिए,
1: मतलब कमेंडेबल थिंग कर दिया आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने ओवरऑल अगर देखे आज तो।
0: हाँ, वही ना, पहले तो सबसे पहले आप T20 मैं वही बोल रही हूँ, सारे क्रॉस खेलने के लिए जा रहे थे, अगर वो बॉल की लाइन में आके खेलते तो जो रन 125 बने मे भी वो 140-150 के करीब चले जाते, पर आपने स्टार्टिंग में जब हमारे ओपनर आए तो वो ओपनर भी जो थे क्रॉस, सब क्रॉस खेल रहे थे, किया जो सर्फ ये सब इन्होंने क्रॉस खेला, जबकि मैथ्यू बहुत अच्छा खेल रही थी, बट वो उसने जो बॉल चूज करी वो बहुत ही गलत, मतलब वो वही मैं कह रही हूँ ना, सबने क्रॉस खेला, उसको स्ट्रेट खेलती तो मे बी वो बाउंड्री हो जाती।
3: राकेश, टू मेनी डॉट बॉल्स फॉर कंफर्ट।
2: या बिकॉज़ यू नो इफ यू कांट प्ले स्पिन, you have lost 6 out of 7 wickets to spin, and overall when you look at it, you always struggle, you're not able to read the length, you're not able to gauge the turn, and it wasn't turning viciously, I mean it was just another typical England wicket where it doesn't spin so much, there is an extra bit of bounce I thought sometimes every time the ball hit the seam, and the batter struggled, any delivery which had a bit of bounce and that too just a bit short of the length, you know, back of the proper in-length length, they struggled.
1: The
2: timing wasn't right, and as Asha very rightly said, cross-batted shots you see so many times, and you are not able to clear the infield, 30-yard circle, you are not even.

0: a single day. So unless you pierce the, you know, the field, go for the gaps, and the whole idea was to hit over the top. Right. And they struggled.
1: And I think some of the irony is that when we're talking of that the West Indies couldn't play spin very well, they are the team that actually also bowl spin very well. And Ravi, aapke paas aaunge is baat pe, ki ab West Indies ko 125 run ka target defend bhi karna hai, to kya unke spinners is match mein kuch bhi kamal kar payenge, aapko lagta hai ab?
2: देखिए मुश्किल है मैच इस समय, क्योंकि रन उनके पास इतने हैं नहीं इससे उसमें, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही 6 ओवर के अंदर ही काफी 50-60 रन बना के मैच को एक वन साइड ले जाएगा, क्योंकि ये विकेट जो है इतना, जिस हिसाब से बॉल किया है उस स्पिनर्स ने, उस बहुत ही स्लो बॉल किया है, और वेस्ट इंडीज को भी अब, लेकिन बॉल तो स्पिन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वो डिफेंड करने के लिए उतना रन नहीं है। 160-170 रन बनते तो फिर शायद थोड़ा चांस बन सकता था, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं है कि मैच
3: जी। आशा, डिएंड्रा डॉटिन जो है वो पहले लग रहा था थोड़ा इंजरी स्केयर हो गया मैच से पहले, और वो खेलने भी बहुत नीचे आई, लेकिन फिर जब आपने उनको देखा खेलते हुए, 26 रन नाबाद, 16 गेंदों में 4 चौके, तो फिटी लगी या फिर कुछ अभी कैरी कर रही है इंजरी?
4: नहीं, फिटी लग रहे थे जिस हिसाब से, बल्कि मुझे लगता है जो ओपनर ने नहीं करा सिंगल, वो लास्ट के बैट्समैन सिंगल ले रहे थे, तो वैसा गेम अगर वो पहले खेलते अगर ओपनर, तो मे बी स्कोर और अच्छा होता।
3: ऊपर खेलने क्यों नहीं आई राकेश?
0: Because she made 26, a very important contribution. She didn't have the time also to settle in. She just came and just used the long handle, and she did it very effectively. So you have to give it to her, brave effort, but I think before her, whosoever came, they didn't do enough because you didn't rotate the strike. That beats me completely.
3: अगर हम अब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों की बात करें, तो जो विकेट कीपर है उनकी लेफ्ट हैंडेड बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल, कैसे देखते हैं सलामी जोड़ी को आशा?
4: जिस हिसाब से वो पहले भी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, 5 मैचों में अभी तक कोई उनकी मतलब हार ही नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है पार्टनरशिप उनकी अच्छी, और उनमें सबसे पहली बात है कि कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई इतना रन नहीं है, 120 बॉलों में 126 रन बनाने हैं, तो कोई टारगेट भी इतना नहीं है, तो उस हिसाब से, और बाकी उनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। तो
1: रवि, आपके पास आऊंगी, 125 रन का मतलब स्कोर बना, 126 चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी अप टू द मार्क उतनी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बोलिंग उनके बोलर्स ने आज करी है, वेस्ट इंडीज को 125 में उन्होंने कंटेन कर दिया। क्या यहां से कोई भी ऐसा पैतरा हो सकता है जो आपको लगता है वेस्ट इंडीज थोड़ा सा भी अपने इस गेम को अपने पक्ष में करने के लिए कर सकती है या अपना सकती है?
2: बिल्कुल, इसमें देखो वैसे तो क्रिकेट बने अनिश्चितताओं का खेल होता है, क्रिकेट में कभी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर यही है कि अब स्पिनर से शुरुआत की जाए दुरंत से, और उसमें अगर कुछ एक आध कोई गलती वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बैटर कुछ कर सके तो कर सके, क्योंकि इस विकेट पे जो मुझे कुछ ज्यादा दम लग नहीं रहा कि बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा दम है, अगर वो अगर ये चाहते तो थोड़े से मतलब सिंगल सुंगल निकाल के 160 तक पहुंचाते तो मैच में फाइट बनता, लेकिन अब तो मिराकल से हो सकता है अगर कोई 2-3 गलतियां करें और 2-3 विकेट निकाल जाए तो शायद प्रेशर बन जाए।
3: जी राकेश, ये जो गेंदबाजी है वेस्ट इंडीज के पास, अश्विनी मुनिसर, एफी फेचर, आलिया एलेन, जेनिलिया ग्लास्को, तो इनके पास भी है विविधता?
0: बहुत शार्प नहीं है, छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं चलेगा ये, क्योंकि अगर वो इंडियन स्पिनर्स को देखने के बाद तब भी मैच निकाल सकते हैं, जितना भी इंडिया वाला मैच अगर आप याद करें तो उसमें स्पिनर्स ने जितना इफेक्टिव हो सकते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इंडिया के पास पेस अटैक उतना इफेक्टिव नहीं है, कहने को तो बॉलर्स हैं लेकिन वो जान नहीं है, तो यहाँ पे भी उनके पास वो वेराइटी क्लास नहीं है, स्पिनर है इसका मतलब ये नहीं कि वो इफेक्टिव स्पिनर्स होंगे, वो क्लास है नहीं इनके पास।
1: राइट, एंड आई थिंक समवेयर टुडे इफ यू वर टू टॉक अबाउट दिस हाउ द गेम प्रोग्रेस्ड आल्सो, ऑस्ट्रेलियंस वर जस्ट वे टू गुड फॉर द डे फॉर वेस्ट इंडीज टुडे राकेश, मतलब दे डिड नॉट अर मच from their strategy apart from the fact that yes, in fieldings we could pick out nitpick that there were dropped catches, dropped missed opportunities, but still the fact that they were able to hold their nerves together under extreme pressure in a match like a semi-final, much appreciation and kudos and a round of laurels should go for Australia today, do you think?
0: So Sakshi, what happened was that, you know, barring that one dropped catch in the outfield, Australians held everything, you know, when the ball fell in no man's land, then it was, of course, it was beyond them. But overall, I would say that West Indies did nothing to put pressure on the Australians. That 47 run start was, to said it, you know, it

0: should have been a little more, you know, in the face, which it wasn't.
1: Gee.
0: So when you are maintaining a run rate of around 6 to 7 initially, not good enough. Because if you want to put pressure, you have to be off to a flyer. And that we didn't see.
1: Gee.
0: And that is where I hold Campbell responsible to a large extent. She stuck in there and she ended her innings. She played the longest. I mean, if you see the amount of time that she took, although she didn't get strike very regularly, but she couldn't even maintain 100% strike rate.
1: Gee.
0: So that is disappointing.
1: Gee, Hayley Matthews, who is captain of West Indies, ki unhone sarvadhik 28 ball kheli, halanki unhone high score bhi banaya 30, lekin jab wo jump gayi thi to bahut zaruri tha, acha khelti. Lekin women cricket ko star ambassadors chahiye, star players. Aur agar aap Australia ke khiladi ki baat kare, Elise Perry, wo bahut hi akramak khelti.
2: Namaskar, Akashwani se samachar sandhya ke saath main Priyanka Arora. मुख्य समाचार विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया दिल्ली झारखंड मेघालय कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से अब समाचार विस्तार से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए उन्होंने
3: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि ये जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है
2: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा

0: किया और राष्ट्र राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

0: मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माही, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवे मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने की खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों के खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मंसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमूई हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाति सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जाम मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए पीएम गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन 2 अहम मौजूआत से मुताबकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्की सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मुआशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम इस्नाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने ये बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए।
1: बस 2047 विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों के बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवेज ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरसा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमदोरफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकलोहमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी।

0: रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी मंजूरी दे दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। आज वडोदरा में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में खुद कफील बनने की तरफ मुल्क की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई पैदावार 2014 में तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए थी, जो नुमाया इजाफे के साथ इस वक्त 1,78,000 करोड़ रुपए मालियत की हो गई है।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। इस मशक के हिस्से के तौर पर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ सतह के अफसर आइंदा माह की 29 तारीख तक हर घर जाएंगे और सभी मुतल्लिका वोटरों को वोटर फहरिस्तों की तस्दीक और उन्हें दुरुस्त करने की खातिर एक फॉर्म भरने के लिए देंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दावे और एतराजात 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। खत्मी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पहले दिन वोटरों को 1,68,200 से ज्यादा फॉर्म तकसीम किए गए। 7,600 से ज्यादा इंदराज के फॉर्म डिजिटाइज किए गए। दिल्ली में 13,033 पोलिंग बूथ्स हैं जो 1,45,10,298 वोटरों का इहाता करते हैं। हतमी वोटर फहरिस्त 7 अक्टूबर को शाया की जाएगी। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज इंदराज का अपना फॉर्म दाखिल किया और कौमी राजधानी के सभी अहल वोटरों से नजरसानी के जारी अमल में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर अपने फॉर्म दुरुस्त तरीके से भरें और उन्हें अपने मुतल्लिका बीएलओस के हवाले कर दें। उन्होंने इस मुहिम की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सही और दुरुस्त वोटर फहरिस्त एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद होती है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमन अली खान।
0: भारत ने 26 से ज्यादा मुल्कों के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक शराकतदारी के 28 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज नई दिल्ली में इंसानी वसाइल की मोबिलिटी से मुतालिक फोरम से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन, इस्तेहसाल के तौर तरीकों, धोखेबाज बिचौलियों और गैर कानूनी तरीके से लोगों को लाने ले जाने से निमटना सभी मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महफूज और कानूनी तरीकाकार के तहत मोबिलिटी के भारत के अज़्म की अक्कासी ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से होती है और इसके आगाज के बाद से इमिग्रेशन की 50 लाख मंजूरियां दी जा चुकी हैं। हुकूमत ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर कस्टम महसूल में मुकम्मल इस्तिस्ना में अगले माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। मरकज ने इससे पहले कस्टम ड्यूटी में मुकम्मल इस्तिस्ना को आज तक के लिए मंजूरी दी थी। आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के तनाजुर में आर्जी और हदफशुदा राहत देने के लिए यह इकदाम किया गया है। इस छूट के दायरे में शामिल मसनूआत की फहरिस्त वही रहेगी जो पहले जारी की गई थी। तवक्कु है कि इस रियायत से उन सनअतों को फायदा होगा जो पेट्रोकेमिकल, खाम माल और दरमियानी मसनूआत पर इन्हिसार करती हैं। इनमें प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, दवासाजी, केमिकल्स, ऑटोमेटिव पुर्जे और मैन्युफैक्चरिंग के दीगर शोबे शामिल हैं। आज हुल बगावत के शुजातमंदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हुल दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में खसूसी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इस मौके पर साहिबगंज के पंचकतिया और भोगनादी में यादगारी मकाम पर हुल इनकलाब के शहीदों को हजारों लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुल दिवस कबायली बरादरियों के गैर मामूली हौसले और गैर मुतजलजल जज्बे की एक मजबूत अलामत है जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जान

0: इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खेल रही है गार्डनर और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती। 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ 29 गेंदों पर, वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। रैकेट पर कई इस बार गेंद को मोड़ा इकलौते रन के लिए। 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद 73 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: तो 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है और अब सिर्फ 53 रन चाहिए 72 गेंदों से। गार्डनर 4 रन पर, मूनी खेल रही है एक अच्छी पारी, 45 पर पहुंच गई है मूनी और ये स्कोर उन्हें निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट था और थोड़ी सी ओवर पिच थी, ड्राइव किया था गेम को लेकिन कैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे प्लेयर के पास कोई रन नहीं।
3: 73 for 2 and they're cruising except for that one over which almost went as a maiden. Perry was playing those five deliveries as dot ball and thereafter immediately after that over she went back. She was uncomfortable. Some minor niggle around as here is Ellen coming into bowl over the wicket. Straight run up and balls outside the leg stump delivery. The batter wasn't in control of that one but plays it down onto the own side and crosses over for a single. Mooney goes up to 46. Should he get she get four more runs, this should be her second half century this World Cup. Well, one must say that she's been a very consistent batter with 138 almost as a strike rate, which is very encouraging. So now Australia need 52 of 70 deliveries, which looks very, very simple when you do the reverse countdown with 8 wickets in hand. So that should be a very positive motivation for the Australians who went on very competitive in this match. As here is Ellen coming into bowl, third delivery over the wicket and that's width offered and the batter of the back foot plays it down into the back with point region, the ball rushing to the fence, cruising past the field of four runs.
4: ये लगा आभा का चौका,
1: बिल्कुल परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेंद के ठीक पीछे गई और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला सीधे चार रनों के लिए।
3: व्हाट अ वेल place shot that was almost perpendicular to the pitch and Ellen couldn't believe it. Obviously if you offer this kind of a width, who's going to spare you? That was almost like a hit me delivery as here is she running in away from us over the wicket, almost a slow delivery in the slot but the batter wasn't able to cross the fielder there at whitish long off region, picked up there but in the process they have scrambled for a single. Glasgow tried every bit of her effort to save the single but just couldn't do that because the non-striker had already called for the shot, the run there, because she was running, the striker was running to the danger end. So the call was absolutely well calibrated and a single taken. So Beth Mooney on 46 and those four runs will take her to the score of a half century. A higher score this season had been 74, not out. As here is the next delivery, which is right out outside the off stump, plays it down into backward of point. The ball picked up there and no runs taken. The fielder there was Karishma Ramharak, who has been brought in this match in place of Ashwini Mulisar. Of course, she couldn't do much with the ball. As here is the last delivery of the over, 79 for 2. Australia need 47 more runs of 67 deliveries. As Ellen comes in and bowls the last delivery. Wide outside the leg stump. The wicketkeeper misses. That's wide and that's going to be 5 runs unless it's picked up. Yes, it's picked up. So that's 2 runs, but then a wide. That was a completely offline, rank bad delivery. The keeper misses and lucky that the fielder was out there.

0: and no boundary was scored. But it doesn't matter for Australia because they are not in a great hurry. Of course, they want to complete the process as soon as possible, not linger on, and take it on to the 20th over. 81 for 2 after 8.5 overs. Need 45 runs from 67 deliveries. Last delivery, slowed one, slower delivery. Strikes into the wide-ish mid-off, and Gardner couldn't cross the fielder. So, dot delivery, 7 runs of the over. 81 for 2 after 9 overs, Australia.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 10वें ओवर की पहली गेंद ही वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर। फ्लेचर जिस गति से गेंदें करती हैं, उस गति के हिसाब से उन्हें गेंद पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद डाल दी फ्लेचर ने और इत्मीनान के साथ वहां पर एक अतिरिक्त रन जुटा दिया। जहां तक मुनी का सवाल है, मुनी ने आज अपने 3700 रन पूरे किए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान बैटिंग जो उनका लाइनअप है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। फ्लेचर की गेंद और इस बार स्टंप पर लेकर के आई। गार्डनर ने हल्का सा केवल अपने पल्ले भर से लटने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया को अभी 43 रन की जरूरत है और 65 गेंदें बाकी हैं। टी20 क्रिकेट में इससे आसान स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। इस बार कदमों का इस्तेमाल गार्डनर का और गेंद सीधे 6 रनों के लिए।
5: ये लगा आभा का छक्का।
0: A great shot and great confidence oozing, and played that shot with consummate ease as the delivery was bold. She was anticipating, stepped out, the footwork was important, picked up on a half volley and just about timed it well over the long on region.
4: To badhiya stroke aur ek bada sixer. Aaj match mein bahut zyada sixer dekhne ko nahi mile. Mujhe lagta hai ki Australia ka dusra ya zyada zyada teesra chakka hoga. Kshama, इस समय बिल्कुल ये दूसरा सिक्सर था ऑस्ट्रेलिया की ओर से। एक छक्का वेस्ट इंडीज की ओर से लगा था, तो कुल मिलाकर 3 सिक्सर्स। 10वां ओवर चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 89 हो गया है, यानी कि 90 की तहलीज पर। कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइट गेंद और एक बार फिर टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
5: ये लगा आभा का चौका।
0: What a graceful inside-out shot, Sanjay. Picked up that length beautifully and played that with consummate ease. Just steps away from the line of the ball and that confident-looking inside-out shot.
4: Off stump ke bahar lagatar hit di hai Fletcher ne aur uska bharpoor istemal kiya hai. Gardner ab 9 gendon par 19 run bana chuki hai. Ek baar phir flight, lagatar flight kara rahi. Lekin agar aap stump par flight kara hai, to chaliye usko rokne mein आपको मदद मिलेगी। हल्का सा केवल पुश था इकलौते रन के लिए। हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, लेकिन एक शानदार छक्का और उसके बाद एक बाउंड्री ओवर में आई है फ्लेचर के, तो काफी खर्चीला ओवर फ्लेचर का अब तक। 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें बाकी, सिर्फ 35 रन की दरकार। गार्डनर पहुंच गई 20 पर और मुनी अपने अर्धशतक की दहलीज पर। 46 रन बना चुकी है मुनी पर। शफल किया और हल्के से केवल गेंद को मोड़ दिया। 1 रन लेना चाहती थी, लेकिन दूसरे रन का भी मौका दिखा और उस मौके को उन्होंने तुरंत अपने हक में कन्वर्ट किया। बढ़िया दूसरा रन दोनों के बीच, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकेट के बीच में। इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 96 2 विकेट के नुकसान पर। 100 रनों की दहलीज पर पहुंच रहा है और 126

0: So after 10 overs, the score is much above expectation as far as the West Indies total is concerned. We're going to make a quick comparison of what were West Indies score when they were 10 overs old. Australia 97 for the loss of 2 wickets, and they are bulldozing through, whereas West Indies were 58 after 10 overs. That should tell you the state of affairs. A scorer Chama was working out on that, because we knew there's a big disparity between those runs after 10 overs. Where is 58 and where is 97? Almost like a 40 runs gap. Almost 40, I'm saying. So the Australians really prevailing over, and the willow prevailing over the leather as far as the Australian batting is concerned. And they've made sure that they pulverized the bowling attack. And as and when a loose delivery was bowled or a hittable delivery was bowled, bowled in the slot or wide, they've made use of it and encashed upon the opportunity. 10 overs, 97 for 2. And now you require 29 more runs to win. As here is the first delivery of a fresh over from the captain there, Matthews, to Mooney. Mooney tries to place on the offside. She's waiting for one more run to complete her second half century in this particular World Cup in England. And obviously she's been the linchpin of the side there. She, Perry, Ash Gardner, they've all been very impactful players. As here is the next delivery, and that's been played on the onside, and she gets a 15 style, playing into the mid-wicket region before the ball's picked up, to the acclaim of the colleagues of hers in the dugout, each one clapping. And Mooney's 30th 50, that was our statistician Pradeep Dumre telling us, in the 124th match, 117 being our highest, and two centuries in that one. And one must say that she's really done a useful contribution for the side. Another information coming from a statistician once again, that 850 at the Oval. We'll talk about that. Wyatt has 3, Mandana has 1, Perry has 1, Taylor 1, Dunkley 1, and Mooney. This is the half century she's got for the first time here. As here's the first, the third delivery from Matthews over the wicket, tries to spin it across and plays it down to the own side, to the mid-on region, and picks up a single on that occasion, and the score reaches 99 for 2. So second half century for Mooney. That will certainly bolster her confidence and give her the much required energy to enter into the finals. As here is she bowling around the wicket, changes the line of attack for the left-hander, and this is driven into the extra cover region. The fielder will miss it, and that's 4 runs. All efforts by the fielder there to pick up that ball, and that was Deandra Dottin, and a boundary, 4 runs.
1: Ye laga abha ka choka.
0: The Australian batters absolutely professional in their way of looking at it. So the 100 runs coming in 10.4 overs, whereas the West Indies got the 100 in 17.5 overs. That's the difference. 7 overs clearly the difference, as the next delivery from Matthews played onto the offside, gently tucked in the way by Mooney, and crosses over for a single, taking the score up to 104 for the loss of 2 wickets. So this partnership has already yielded 40 runs of 26 deliveries, and both these are still going strong. They played some very authentic bona fide cricket, not making any obvious errors. They're selecting the right shots. The next delivery, which is bowled short, and a bit of bounce onto that one, shoulder height, and the right-handed Gardner plays it down into Joseph, standing there at short fine leg, picks up a single to end up the 11th over. Australia now 105 for the loss of 2 wickets. Mooney 55, Gardner 22.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: 12वें ओवर की अब शुरुआत हो रही है।
5: और गार्टनर 22, मूनी 55, दोनों सॉलिड तरीके से इस विकेट पर अब टिके हुए हैं। कोई ऐसा लगता नहीं कि अब मुश्किलों का दौर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुकाबला तकरीबन फाइनल में दस्तक देने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, पैरों पर गेंद थी स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक गेंद वहां पर फील्ड होती अलेने के हाथों दौड़ करके रन पूरे किए 106 दो विकेट के नुकसान पर। तो अब सिर्फ 20 रन बचे हैं, 20 रन और बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। और जाहिर है कि जब आप इतने विकेट्स लेकर के 20 रन आपको बनाने हैं और सिर्फ 12वां ओवर चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है उस स्थिति में अब कोई शायद चमत्कार ही वेस्ट इंडीज को वापस ला सकता है 106 पर। तो गार्टनर 23, मूनी 55, और ओवल का मैदान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीलियां की जा रही हैं, खासतौर पर जो ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट है उसमें ड्राइव किया था, हाफ वॉली का ड्राइव था और एक रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरे रन के लिए स्टार्ट लेना चाहती थी लेकिन कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, वो 19 रन बाकी हैं, 52 गेंदे बाकी हैं। मुनी अर्धशतक अपना पूरा कर चुकी हैं। अगर आप मुनी का करियर का अर्धशतक देखें तो एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाए, और इस बार अच्छा ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव। यहां पर रन मिलेगा सिर्फ एक लौता क्योंकि हेनरी वहां मौजूद, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। भारत साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त खाया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे पराजित किया था, और इन दो पराजय की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। बल्ले के निचले हिस्से से लगा लेकिन रन जरूर मिलेंगे, यहां पर एक रन की गुंजाइश थी लेकिन इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे किए। वो आक्रामकता जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स में होनी चाहिए फिलहाल नदारद लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर वो ये मान चुके हैं कि ये मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है इस समय यूरोप में, आप लगातार इन खबरों को सुन भी रहे होंगे, तो उसका असर यहाँ स्टेडियम में मौजूद दर्शकों पर भी देखने को मिल रहा है।
0: सर्टनली यूरोप गोइंग थ्रू अ टफ समर दिस सीजन, 41.5 डिग्रीज एल्सवेयर, एंड द स्कोर नाउ रीचेस नेल्सन एट 111 विद दैट सिंगल जस्ट टक्ड अवे ऑन साइड, एंड ग्लासगो द फील्डर एंड ग्राम हैरक गिविंग अवे 6 रन्स ऑफ 5 डिलीवरीज, अ बेटर ओवर फ्रॉम हर comparatively, but now Australia just a question of time winning this match. Here's the next delivery from Ramparak, plays it onto the onside, just pushes that onto the onside to pick up a couple of runs to end the over. 12 overs gone, a single rather, not the second run, 112 for the loss of 2 wickets after 12 overs.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में,
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: So well, for the moment, Australia cruising past the expectations of the West Indies that they would do any such thing to stop their run rate.

0: डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: So what a great victory for the Australian side. 127 for 2 and Sanjay. If you look at the main reasons why the West Indies, the short selection, playing too far across the line, giving those dot deliveries that prompted the Australian side to do well as far as bowling and fielding is concerned, and look at the result now.
2: बिल्कुल, एक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फेवर में ये था कि उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उन्होंने जिस तरह से डॉट बॉल्स डाली और लगातार किफ़ायत बरती, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस था। वो प्रेशर जब वेस्ट इंडियन बैटर्स के ऊपर आया तो उसके बाद वो चरमरा गई पूरी की पूरी टीम, और जाहिर है कि उसके बाद वो एक बड़ा लक्ष्य नहीं दे सके जो हमने देखा। और आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार जीत दर्ज करके सीधे फाइनल में जगह बना ली है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
3: प्लेयर ऑफ द मैच।

0: And with that, Australia have gone on to win the first semi-final match that was held against West Indies in mere 13 overs, chasing a target of 125. They needed 126 to win, and the Australians made it look like a cakewalk because they were able to chase the target within 13 overs. I'm Sakshi Mandwal, welcoming all you listeners to our show Player of the Match for the ongoing ICC Presents Women's T20 World Cup. Joining me over here is my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. तो जहाँ तक World Cup Finals की बात है, वहाँ पर एक टीम तो तय हो गई, Australia. आज बहुत ही dominant जीत, Australia ने 8 विकेटों से West Indies को हरा दिया है. और चर्चा करने के लिए यहाँ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं आशा रावत, former India cricketer. नमस्कार. राकेश राव, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग. और साथ ही रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बीसीसीआई कोच. तो आशा जी, बधाई दे दें ऑस्ट्रेलिया को.
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से मैं कह ही रही थी कि अगर इस मैच को वेस्ट इंडीज को जीतना है तो जो दो तीन प्लेयर हेली मैथ्यूज, डॉटिन, इनको, स्टेफनी टेलर, इनको स्कोर करना चाहिए था. तो स्कोर होता तो जो मैच जो था वो कुछ फाइट के लिए जाता, तो स्कोर नहीं था इतना. फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला, मैंने जो बात करी थी कि वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर बैटिंग कर रहे थे वो क्रॉस खेल रहे थे ज़्यादा, मतलब बॉल के पिच में भी नहीं आ रहे थे. वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें, चाहे गार्डनर को देखें, चाहे मोनी को देखें, तो वो ना बॉल के ऊपर चढ़ के बॉल, मतलब अगर वो स्टेप आउट भी करते तो बॉल क्रॉस नहीं खेला उन्होंने कोई भी शॉट. कवर्स ड्राइव खेले उन्होंने, तो स्ट्रेट खेला, मतलब वी शेप में उन्होंने शॉट्स खेले.
0: Right, and Beth Mooney, since you just spoke about her, put up an exceptional knock today. 36 balls, 61 runs, which included 8 fours at a strike rate of almost 170, 169.44 to be precise. Rakesh, I'll come to you. Well, West Indies were able to get one quick wicket early on, 29 for the loss of the first wicket, but 125, we all knew, were never going to be enough for West Indies to turn the tide in their favour.
3: Absolutely, because there was no pressure from the scoreboard. And when you don't have that thing first up, I mean, anything like 150, 160 would have been, because if you're looking to give your spinners a chance, you should have runs on the board. And here, of course, they just raced away with it. Like, they were averaging almost 10 runs an over. Like 13 would mean that they were almost 10 runs an over. So that's the kind of team that you have to, you know, I mean, the kind of performance that you have to give. If you're up against a weaker opposition, it's not just that you go and win. You score an emphatic win. You have to tell that other team there's a difference between us. Gee, and the difference was reflected in that with 8 wickets and 7 overs to spare.
1: आप तीनों से ही एक सवाल, रविंदर जी, आज प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा?
4: मुनी,
0: बेथ मुनी.
4: मुझे लग रहा है कि वही बैटिंग है, बॉलिंग में तो ज्यादा दो उसमें 61 रन बनाए 36 जो उसमें बॉलों में. मुझे लगता है मुनी को चांसेस लग रहा है.
1: और कोई दावेदार है?
3: अब इन्होंने मुनी कह दिया है, व्हिच इज ऑब्वियस मुझे लग रहा है, बट मैं कहता हूं एश गार्डनर हो सकती है क्योंकि दो विकेट लिया है और नॉट आउट रही है और लास्ट में जो भी उन्होंने 35 रन बनाए हैं.
1: अब आशा तय करेंगी.
4: मुझे

0: a complete unit. And just before that, you had asked me whether it's going to be, I mean, Australians or the same. And I just mentioned England. England is another team which looks, you know, close to looking like as though they're invincible. But they are the home team. So that is what gives them the edge. And that'll be a good final. And I'm already assuming that England is going to beat South Africa.
1: Okay, जी इस समय श्रोताओं को भी आमंत्रित करना चाहेंगे. 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, नंबर है 2342-1085. हमें कॉल करिए. और इस समय हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं. जी हेलो, आदाब, कौन बोल रहे हैं? जी क्या सवाल है आपका? जी जी जी जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए. और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में. लेकिन आशा, अब जब फाइनल के ऊपर निगाहें होंगी तो क्या राकेश की तरह आप भी यही सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका टक्कर दे सकता है सेकंड सेमीफाइनल में?
2: नहीं, जैसे अभी सर ने बोला कि इंग्लैंड होम टीम है तो उसका उनको फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो क्राउड जब हम खेलते हैं ना अंदर तो 11 तो होते हैं, बट उसके बाद जो ऑडियंस होती है ना तो वो हमें और मोटिवेट कर देती है. तो और अपोजिट टीम को वो डाउन कर देती है, तो उसका फ़र्क तो बहुत पड़ेगा. तो अब बाकी
1: जी, लेकिन अच्छे दिन है क्रिकेट के लिए कि आज आपने महिला क्रिकेट का आनंद लिया और आप कल इंग्लैंड के साथ हमारा जो मेंस में, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ एज फार एज क्रिकेट लवर्स आर कंसर्न्ड.
0: या श्योर, बिकॉज़ एंड इट हैज अ लॉट टू डू विद द ग्रोथ ऑफ यू नो लाइक लेडीज क्रिकेट, स्पेशली विद इंडिया डूइंग वेल एंड ऑल दैट हैज कम पोस्ट WPL. यू नो दैट हैज आई थिंक रियली हेल्प्ड एंड इंडियन प्लेयर्स हैव गेन्ड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. बट people tend to forget one thing, that Indians are still not very consistent against teams like England and Australia. There are only 3 to 4 good teams up there. New Zealand, defending champions, they haven't been able to make it to the top 4. Indians, who just won the 50 over World Cup, they couldn't make it to the top 4. But overall, when you look at things, I think Indians, the day they become more consistent, I think the men's cricket, which is already doing well, and women's cricket, so cricket in India, we'll see a more 360 degree growth, be it men or women.
3: Right, and we also have a listener joining us right now. Namaskar, good evening. Hello. Namaskar, good evening. Kya naam hai aapka? I think unki line drop ho gayi hai. Behrhal, hume dobara wo try kar lenge. But just now,
1: mujhe pata hai wo sawal kya puchne wale the.
3: Kya?
1: Ki LAC Perry retired hat kyun ho gayi?
3: Maybe, possibly, but well, I'll just take the point that Rakesh was talking about at that point when we had a caller joining in, that gradually we will see cricket evolving and reaching a place where men and women's cricket will reach a certain stature of the kind of fitness that we see in the men's game also. We'll see that happening in the women's game also. And I think, aapke paas aati ho Ravi, ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें तो वुमेन्स क्रिकेट के अंदर वो चेंज हमें ऑलरेडी अब दिखने लगा है. जिस तरह से क्राउड्स का टर्नओवर आता है, जिस तरह की फंडिंग अब हो रही है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर, जिस तरह का खेल देखने को मिल रहा है, आपका नजरिया या टेक उस पर क्या है? लेकिन एक श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े, उनसे पहले बात कर लेते, फिर आपके पास उसी बात पर आ रही हूँ मैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. राइट
1: जी, जी. आपके पास आते हैं वापस, लेकिन फिलहाल हेली मैथ्यूज को सुनते हैं.
4: We'll have our best game or play to our full potential for the entire tournament. We felt like our great game could have looked a lot better than that, but we weren't able to execute, I think, in any of the matches. A full team performance to pull together a really, really good performance by everyone, I guess.
5: How much does it throw you as well when you've had the national anthems, you've got everyone on board ready to go out there and put a big total on the board, and then all of a sudden you hear that DeAndre Dalton has gone off and is being assessed?
4: Yeah, I think it was probably a bit scary for some of us. She's obviously a massive fighter and someone you never see go down. So to see her pretty much almost passing out like that after the anthem was a bit scary, but yeah, just a bit of a medical emergency. But at the same time, it shows how much of a fighter she is, the way that she was able to come back out, and not only come back out, but try to throw a few punches at the Aussies as well, is speaks a lot to her character.
5: Yeah. Does it also mean that you were a little bit conservative at the top of the order because you weren't too sure if she was going to come back into to bat at any stage?
4: Somewhat, I feel like we wanted to get off to a good start and probably put myself under a bit of pressure based on how things were going in the first six overs. Probably could have gone to my strengths a bit more, but certainly wasn't sure if she was coming out and did want to take it a bit deep. But I think it was a quite difficult one for me to assess, knowing that we needed to get the run rate up. However, I probably needed to stay at the crease, and yeah, I think the shot that I played probably showed a bit of it.
5: Yeah. When you think about the entire tournament in its entirety, and you look back on this group, a couple of wins at the start and then tailed, what are the things that you'd be saying to this team post this interview, just to get them, I guess, their mindset and ready? It's only a 2-year turnaround for the next one.
4: Yeah, I think as a group we could still hold our heads high in regards to a lot of people playing roles. We had some bright sparks this tournament. Aaliyah Aline, Stefani Taylor looking back really, really good. Even Chanel Henry getting a 50, even though she's been in and out of injury. And I think when you look at West Indies team, sometimes you call a few names, and we didn't really have any super standout performances by any one individual player. So to get to the semifinals, I think with probably 250s as a team, shows that everyone had to chip in, and we probably missed that aspect of having someone have a really big or really good tournament. But at the same time, for us to get to this stage with that happening, it definitely shows that we have a lot more people playing roles now, and we can only get better with it.
5: Yep, and we're expecting that as well from you guys as well, particularly because of your leadership. Thanks for your time, and we'll see you in the next
4: one. Thank you.
5: Cheers, Hayley. I'll get Sophie Molyneux to come on in. First time captaining in the T20 World Cup through undefeated. It's pretty easy, this captaincy stuff, is it?
6: No, it's not.
5: Not so much. No. What have you learned over the last couple of weeks?
6: Yeah, heaps. Heaps. I think the T20 World Cup, you just have to ride it. It's full of momentum, swings, but yeah, look, I've really enjoyed it. I think the group's really enjoyed it, and that's probably the biggest thing for us. And yeah, we've helped ourselves, well, we've stopped ourselves from thinking too far ahead, but now we can think about the final, which is pretty cool.
5: You come out to the middle, you've got your team plans, and all of a sudden you would have known as well that Deandra Dotton probably might not have been coming out. So in your back of your mind, how much does that change your plans?
6: I actually had no idea.
5: There you go.
6: yeah, I didn't know until maybe five or six overs in that she wasn't, and then she did, and she made an impact. So, yeah.
5: But you might have had to change your plans from the approach that Joseph and Hayley Matthews had at the start. They certainly didn't come out with that firepower. Is that why you kept the seamers on for a little bit longer?
6: Yeah, I think with the new ball there, like Kimmy always shapes the ball and bowls beautifully in the power play, and Luce did a really good job as well. So I just thought that was probably the best matchup to those two. And yeah, I thought we bowled really well. Like Hayley and Joseph actually, yeah, tried to go, but I thought we held our nerve, which was really cool.
5: Any changes to approach when you're chasing 125 on a good wicket?
6: No. I think we all wanted to sort of get it done as quick as possible. And, you know, Moons and Ash were clinical and volley to get us away, just to calm the nerves in the change room. Yeah, it was really good to see.
5: I can remember down in Southampton, Beth Mooney took herself off and retired herself hurt with the stiff back as a precaution. We saw Elise Perry leave today as well. Is it the same kind of scenario?
6: Yeah, a bit of that again. Yeah, just I think it's just some quad awareness, but it sounds like she'll be more than okay to go on Sunday.
5: Well, three play of the matches and 35. She's allowed a little bit of time off, isn't she? You've got 5 days now until the final. What are the plans?
6: Sleep. I'm looking forward to a good night's sleep tonight. But, look, we'll make sure that we celebrate what's been a pretty cool 2 weeks for the group. We'll make sure we do that. Yeah, rest and recover over the next little bit, and then build up without thinking too much and playing the game over and over in our heads. I think we're just going to make the most of the week and make sure we enjoy every part of it.
5: Yep. We've deserved the rest and the sleep. Enjoy the sleep and switch the alarm off, and we'll see you on Sunday.
6: Thanks, James.
5: Well done.
3: Well, there you had it. A very happy and a very smiling Australian captain out there, Sophie Molyneux, who was all about just complimenting and applauding the team's efforts. And also for all our listeners, I would like to quickly tell you that this is indeed the 8th T20 World Cup final for the Australian women's team. That in itself is a very big achievement. And I'm also told that we have a caller with us joining us right now. Namaskar, good evening. जी स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो पर बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप आज ओके हाँ जी आपको बता देंगे चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं रवि आप ही के पास आते हैं कि भारत क्यों हर बार ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है कहां पर हमारी कमियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया उसका फायदा उठा लेता है
7: देखिए ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रॉकेट साइंस नहीं है आपको सामने सबसे बड़ी फिटनेस देखिए इनकी आप ऑस्ट्रेलियन टीम की फिटनेस और इंडियन टीम की फिटनेस में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा उनकी फील्डिंग देखिए अपनी फील्डिंग देखिए बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको हमारे यहाँ पे जब वो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका का चार प्लेयर भारतीय और राधा यादव तो फील्डिंग करने आई थी उसके ऊपर इतनी बड़ी बैंडेज लगा रखी है चोट लगी हुई थी उनको तब भी वो फील्डिंग करने आई रही थी बाकी तीनों प्लेयर्स को मैनेजमेंट ने ये इतनी समझा कि वो फील्डिंग के लायक भी है कि नहीं है तो ये देखिए आप बैटिंग बॉलिंग सब करते हैं फील्डिंग सबसे बड़ा पार्ट है जब तक आप फील्डिंग नहीं करेंगे जब तक आप ग्राउंड में अपना पसीना नहीं बहाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने आप ग्राउंड में नहीं आते आपको महीने महीने की फिटनेस कैंप चाहिए होते हैं और जिस दिन इंडियन टीम चाहे कोई इंडियन टीम फील्डिंग पर ध्यान देगी उस दिन इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइट जीतेगी और सब
1: टीम इंडियन टीम की पूर्व सदस्य से पूछ लेते हैं फिटनेस पर कितना ध्यान देते थे आप
2: हमारे टाइम में तो T20 होता ही नहीं था तो फिटनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता सर ने सही बोला कि T20 की वजह बल्कि जब से T20 आया तो मुझे लगता है फिटनेस में तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो पर ध्यान नहीं दिया जाता और फील्डिंग में मतलब आप निगलेक्ट करते हैं फील्डिंग को तो
1: नहीं भले ODI टेस्ट हो फील्डिंग एक प्रायोरिटी थी तब
2: नहीं थी
1: आज है
2: आज T20 है तो मेरे साइड अगर मैं कोच होती तो मैं देती मैं उसको पहले लेती जिसकी फील्डिंग अच्छी है जो फिट है सर ने बिल्कुल सही बोला अगर आप सिंगल डबल नहीं भाग पाएंगे अगर आप फिट नहीं है तो कैसे लेंगे अब आप देखिए कैच बनानी पड़ती है कैच कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी आपको कैच बनाना पड़ेगा विकेट लेना पड़ेगा तो उसके लिए एफर्ट्स मानना पड़ेगा तो एफर्ट तभी मारेंगे ना जब आप फिट है T20 इतना फास्ट गेम होता है ना उसमें आपका माइंड नहीं चलता इतना बट अगर आप फिट है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लगना है कहाँ पे बॉल आ रही है तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है
1: तो कोच साहब से पूछते हैं सर ये कैच आते आते झलक क्यों जाती है हाथ से
7: देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि झलक जाती है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे फील्डर्स से भी कैच छूट सकती है ऐसी बात नहीं है लेकिन आप ये देखिए आप कितना टाइम आप कैचेस लेते हैं आप जो अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं मैं देख सुना मैंने पढ़ा भी देखा भी है वो 500-500, 300-400 कैचेस डेली पकड़ रहे हैं उनको हाथ में ऐसा लगता है कि बॉल उनके हाथ में उनके साथ ही चिपक जाती है तो ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने की बात है
1: कि हमने देखा है इंडिया में हम लोग ऐसे हाथ करके कैच लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे थैली खोल कर सूरज की तरफ तो फर्क क्या है दोनों में
0: फर्क दोनों का आपका ट्रेनिंग मेथड ही वही है कि रिवर्स कप जैसे आप लेते हैं ऑस्ट्रेलियंस लेते हैं उनकी आदत है उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है ये नहीं कि उसमें कुछ कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज है ऐसा नहीं है बट फर्क ये है कि उसमें आपका पाम पहले आता है फिंगर्स बाद में आती हैं आप इम्पैक्ट लेते हैं पाम के ऊपर पहले हमारे इसमें क्या होता है कि हम फिंगर में इंजरी होने का हमारा चांस ज़्यादा होता है क्योंकि हाथ आपका खुल जाता है उनका जो है कप में उनका उनकी उंगलियाँ जुड़ी रहती हैं पहले जो थंब है वो दोनों जुड़े हुए हैं उनके हमारे दोनों थंब अलग अलग जगह हैं कम्प्लीटली तो ये एक फर्क आ जाता है उसमें इसलिए आपका जो इम्पैक्ट होता है वो उनकी आदत है और अगर आप वही चीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है और हमारा वाला सही नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको जैसे ट्रेन किया जाता है उसी हिसाब से चलता है दूसरी चीज़ ये कि फील्डिंग का जो एस्पेक्ट है इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा फील्डिंग के ऊपर वो जितना दम होना चाहिए था मेंस क्रिकेट में भी बहुत रिसेंट है हमारे कुछ फील्डर्स को हमें छुपाना पड़ता था एक ज़माने में हम लोग बोला करते थे 11 में 11 फील्डर्स नहीं है हमारे मदन लाल मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छे होते थे मैं 60s लेट 60s की बात कर रहा हूँ या 70s की बात करूँ आबिद अली का हम सोलकर इन लोगों के हम नाम ले सकते थे बाकियों के नाम नहीं ले रहे हम लोग स्लिप फील्डर्स को हम गिनते ही नहीं थे कि चलो भाई आ जाएगा ले लेंगे आउटफील्ड में नहीं होते थे हमारे पास फील्डर्स और खासकर वो एम्फेसिस भी नहीं था इन्होंने अभी कहा कि 400-400 500-500 कैचेस लेते हैं अजहरुद्दीन का ज़माना ले लेते हैं 90s का जबकि वो 200-200 कैचेस वो लेते थे 100 सुबह 100 शाम को. वो एक ही इंसान होता था जो दो बार नेट्स के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए कमरे से बाहर निकलता था एंड ही वांटेड ऑल दोज कैचेस. और हमें याद नहीं पड़ता कि अजहरुद्दीन ने कोई कैच छोड़ा,
3: राइट,
0: कपिल देव ने कोई कैच छोड़ा, मतलब ऐसे थे. इनकी ट्रेनिंग मेथड

0: अलग होते थे, लेकिन हाँ आजकल तो बहुत स्पेशलाइज्ड है आपका ट्रेनिंग, मेथड्स बदल गए हैं, मैच सिचुएशन में भी आपको रख के कैच प्रैक्टिस होती है, तो वुमेन्स क्रिकेट में तो हमें बहुत दूर जाना है, अभी बहुत वक्त लगेगा।
1: ओके राकेश, आई विल जस्ट टेक अ पॉइंट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट वी यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ कोर्स, बट इन रियल टाइम इफ यू लुक टुडे द गेम दैट वी जस्ट सॉ, हाउ डू यू असेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट नाउ, बिकॉज सी दिस टीम हैज लॉस्ट 7 में से 6 सेमीफाइनल मैचेस इन द रीसेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, एक ही जीते थे 2016 का एडिशन। What does it speak of the West Indies cricket now?
0: See, West Indies cricket is undergoing a transition for far too long. Because if you go to West Indies now, it's no longer that the poor guys are taking the game. They're only playing T20 cricket at best. That's why their test team has been hit for a 6. White ball cricket is dying there because people are no longer interested in the game like they used to be, because they're not winning those big ones. So their cricket is suffering, women's cricket is also suffering, and they've been a cash-strapped, association. Doesn't have that kind of money. Their sponsors, when they come to India, the Indian companies sponsor them. They don't come here with a sponsor. They come here and then they get sponsorship. So a lot of issues there, lack of interest. Women's cricket is also not too far from where the men are.
2: Ji, is samay ek aur caller hai phone line par. Hello. Namaskar ji. जी बिल्कुल, खैरियत है, आप अपना नाम बताइए। क्या सवाल है आपका? जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आशा, जिस तरह से हमने 2025 में ODI वर्ल्ड कप जीता, तो इंडियन टीम एक अच्छे हाई पर आ रही थी, आप कैसे देखते हैं इंडियन टीम का कैंपेन यहाँ पर, और फिर ऑस्ट्रेलिया से हार के वो नॉकआउट से बाहर हुई?
3: इंडियन टीम जैसे
1: आई टेक द क्वेश्चन है, रवि के पास आ जाती हूँ। रवि, अगर हम बात करें कि भारतीय महिलाओं की टीम जिस तरह से हम हारे इस सीजन भी, अगर देखें साउथ अफ्रीका से भी हार गए जहाँ से हमें लग रहा था कि हम हमारा सेमीफाइनल का सफर खत्म है, ऑस्ट्रेलिया से तो हार ही गए हम, क्या कमियाँ आपको दिखती हैं प्रेजेंट भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर, जिसकी वजह से जो बड़ी टीमें हैं, दिग्गज देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये हमें आसानी से हरा देते हैं?
4: देखिए, अफ्रीका का इस मैच में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने था, हम मैच जीत रहे थे और हम किस कारण से हारे सबको पता है, कैसे 3 कैचें छोड़ी गई उस समय। मैंने आपको पहले बोला फील्डिंग, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपके पास अच्छे बैटर्स हैं, नो डाउट बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग में आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, आप लैक करते हैं सिर्फ फील्डिंग में। जिस दिन इंडिया का फील्डिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, जिस दिन इंडिया ने फील्डिंग अपनी इंप्रूव कर ली और एक ये स्टार्स जो कल्चर है इसको दूर कर लिया, तो आप उसी लेवल पे खड़े होंगे जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खड़े हैं।
2: पर आपको लगता है, आशा, एक अच्छी बात कैंपेन की रही कि शेफाली, जिनको हम बैटिंग के लिए जानते हैं, इस बार वो बॉलिंग कर रही हैं, ओपन भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने?
3: हाँ, मतलब ये है कि जो इंडियन टीम है हमारी, अगर मैं पहले के मुताबिक बोलूँ तो बहुत फर्क आया है, चाहे उनकी फील्डिंग में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जैसे देखती आई, पहले जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था बहुत नीचे था, बट अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड हो गया। बट बात वही है, स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है पर औरों का हमसे और अच्छा हो गया है, तो मतलब हमें, जैसे अभी सर ने एक बात बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी, कि जैसे कैचिंग, अगर आप फील्डिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप 50-50 या 200-200 कैचेस करनी चाहिए। जैसे हम बैटिंग करते हैं ना, तो बैटिंग में हम वो नॉक करते रहते हैं, हम 200-200 बॉल खेलते हैं तभी हमारे वो बैटिंग स्ट्रोक इंप्रूव होता है, तो वैसे ही फील्डिंग के लिए भी वही बात है, पर वो चीज कोई करता नहीं है ना, कोचिज में ख्याल से कोचिज भी इतना नहीं करवाते हैं।
2: जी बिल्कुल, और अगर अब हम यहाँ से देखें तो दो ही साइड्स हैं जो अनबीटन है अब तक, ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीती, आज भी 6, उधर इंग्लैंड। आपको लगता है क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला हो रहा है, तो इंग्लैंड अब यहाँ पर एक फेवरेट है कि सेमीफाइनल्स में, क्या उम्मीद करें सेकंड सेमीफाइनल्स में?
0: फेवरेट नहीं कहूंगा मैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि उनके चांसेस आपको कम आंकने नहीं चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को मैं रनअवे फेवरेट्स नहीं कह रहा हूं, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जहां कंडीशंस में ज्यादा खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड के पास रहेगा, तो वो एडवांटेज आप उनसे ले नहीं सकते। हाँ, उस दिन क्या होता है वो अपनी जगह है, इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा, तो इंग्लैंड के चांसेस काफी ब्राइट होंगे, जो और किसी टीम के बारे में आप नहीं कह सकते, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंडिया, किसी भी टीम से अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच आप कहेंगे साहब कल होने वाला है, तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है, नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड।
1: ओके रवि आपके पास आती हूँ. चलिए ये बात तो सही है काफी हद तक कि इंग्लैंड के पास होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ साथ सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला उसमें माइंडसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. साउथ अफ्रीका क्या आपको लगता है किस तरीके का माइंडसेट आम तौर पर दिखाती है? क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड के मुकाबले में ये अपनी चोकिंग जो मेंटालिटी है उसको ओवरकम कर पाएंगी?
4: देखिए मुझे नहीं लगता कि इस मैच को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका की टीम बहुत ही फाइटर टीम है और अभी उनकी कैप्टन मुझे उसको अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही. अगर वो लॉरा उस समय अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा मैच का दामदार है, देखिए 20 ओवर का मैच कोई बड़ा मैच नहीं होता, दो प्लेयर खड़े हो जाते हैं तो मैच बराबर कर देते हैं. और अगर यही लॉरा उस दिन अच्छे तरह लॉरा जब बैटिंग करती है तो वो सीधा 80-100 से लंबे स्कोर बनाती है, तो ये मैच एक अच्छा मैच होने वाला. एडवांटेज है नो डाउट, होम एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन होम एडवांटेज में बहुत घर में बहुत टीमें हारती हैं. इसके ऊपर
2: साउथ अफ्रीका में कप्तान लॉरा वुलवर तो है ही, लेकिन भारत के मुकाबले में हमने देखा मैरिसन कैप ने नीचे आके बड़ा अच्छा खेला, तो आपको लगता है कि इनके पास अच्छे बैटर्स बॉलर्स हैं?
3: अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम को देखूंगी तो वो भी बैलेंस टीम है, और ऐसे नहीं कह सकते कि इंग्लैंड मतलब होम टीम है तो वही जीतेगी. सब जो बात होती है एक स्टेज में एक मेंटल जो अपने माइंडसेट को माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर दे, प्रेशर को कंट्रोल कर दे, तो वो भी मतलब मैच निकाल देता है. अभी जैसे आज मैच हुआ ना, तो वेस्ट इंडीज़ क्या मुझे लगता है वो उनको प्रेशर हावी हो गया जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे. सारे एक ही जैसे बैटिंग कर रहे थे, कोई कुछ किसी ने मतलब सिंपल क्रिकेट की भी खेलता ना कोई तो मुझे लगता फिर भी कुछ होता. सब क्रॉस उनको लगा T20 है बस, तो उस हिसाब से अगर जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा ना वो मैच निकाल लेगा.
1: ओके क्विक प्रेडिक्शन फ्रॉम ऑल आवर थ्री पैनलिस्ट, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कि वो सेमीफाइनल कौन जीतने वाला है? रवि आपसे शुरू करते
4: हैं. एडवांटेज इंग्लैंड का नो डाउट.
5: एडवांटेज इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनल खेलेगी, तो ऑब्वियसली मैं साउथ अफ्रीका से उनको अच्छी टीम मानता हूँ. साउथ अफ्रीका का अटैक अच्छा है, हम लोग सिर्फ वुमेन टीम की जब बात करते हैं बैटिंग बैटिंग बैटिंग बैटिंग देखते हैं, ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अटैक बेटर है काफ़ी टीमों से, और वो टीम इंडिया को हराने के बाद इस स्टेज पे पहुंची है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके साथ जरूर है. अगर उनको ये सेल्फ बिलीफ है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है अंदर, तो जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता है.
1: और आशा
3: मैंने बोला ना जो प्रेशर को हैंडल कर देगा ना उस दिन वो जीतेगा, क्योंकि टीम दोनों में
1: नहीं दे रहे हो
3: नहीं दूंगी
2: जी. लेकिन क्रिकेट की जब बात होती है तो जो सुर्खियां बन रही हैं वो चाहे वुमेन क्रिकेट हो मेन क्रिकेट, बेन स्टोक्स इतने बड़े खिलाड़ी और एकाएक उनका डिसीजन आना, आप कैसे देखते हैं? एक अपना ही एरा था बेन स्टोक्स का.
5: बेन स्टोक्स को याद किया जाएगा उनको एज एन ऑलराउंडर, यस फॉर बीइंग टेम्परामेंटल एट टाइम्स, नॉट गोइंग बाय द बुक ऑल द टाइम, और जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनका नॉक था, जैसे न्यूजीलैंड से ऑलमोस्ट उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच ले लिया, और ऑफकोर्स अजीबोगरीब चीज़ें हुई उस फाइनल में 2019, बट ओवरऑल आई स्टिल फील दैट बेन स्टोक्स विल बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स फ्रॉम इंग्लैंड.
2: और इंग्लैंड सीरीज कल से शुरू हो रही है पुरुषों में, वहाँ पे एनी प्रेडिक्शंस?
5: Predictions, I think Indians will have to work very hard to win,
2: especially after defeat with Ireland.
5: No, they won't let that happen because the conditions are different. Yes. But very challenging test for India.
2: बिल्कुल, लेकिन हम श्रेयस अय्यर जो नए कप्तान बने हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, और आपको एक बार याद दिला दें कि जो दूसरा सेमीफाइनल है वुमेन्स वर्ल्ड कप का वो परसों होगा 2 जुलाई को, और आकाशवाणी पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा हमारे विशेष कार्यक्रम और आंखों देखा हाल के लिए शाम 10:30 बजे. जी हाँ, पूरी रात अपनी है, 10:30 बजे विशेष कार्यक्रम और फिर आंखों देखा हाल. लेकिन फिलहाल पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव और रविंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच.
1: शुक्रिया. एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स फॉर जॉइनिंग इन. दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अमित अरोरा सेइंग गुड बाय, बट ऑल्सो गिविंग अ हार्टफुल थैंक यू टू आवर टेक्निकल टीम जयराम, अनिरुद्ध गुप्ता, नागेंद्र कुमार पाटिल, प्रसून कुमार, आवर प्रोडक्शन टीम स्वाति कपूर, तन्मय भट्ट, विद्वान वास, एंड आवर प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, द टीम, द पीपल, द मेन, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हु ब्रिंग यू द शोज बैक टू बैक एंड ऑल्सो द कॉमेंट्री. थैंक यू सो मच टू ऑल आवर लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज अमित अरोरा एंड साक्षी मांडवाल सेइंग गुड नाइट, गुड बाय.
6: प्लेयर ऑफ द मैच. अभी आप ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे. You have been listening to a special program, Player of the Match, of the first semi-final T20 cricket.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जबरदस्त फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म तीन देवियों से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, मजरूह के बोल हैं और धुन बनाई है SD बर्मन और नालंदा ने।

तेरे घर के सामने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी की रचना है और संगीत एस जी बर्मन का, खूबसूरत आवाज मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं जुर्म फिल्म का गीत, कुमार सानू और साधा सरगम की आवाज है, इंदिवर के बोल हैं और संगीत से सजाया है राजेश राशन ने।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म जुर्म का ये खूबसूरत गीत, जिसे लिखा था इंदिवर ने और संगीत दिया था राजेश राशन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और

0: अक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes, The first was deregulation and other reforms for